0: जियो है जित हरिया सब कोए, सोतक क्यों कर रखी है सोतक पवे रसोए। नानक सोतक एव ना करे ज्ञान उतारे तोए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर धन रूप। कन्नी सूतक कन पै लायक बारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाए महला पहला। सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है भाणे आवै जाए। खाना पीना पवित्र है दित्तों रिजक संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक ना पौड़ी। सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सनलत नदरियां जां तिस भाणा। अमन मसाईयां कर हुक्म मस्तक हथ धार, विचों मार कड्डियां पुरियां सहत उठे। नौनित पाईयां नौनित पाईयां नौनित पाईयां
2: पौड़ी। सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मिले तो नदरी आईया जात भाणा त मन वसाई। कर हुक्म मस्तक हथ धर विचो मार कटियां बुरियाईया सत ठेनुन तपाइया सत ठेनुन तपाई।

0: ऊपर काली है, ऊपर काली है, ऊपर काली है।
1: और जिस सेवे सुख पाई उस साहिब सदा संभाली है, जिन कीता पाई है अपना सा काल बिरे क्यों काली है। मंदा मूल ना किचई दे लम्मी नजर निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है सेवे हा पासा ढाली है। किछलाहे उपर काली है, किछलाहे उपर काली है।

ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्स तें खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफर डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु हिन तरह आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भगत कलाम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ तव्हां कुझु गीत कलाम ऐं भॼन ॿुधंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। इहा त प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो। हींअर छो त भगत कलाम साहिब खे ॿुधूं।

0: आनंद सा मक्खन और मिश्री कटायो प्यार लिया था जो हरे राम।
1: तव्हां भगत कोराम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम थी रही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे तबसरो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 ऐं 17 मई 2026 दरमियान नैदरलैंड जी यात्रा कई। उहिदे में अचण खां पोइ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नैदरलैंड जी हीअ ॿी यात्रा आहे। हिन खां अॻु में

हुन साल 2017 में नैदरलैंड जी यात्रा कई आहे ऐं हीअ यात्रा ॿिन्ही मुल्कनि मंझि भाईमी लाॻापन जे हिकु अहम मोड़ ते थी आहे। भारत नैदरलैंड जी भाईवारी गुज़िरियल कुझु सालनि खां घणनि खेत्रनि में वधी आहे। वापार, सीड़प ऐं अवलियत वारनि खेत्रनि जहिड़ोकि पाणी, ज़राइत ऐं सिहत गॾोगॾु माण्हुनि जा माण्हुनि सां ॻंढापा वेझड़ वारनि सालनि में हिकमत अमली खेत्रनि में पिणु तावन वधियो आहे, जहिड़ोकि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, बचाव, सुरक्षा, सेमी कंडक्टर, वरी खां ख़तम ईंदड़ तवानाई, तइलीम ऐं सामूंडी खेत्र। ताज़ो ई ॿिन्ही धुरियुनि सेमी कंडक्टर्स ऐं क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ते हिकु सूझबूझ चिठे ते सही कई। इन खां अलावा ॿिन्ही मुल्कनि जे अहम इदारनि मंझि, जहिड़ो कि भारत जी IIT ऐं नैदरलैंड जे अहम तइलीमी इदारनि मंझि तआवुन कयो वियो आहे। नैदरलैंड यूरोपियन यूनियन मां भारत में वधि में वधि सीड़प कंदड़ आहे ऐं भारत में चोथों नंबर वॾे में वॾो सीड़प कंदड़ मुल्क़ आहे। तंहिं में कुल सीड़प जो मक़दारु आहे 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर खां बि वधीक जो नाणो सीड़प कयो आहे। यूरोपियन यूनियन में इहो भारत जो वॾे में वॾो वापारी भाईवार पिणु आहे, ख़ासि करे भारत जे रवानगीअ लाइ। भारतीय रवानगीअ लाइ नैदरलैंड टियों वॾे में वॾो मार्केट आहे। हवाई अॾे ते पहुचण शर्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुरजोश आज्ञा कई वई। डच म्यूज़िशंस भारतीय क्लासिकल संगीत ज़रिए प्रधानमंत्री जी आज्ञा कई। गॾोगॾु संदसि होटल में पहुचण शर्त भारतीय क़ौम गरबा नाच सां संदसि आज्ञा कई। हेग में संदसि आज्ञा में भारतीय क़ौम पारां ॾिनल रिसेप्शन में श्री मोदी हिसो वरितो। पहुचण शर्त पिणु उते जजीद तादाद में भारतीय रहंदड़नि ऐं नैदरलैंड में भारत जे दोस्तनि संदसि आज्ञा कई। मेड़ खे ख़िताबु कंदे प्रधानमंत्री पुरजोश रिसेप्शन लाइ संदनि शुक्राना अदा कया ऐं भारतीय क़ौम जा पिणु जिन डच समाज में बहितरीन योगदान ॾिनो आहे, गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि मंझि दोस्ती खे पिणु बरक़रार रखियो आहे। हुन यादि करायो त सुरीनामी हिंदुस्तानी क़ौम तंहिंजा पिणु भारत सां इतिहासिक लाॻापा आहिनि। प्रधानमंत्री रोशनी में आंदो त उते जजी तादाद में भारतीय माहिर टेक्नोलॉजी में ऐं ॿियनि खेत्रनि में योगदान ॾेई रहिया आहिनि, ख़ासि करे डच यूनिवर्सिटी में भारतीय शागिर्दनि जो तादादु पिणु वधी रहियो आहे। तंहिंमें मेन खेत्र आहे, मुख्य खेत्र आहे इनोवेशन ते आधारित फील्ड्स। हुन ध्यानु छिकारायो त ॿिन्ही मुल्कनि मंझि ॿियो ॻंढापो आहे रांदियूं, ख़ासि तौर ते क्रिकेट ऐं हॉकी, जंहिंमें माण्हुनि जा माण्हुनि सां ॻंढापा वधिया आहिनि। प्रधानमंत्री ॿुधायो त नैदरलैंड सां असांजो ॿितरफ़ो तआवुन वधी रहियो आहे, ख़ासि करे टेक्नोलॉजी ऐं इनोवेशन्स में। इन खां अलावा वापार ऐं माशी लाॻापा पिणु ॿिन्ही मुल्कनि मंझि वधी रहिया आहिनि। प्रधानमंत्री रोशनी में आंदो त भारत में तरक़ी तेज़ रफ़्तार ते अची रही आहे ऐं भारत जल्द ई साल 2047 ताईं विकसित भारत थियण जो सपनो रखियो आहे, निशान मुक़ररु कयो आहे। इन ॾस में उते रहंदड़ भारतीयुनि खे प्रधानमंत्री श्री मोदी सॾु ॾिनो त भारत जे तरक़ी याफ़्ता मुल्क बणजण में पंहिंजो योगदान ॾियनि। नैदरलैंड में जजी तादाद में भारतीय क़ौम रहंदी आहे, ख़ासि करे उते 2 लख सुरीनामी हिंदुस्तानी क़ौम जा माण्हू नैदरलैंड में आहिनि। प्रधानमंत्री इन ॾस में खेनि ॿुधायो त OCI जेको कार्ड ॾिनंदो आहे तंहिंमें खेनि रहत ॾिनी वई आहे 4 पीढ़ी खां वठी करे 6 पीढ़ी ताईं। हेग में शाही महिलात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजा विलियम अलेक्सेंडर ऐं राणी मैक्सिमा सां मुलाक़ात कई। हुननि भारत ऐं नैदरलैंड मंझि वधंदड़ भाईवारी ते ॻाल्हियूं कयूं। तंहिंखां पोइ श्री मोदी डच प्रधानमंत्री रॉब जैटन सां पिणु मेड़ सवन जूं ॻाल्हियूं कयूं। हुन खेसि ॿुधायो त भारत नैदरलैंड खे पंहिंजो हिकु मुख्य भाईवार करे लिखींदो आहे ऐं 5 मुख्य सीड़पकारनि मंझि हिकु आहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नैदरलैंड जी यात्रा ॿिन्ही मुल्कनि मंझि भाईवारी खे हिकु नओं मोड़ ऐं न्यू डायमेंशन्स मैसर कराए रही आहे। तव्हां तफ़सरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा गीतनि ऐं कलामनि जो प्रोग्राम आगाज़ करियूं शांती रणनि जी आवाज़ में हिन कलाम सां।

हथ सिर्फ टका मुल चुकाए अड़े वठण वारे सादे मगज दे उते ते ठिण ठिण भोंग लगाए इतनी तकलीफ चंदनो जद सुरत चाहे तद मोह बसे आप पाए।

प्रोग्राम जाकर में वहाँ कुसुम कुंदन के बदले आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस हिंसर पेश आज खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पैंजे स्वीडिश सानी उल्फ क्रिस्टसन से गोथेनबर्ग में गालू क्यों श्री मोदी के संदस भारत स्वीडन लागापन में संदस अहम योगदान लाए रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस इन रिकग्निशन इनाम से नवाजे हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वीडिश कंपनियों के भारत में पैंजी हाजिरी मेक इन इंडिया प्रोग्राम तहत बधाने लाए सद दिनों है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में बरका एटमी सहूलियत से थियल हमले से भारत गंभीर गणती पदरी कई है। मरकजी सेहत वजीर जे पी नड्डा स्विट्जरलैंड में पहुंतो है जो उते हु 79 आलमी सेहत असेंबली में हिस्सो वठंदो। आलमी सेहत इदारे WHO डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ए युगांडा में इबोला जे बीमारी के एक अवामी सेहत इमरजेंसी करे ऐलान किया है।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 वॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाईं गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीत का कार्यक्रम में कौस्तव घोष के गाए भजन। आपके साथ तबले पर थे सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना थे और हारमोनियम पर थे दामोदर लाल घोष। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में मैं दुर्गेश सारस्वत आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आकाशवाणी के इस सुरीले सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले कुछ मिनट्स आप मेरे साथ बिताने वाले हैं कुछ ऐसी बातों और कुछ ऐसे एहसासों के साथ जो आपकी सुबह को हल्का, ताज़ा और मुस्कुराहटों से भरा बना दें। दोस्तों, यूँ तो सुबह केवल सूरज के उगने का नाम नहीं है, वो एहसास है जब रात की थकान धीरे धीरे उतरने लगती है, खिड़की से आती हल्की हवा मन को छूकर कहती है एक नया दिन आपका इंतज़ार कर रहा है। किसी के लिए सुबह की चाय की पहली चुस्की है, किसी के लिए मंदिर की घंटियाँ, और किसी के लिए बच्चों की आवाज़ें, और किसी के लिए रेडियो पर बजता ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी खूबसूरती एहसास के साथ आज के गीतों भरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत ऐसे गीतों से हो जाए तो सुबह की नरमी और मन की ताजगी दोनों को अपने साथ लेकर आती है। वाह, कुछ गीत सचमुच सुबह की धूप जैसे होते हैं, धीरे धीरे मन पे उतरते हैं और दिन को आसान बना देते हैं। जिंदगी भी शायद ऐसी ही होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं, बहुत भारी नहीं, बस हल्की हवा की तरह जो छूकर गुजर जाए और पीछे एक अच्छी सी मुस्कान छोड़ जाए। दोस्तों, अक्सर हम अपनी भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन कभी गौर कीजिए, सड़क किनारे खिलते फूल, छत पर बैठे कबूतर, सुबह की हल्की धूप या माँ की आवाज़, ये सब जीवन के वही छोटे छोटे संगीत हैं जिनसे हर दिन सुंदर बनता है। बिल्कुल इसी गीत की तरह।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुबह की हवा में ना सचमुच एक अलग सी बात होती है। कल की परेशानियाँ भी थोड़ी कम लगने लगती हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुबह हमें धीरे से समझाती है, अरे बस करो यार, इतना भी मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। आजकल ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि हम खुद से बात करना ही भूल जाते हैं, बस काम, जिम्मेदारियाँ और भाग दौड़। दोस्तों, कभी खिड़की के पास बैठकर चाय पीजिए और सुनिए कोई प्यारा सा गीत, मन अपने आप शांत हो जाएगा। और अब बारी एक ऐसे गीत की जो सफ़र जैसा लगता है, हल्का, खुला और सुकून देने वाला।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट दुर्गेश। कुछ लोग सुबह बहुत बातें करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सुबह गुड मॉर्निंग बोल पाना भी एक बड़ी उपलब्धि होता है। लेकिन दोस्तों, संगीत वो हर मूड में साथ निभाता है। चाहे आप रसोई में काम कर रहे हों, ऑफिस के लिए निकल रहे हों, या बस आराम से बैठे हों, एक अच्छा गीत हमेशा साथ चल पड़ता है। और इसी तरह आइए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत जो मन को खुली हवा जैसा एहसास

0: श्रोताओं, कितना रूहानी गीत है ये। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हवा सुबह पहाड़ों से उतर कर सीधे दिल तक आ गई हो। कभी कभी हम खुद को भी थोड़ा समय देना चाहिए। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा अपने लिए जीना भी ज़रूरी होता है। सुबह बस इसी बात का याद दिलाती है कि जीवन केवल जिम्मेदारियां नहीं हैं, कुछ सपने भी हैं, कुछ गीत भी हैं, कुछ रास्ते भी हैं। अक्सर होता क्या है ना कि ज़िंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है और हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते। कभी धैर्य सिखाती है, कभी इंतज़ार और कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ना। सच कहें तो संगीत इन सबका सबसे अच्छा साथी है। एक अच्छा गीत कभी दोस्त बन जाता है, कभी याद और कभी हिम्मत। तो कभी अपने किसी पुराने दोस्त की याद दिला जाता है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों धीरे धीरे ये सुरीला सफर अब जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, उम्मीद है कि इन गीतों ने आपकी सुबह को थोड़ा और खुशनुमा बना दिया होगा। याद रखिए, हर दिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। कभी किसी की मुस्कान, कभी कोई गीत, कभी कोई याद, और कभी बस एक शांत सुबह। इसी खूबसूरत एहसास और इसी खूबसूरत गीत के साथ अपने दोस्त दुर्गेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है और अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे

0: दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
1: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद

0: आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स बायलैटरल टॉक्स विद हिज स्वीडिश काउंटरपार्ट उल्फ क्रिस्टर्सन इन गोथेनबर्ग। इंडिया एंड स्वीडन डिसाइड टू एलिवेट देयर बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader VD Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के दो रोज़ा दौरे पर कल गोटेनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क़यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज़ है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वज़ीर आज़म मोदी का 31वां बैनुल अक़वामी एजाज है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायज़ा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक़ किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तजारत व सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, SMEs, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है, ताकि दो तरफा इक्तिसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आज़म किया। स्वीडन के CEOs के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने मेक इन इंडिया और मेड विथ स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदु किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अज़्म का इयादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदु किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के CEOs के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
2: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफ़ी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इकतसादी असलाहत के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामनिगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आज़म मोदी और स्वीडन के वजीर आज़म उल्फ क्रिस्टर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वज़ीर आज़म मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वज़ीर आज़म का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड 5 और जनाब मोदी किंग हेराल्ड 5 और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आज़म के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत व तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजधानी

0: का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम यूडीएफ की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
1: कांग्रेस की क्यादत वाली यूडीएफ वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनक्किद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला वी डी सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अरकान पहली बार वजीर का ओहदा संभालेंगे। यूडीएफ कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीरे आला सुबुकदोष वजीर आला पिनराई विजयन और बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूरदराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़ीरे आला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का ये पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक्कद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्ज़ज़ अफराद और अवामी सेहत माहरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तई मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुँचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमेरिका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन गोटेनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत स्वर गंगा के कार्यक्रम में अर्चना सिंह का गाया राग तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं जितेंद्र स्वैन और सारंगी पर हैं शाहनवाज खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह से राग तोड़ी, तबले पर संगत कर रहे थे जितेंद्र स्वाइन, सारंगी पर शाहनवाज खान, और इसी के साथ ये स्वरगंगा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आवर गेस्ट।

0: स्टीम एंड देन ही सेड बहुत ही अद्भुत है, मैं चाहूंगा लोग देखें ऐसे म्यूजियम को.
1: एंड दैट इज व्हाई ही ब्रॉट दिस इनटू मन की बात आल्सो. दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. नाउ एंड हाउ वाज द रिस्पांस आफ्टर दैट मन की बात एपिसोड?
0: हजारों लोग कनेक्ट करते हैं देश विदेश से. देखिए 7 साल हो गए और खुलने के 6 महीने के बाद कोविड हो गया. 6 महीने 1 साल लगा, फिर वो दूसरा कोविड आ गया. तो बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेस, पीपल वर वेरी स्केयर्ड, बट इट इज अगेन बैक टू, जैसे आज सुबह 100-200 बच्चे थे एक इंस्टीट्यूट के जो मैसकॉम एंड जर्नलिज्म सीख रहे हैं. सो उनके लिए ये हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी कि कैसे स्टार्ट हुआ था सब कुछ. और ये हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है सर. हम 2026 में हैं. पहली पिक्चर 1827 में ली. वी आर एंटरिंग द 200th ईयर ऑफ फोटोग्राफी. 2027 विल बी बाइसेंटिनल ऑफ फोटोग्राफी. मतलब एक ऐसा आविष्कार जो 200 साल में एक पिक्चर लेने में पहले 2 घंटा, आधा घंटा, कुछ मिनट, अब आप कुछ माइक्रोसेकेंड में 1000 पिक्चर्स ले सकते हैं. हाउ द एवोल्यूशन हैज बीन एंड वी हैव ऑल दीज कैमराज टू शो यू एंड टेक यू थ्रू दिस होल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन.
1: Well, I know that the kind of passion that you have for photography and for the cameras, we can talk for ages. Anything that you would like to address to and let our listeners know that what are the kind of problems that you face and what do you foresee the future?
0: So I don't say problems. I believe in problem solving. If you have an idea, leave a legacy behind. Do something unique. And this museum was created in collaboration with the Haryana Sarkar, Haryana government, with Municipal Corporation of Gurugram. When they asked me, ye aap yahan pe logon ko aake dekhne denge? Maine kaha, sir, kyun? Main apne saath ye sab cheeze nahi leke jaane wala hu. Maine ikatthi ki hai, to main yahan chhod ke jaunga. So I can say that everybody is in a state, position to leave a legacy behind. I want to ask you, what are you going to leave behind?
1: Great. Aditya Areji, it was so very nice to host you in today's program. And friends, I would just like to let you know that apart from having this museo camera, the camera museum in Gurgaon, Aditya ji has got various shades, various facets of his own personality. And I'm sure we are going to bring that to you in subsequent programs because he has worked with very fine directors and he has been photographer for some very inspiring movies. Aditya ji, I think in some other time, on some other date, we'll talk about that also. Thank you so very much for sparing your time.
2: Thank you. You were listening to the weekly program Our Guest that is broadcast every Monday at 9:15 a.m. Don't forget to tune in next week, same day, same time and same frequency for more on Our Guest. Have a nice day.

ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है।

नज़र डालते हैं आज की मजलिस में नशरों होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबुगाही प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे शब्द। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें नशर होंगी 9:50 पर और 10 बजे सुनिएगा अकवाल ज़रीं का प्रोग्राम शम्मी फरोज़ा। 10:05 पर हुस्न गज़ल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गज़लें नशर की जाएंगी। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कृष्णचंद्र की कहानी पर मबनी एक ड्रामा जिसका उन्वान है दरवाजे खोल दो। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में सुनिएगा फिल्मी नगमे और 11:30 पर रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग नशर की जाएगी। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 से आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:30 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है वैशाली। 12:45 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में। आलमी खबरें दिन में 1 बजे नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। आज के प्रोग्राम में सुनिए प्रीता बलबीर सिंह का गाया हुआ शब्द।

0: शुभगाही प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे शब्द। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 18 मई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1994 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। गाजा पट्टी क्षेत्र से अंतिम इसराइली सैनिक टुकड़ी हटाए जाने के साथ ही क्षेत्र पर फलिस्तीनी स्वायत्त शासी शासन पूर्णता लागू हुआ। 2006 में आज ही के दिन नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया। 2007 में आज ही के दिन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव को कार्यकाल असीमित समय के लिए बढ़ाया गया। 2008 में आज ही के दिन पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। आज ही के दिन 2008 में भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है मुकुंद दास की। उनका जन्म 22 फरवरी 1878 को ढाका, बंगाल में हुआ था। वे बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे। उन्होंने ग्रामीण स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल के प्रस्तावित विभाजन के खिलाफ बरिसाल टाउन हॉल में एक प्रेरक भाषण दिया था। संदेश को दूर दूर तक फैलाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कामना की कि नाटकों के माध्यम से नेताओं के संदेश को गांवों तक पहुंचाया जा सके। तब मुकुंद दास अश्विनी कुमार दत्त के भाषण से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने महान देशभक्ति की इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। 3 महीने के भीतर मुकुंद दास ने अपनी उत्कृष्ट कृति मातृ पूजा की रचना की। उनके नाटक का प्राथमिक विषय देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन था। स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य भारत माता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त कराना था। आज पुण्यतिथि है पंचानन माहेश्वरी की। उनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। वे सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे। भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से उन्होंने एक नई शाखा का विकास किया। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने पंचानन माहेश्वरी को अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। आज पुण्यतिथि है रीमा लागू की। उनका जन्म 3 फरवरी 1958 को हुआ था। वे हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री थी। उन्हें मुख्यतः फिल्मों में मां की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की मित्र मां हो या वास्तव की कठोर मां या फिर ये दिल्लगी की मालिकाना मां, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की मां की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में रीमा ने मां का जीवंत किरदार निभाया। उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में मां की भूमिका निभाई। टीवी सीरियल तूतू मैं में वे सास के किरदार में थी। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से 4 बार सम्मानित किया गया था। आइए नजर डालते हैं उनके अभिनय पर।

0: इसपे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिसपे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास खलास खलास खलास।
1: शांता,
2: मैंने मारा नहीं उसको, मैंने तो मुक्ति दी है अपने बेटे को। सच में मैंने नहीं मारा उसको, मैंने नहीं मारा उसको। वो तो कब का मर गया था, आज जान निकल गई।
3: आज जयंती है नरेश मित्रों की। उनका जन्म 18 मई 1888 को ब्रिटिश भारत के त्रिपुरा के अगरतला में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1922 में मिनर्वा थिएटर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 1923 में नरेश मित्रों कोलकाता के स्टार थिएटर में शामिल हुए और कई नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने उत्तम कुमार अभिनीत कुछ फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे बहु ठाकुरानी हाट, अन्नपूर्णार मंदिर। नरेश मित्रों बंगाल के लोक नाट्य यात्रा से भी जुड़े थे। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म बहु ठाकुरानी हाट रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर आधारित थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 9:50 होने को हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हम मनसब गोटेनबर्ग में उल्फ क्रिस्टर्सन से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मधु किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून और महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के 2 रोजा दौरे पर कल गोटेनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पॉपुलर पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें

0: आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर जाएंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असम्बली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि असम्बली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्ज़ज़ अफराद और आवामी सेहत माहरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियत और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तई मुश्तरक आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनाकिद होने वाली पहली सिविल इन्वेस्टिगेचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमुई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। भारत ने मुत्तहिद अरब अमारात के बाराखा न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून के मुकर्र तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पर आ जाने की उम्मीद है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहिर अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समुद्र के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब ओल्फ क्रिस्टन से गोटेनबर्ग में दो तरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम शम्मे फरोजा। मौजू है एहसान। तहरीर मौलाना वहीदुद्दीन खान की है।
2: उर्दू मुहावरे में एहसान के मानी किसी के साथ अच्छा सलूक करने के हैं। ये सिफत रहम के हम मानी और हम पल्ला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस खूबी के अपनाने की तरगीब दी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह ताला की अयाल है, यानी सब मखलूक की रोज़ी और उनकी ज़रूरियात हयात का हकीकतन अल्लाह ताला ही कफ़ील है। जिस तरह के कोई आदमी अपने अहलो अयाल की रोज़ी और उनकी ज़रूरियात का मजाजन कफ़ील होता है, बस अल्लाह को अपनी सारी मखलूक में ज़्यादा मोहब्बत उन बंदों से है जो उसकी अयाल यानी उसकी मखलूक के साथ एहसान करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने दुश्मन पर एहसान करो क्योंकि वो 2 कामयाबियों में से 1 कामयाबी है। 2 कामयाबियों में से 1 कामयाबी का मतलब ये है कि यह तो दुश्मन पर आपके एहसान का खुशगवार असर होगा, उसको आपकी दुश्मनी पर नदामत होगी और वो अदावत से बाज रहेगा, और अगर वो नहायत कमज़र्फ है और एहसान फरामोशी का मुजाहरा करता है तो लोगों की नज़र में وہ ذلیل و خوار

0: होगा और आप शरीफुत तबा करार दिए जाएंगे। एहसान करने के लिए इंसान को पहल से काम लेना चाहिए। हजरत हजीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों की देखा देखी काम करने वाले न बनो कि कहने लगो कि अगर और लोग एहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे और अगर दूसरे लोग जुल्म का रवैया अख्तियार करेंगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, बल्कि अपने दिलों को इस पर पक्का करो कि अगर और लोग एहसान करें तब भी तुम एहसान करो और अगर और लोग बुरा सलूक करें तब भी तुम जुल्म और बुराई का रवैया अख्तियार न करो बल्कि एहसान ही करो। एहसान फरामोश शख्स दुनिया में भी जलील व ख़ार रहता है और आकिबत में भी उसको इस बद आमाली की सजा मिलती है। अंग्रेजी शायर और ड्रामा नवीस विलियम शेक्सपियर कहता है कि एहसान फरामोश से ज्यादा और कोई जहरीला सांप नहीं। अल बेरूनी की नज़र में एहसान जतलाना मोहसिन के एहसान को बातिल कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जो बंदा बेशोहर वाली और बेसहारा किसी औरत और किसी मिस्कीन हाजतमंद आदमी के कामों में दौड़ धूप करता हो वो अजर व सवाब में उस मुजाहिद बंदे की तरह है जो अल्लाह की राह में दौड़ धूप करता है। रावी कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि आपने ये भी फरमाया कि और उस शब बेदार बंदे की तरह है जो रात भर नमाज पढ़ता हो और थकता ना हो और उस दायमी रोजेदार की तरह है जो हमेशा रोजा रखता हो कभी बेरोजे के रहता ही ना हो।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शम्मे फरोजा, मौजू था एहसान, तहरीर थी मौलाना वहीदुद्दीन खान की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पहले सुनिए श्री राम की आवाज़ में मिर्ज़ा गालिब और रफत सरोश का कलाम, मधुरानी की आवाज़ में। आप सुनेंगे मिर्ज़ा गालिब और जिगर मुरादाबादी का कलाम।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गज़लों का प्रोग्राम हुस्न गज़ल अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं ड्रामा, उन्वान है दरवाजे खोल दो। तहरीर कृष्णचंद की है और पेशकश है अनवर खान की।

0: पिताजी
1: पिताजी
2: तुम आ गए। पिक्चर देखने के अलावा तुम्हें कोई काम आता भी है?
1: जिसके बाप की 8 बिल्डिंगें हों वो कोई काम क्यों करे पिताजी?
2: क्या इसी दिन के लिए तुम्हें विलायत पास कराया था?
1: वो तो जाने हम कैसे पास हो गए हैं, काम तो हम वहां भी नहीं करते थे, पर मैं कैसे बैरिस्टर हो गया मुझे खुद भी हैरत होती है। पिताजी मुझे आपसे एक जरूरी काम है।
2: और कोई जरूरी काम नहीं हो सकता आज, सिवाय इसके कि इस बिल्डिंग के तमाम फ्लैट किराए पर उठा दिए जाएं। मिर्जा जी
3: इरशाद,
2: कितने फ्लैट लग गए
3: जी? 20।
2: बाकी कितने?
3: 9।
2: मेरे ख्याल में तो आज ही सब लग जाएंगे, उनके एग्रीमेंट भी तैयार कर लो ना।
3: जी वही कर रहा हूँ।
4: पहले घर दी गल कर।
5: ठीक है ठीक है।
6: ओ लच्चू घर दी गल कर। ओए लाला घर का मालिक किधर है, उसको बुला के ला।
7: सेठी सेठी यही घर के मालिक है, सेठ रामदयाल, पंडित रामदयाल। नई सड़क पर इनकी 8 बिल्डिंगें हैं। इधर आओ सेठ जी, इधर आओ। इनको आपका सबसे ऊपर का फ्लैट बहुत पसंद आया है, 7 कमरों वाला। ये सेठ 12,000 पगड़ी भी देगा और 1200 भाड़ा भी। जल्दी से एग्रीमेंट टाइप करो साई, अपने में 2 महीने का कमीशन खड़ा होता है, 2400 रुपया। वही शर्त टाइप करो, एग्रीमेंट साई मुंजा।
2: मगर ये सेठ है कौन?
7: बहुत बड़ा सेठ है, दरियागंज में इसका नीलम रेस्टोरेंट है, आसिफ अली रोड पर नीलम रेस्टोरेंट है, कनॉट पैलेस में नीलम रेस्टोरेंट है, चांदनी चौक में नीलम रेस्टोरेंट है, करोल बाग में।
2: बस, काफी है, लेकिन
7: साईं हम किसी अरे गहरे को तुम्हारे पास

0: स्लैंग।
1: और तू नहीं समझती बालू, मकान बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं मकान लेवांगा तो ऐसे लेवांगा, जरूर लेवांगा।
2: मकान तो अच्छा है पर कपड़े तो उंदीते था ही नहीं।
3: महाशय आपका शुभ नाम?
1: खदे को ओए, हमको महाशय मत कहो, हमारे पिशोर में एक ही महाशय था, महाशय घसीटा राम, और चोले बेचता था। हमारे पिशोर में महाशय चोले बेचने वाले को कहता है, हाँ हमको महाशय मत कहो वरना हम तुम्हारा जैसी तैसी फेर देगा।
3: किस बात पे खफा हो रहे हैं?
0: मलिक साहब आपका नाम पूछ रहे हैं।
1: ओए तो यूं बोलो कि तुम हमारा नाम पूछते है। मेरा नाम आफ्ताब राय, मलिक आफ्ताब राय, और ये हमारा बीबी है इकबाल दे, इसका नाम है। हाँ और पूछो क्या पूछते है।
3: मलिक आफ्ताब इकबाल तो आप लोग पठान है?
1: ओए पठान, पठान तो मैं, ओए इधर साढ़े पिशोर में सब पठान, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब यही ड्रेस पहनता, मगर हम हिंदू है। ओ लाला हम जब तुम्हारा फ्लैट लेगा तो एक कमरे में भगवान जी का मंदिर बनाएगा।
3: मंदिर बनाएगा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। मिर्जा जी आजकल ऐसे धर्म कर्म वाले किराएदार कहाँ मिलते हैं, जल्दी से इनका एग्रीमेंट टाइप करो।
4: बहुत अच्छा हुजूर।
1: कितने का चेक काटो?
3: कौन सा फ्लैट लेना है आपको?
1: वही सात कमरे वाला।
3: मगर आप तो सिर्फ दो मियां बीवी है ना, सात कमरों वाला फ्लैट लेकर क्या करेंगे?
1: शाबाश हुए लाला, तुमको किसने कहा कि हम दो मियां बीवी हैं? ओ हमारा तो तीन बीवी है और सात बचाए।
3: तीन बीवियां? हे राम।
0: पंडित जी इसकी तीन बीवियां हैं, आपकी तो नहीं। साईं जिसकी तीन बीवियां हैं वो संभालेगा, आप क्यों गश खा रहे हैं?
3: हाँ, हाँ, हाँ, तुम ठीक कहते हो, मगर क्यों जी आप मांस मच्छी तो नहीं खाते?
1: वे, वे, वे, वे, वे, कौन कहता है नहीं खाते, मांस मच्छी मुर्गी सब खाते, मुर्ग चुर सब अड़प करते। हम तुम्हारी तरह लाला घास फूस नहीं खाते, हम रात को जब तक दो तंदूरी मुर्ग न चबा ले तो हमको नींद नहीं आते, और फिर लाला तंदूरी मुर्ग के साथ
3: तो तुम पीते भी हो,
1: और उसके बाद थोड़ा सा कव्वाली।
3: कव्वाली भी?
1: और कभी कभी लाला मुजरा।
3: मुजरा भी? हे भगवान ये मैं क्या सुन रहा हूँ। लच्छू
0: पंडित जी
3: जल्दी से ले जाओ इनको बिल्डिंग से बाहर, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ओह मेरा सर चकरा रहा है।
0: चलो सर चलो यहाँ से चलें।
1: और देखो ओए लच्छू का बच्चा, वो हम तुम्हारा मच्छू बनाएगा, इस डंडे से तुम्हारा सर तोड़ेगा। वो मकान पर ये मकान हम जरूर लेगा, जरूर लेके जाएंगे।
0: लग गया सेठ जी आपके और मेरे आने से पहले अभी लग गया। चलो चलो चलो
1: खाना खराब
2: मुफ देखे, चलो उठो भी चलो।
1: और चलता हूँ मगर बालो, ये मकान बहुत ही अच्छा।
2: अच्छा तो है पर कपड़े तो उंडी ते जगह नहीं।
1: चट कपड़े दोनों।
5: आप भी गजब करते हैं पिताजी। क्यों? ऐसा सेठ रोज रोज मिलता है जो 12,000 पगड़ी दे और 1200 किराया भी दे और सात कमरे वाले फ्लैट में रहे, ऐसा सेठ रोज रोज नहीं मिलता।
3: मगर तुमने सुना नहीं, वो मांस मच्छी अंडा सब खाता है।
5: उधर फ्रंटियर के इलाके में सब खाते हैं।
3: तो मैं किसी फ्रंटियर वाले को अपनी बिल्डिंग में जगह नहीं दूंगा।
5: सब कश्मीरी खाते हैं।
3: तो मैं किसी कश्मीरी को अपनी बिल्डिंग में रहने नहीं दूंगा।
5: मछली तो बंगाली हर रोज खाते हैं।
3: हो तो मैं किसी बंगाली को यहाँ घुसने नहीं दूंगा।
5: और मछली तो मद्रास में भी खाई जाती है और मलयाली लोग भी खूब मछली खाते।
3: तो मैं किसी मद्रासी और मलयाली को भी यहाँ नहीं रखूंगा। हाँ
5: और अक्सर पंजाबी लोग भी गोश्त खाते।
3: तो मैं किसी पंजाबी को। क्या बात है सरदार
6: जी? 11 नंबर से 12 नंबर फ्लैट के दरवाजे से खिड़कियाँ तो बन गई हैं।
4: एक दिन पहले ही आपने काम खत्म कर दिया। वाह वाह।
6: जब काम करना ही होया तो एक दिन पहला क्या थे पीछे क्या। पर लाला जी अब लकड़ सारी खत्म हो गई है और अलमारियों के लिए और बारड रोब के लिए लकड़ चाहिए जी। वो बारड रोब के लिए टीक चाहिए पर अलमारियों के लिए सिल्वर भी चलेगी।
3: मैं अभी सरदार गुरदयाल सिंह को लकड़ी के लिए टेलीफोन करता
6: जी। जल्दी मंगा दियो, देखो हम खाली हाथ बैठे हैं।
4: ये सरदार अपने काम में बड़ा होशियार है।
3: बड़ा खरा और सच्चा बढ़ई है, एक फुट लकड़ी इधर से उधर नहीं करता। ये मिर्जा जी ये बिजली का क्या होगा? बिल्डिंग में अभी तक बिजली नहीं आई है। वो बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर तो आपका मित्र है।
4: कौन? डीसी गुप्ता?
3: हाजी डीसी गुप्ता नहीं, वो जो नया क्रिश्चियन इंस्पेक्टर आया है, क्या नाम है उसका?
4: अच्छा अच्छा डिसूजा।
3: हाँ हाँ इंस्पेक्टर डिसूजा, उसके पास फाइल लेकर जाओ।
4: अभी तो धूप बहुत है।
3: इलेक्ट्रिक हाउस तो बगल ही में है, 10 मिनट में वापस आ जाओगे। चले जाओ ना।
4: अच्छा जाता हूँ।

0: आहा, अच्छा मियाँ।
1: अमा मुनन, तुम यहाँ कहाँ भाई? तुम तो लखनऊ में थे।
0: लखनऊ में थे मगर अब दिल्ली आ रहे हैं। यहाँ दिलशाद जरदे की ब्रांच खोलने का इरादा है। 40,000 पगड़ी देकर चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान हासिल की है।
1: तो गोया आप दिल्ली में रहोगे?
0: इंशाल्लाह।
1: भाई घर में तो सब खैरियत है, बेगम साहिबा और आपका साहबजादा।
0: माशाल्लाह, अब तो वो 10 बरस का हो गया है। 2-3 बरस के बाद खुदा ने चाहा तो चौक की दुकान संभालेगा।
1: क्यों नहीं। अमा मुनन, मैंने सुना था कि आप बम्बई जाने वाले हैं और फिल्म कंपनी खोलने का इरादा रखते हैं।
0: माशा अल्लाह, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अच्छा मिर्जा, तुम जानते हो हम लोग 7 पुश्तों से चौक में जरदा तंबाकू बेच रहे हैं और वही बेचेंगे। तुमको मालूम है इस बीच में शाहजहानी होटल वाले अपना कारोबार बंद करके 5 लाख रुपया लेकर बंबई गए थे फिल्म कंपनी खोलने के लिए।
1: यानी ये कब का वाक्य है?
0: अभी गुज़श्ता साल का है, जब अपने गोलागंज के नवाब जवां बख्त चंगेजी ने अपने बच्चे की मुसलमानियां की थी। ये लोग अपना सब बेच बाट के बंबई चले गए और वहां जाके उन्होंने एक फिल्म कंपनी
1: यानी कबाब बनाते बनाते फिल्म कंपनी खोल दी। अरे भाई, कैसी चल रही है उनकी कंपनी?
0: अजी क्या चलती, 5 लाख रुपया 5 महीने में चटनी हो गया। 2 लाख हीरो ले गया, 2 लाख हीरोइन, 1 लाख हीरोइन की नानी। अब सुना है चर्च गेट के बाहर खड़े होकर कबाब बेचते हैं।
1: पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था।
0: इसलिए अच्छन मिर्जा, हम तो वही अपना जरदा बेचेंगे। पहले सिर्फ लखनऊ में बेचते थे, अब दिल्ली में भी बेचेंगे। मगर उस्ताद, दिल्ली में रहने के लिए कोई ठिकाना तो होना चाहिए, कोई घर दिलवा दो। सुना है इस बिल्डिंग में बहुत से फ्लैट खाली हैं।
1: अरे जितने चाहो घर मिलेंगे। आओ आओ, तुम्हें सेठ से मिला दूं।

0: पंडित जी, ये हमारे बचपन के साथी और लंगोटिए मियां मुनन हैं। पंडित जी, इनको जरूर एक फ्लैट दे दीजिए।
1: आप तो जानते हैं मिर्जा जी, मैं तो सब बता चुका हूँ मैं कैसे लोगों को फ्लैट देता हूँ। ये तो मुनन मियां हैं।
0: ओ समझा। अरे पंडित जी, ये जो मुनन भाई हैं ना, तो इनका असली नाम है मुनीश नारायण सक्सेना। ये मुनीश से हो गए मुनन, जैसे मैं शाह से हो गया अच्छन। अब समझ में आया।
2: बस बस बस बस कीजिए मिर्जा जी, इस पर भी इनको यकीन ना हो तो चीफ कमिश्नर से शनाख्त नामा लाकर देता हूँ मैं फोटोग्राफ।
1: नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आप कहते हैं और मिर्जा जी कहते हैं तो मैं विश्वास किए लेता हूँ और इनके कहने पर मैं आपको फ्लैट दे देता हूँ। मगर मेरी कुछ शर्तें भी हैं। जब तक आप मेरी बिल्डिंग में रहेंगे, आपके घर में गोश्त नहीं आएगा।
2: कैसे नहीं आएगा? मैं खुद गोश्त और पोस्त का बना हुआ हूँ, क्या मैं खुद अपने घर में नहीं आऊंगा?
1: मेरा मतलब मांस आहार से है श्रीमान जी। जब तक आप मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, आपके घर में गोश्त नहीं पकेगा।
2: नहीं पकेगा? बाहर से ले आएंगे?
1: नहीं नहीं, बाहर से भी नहीं ला सकते।
0: कह दो नहीं लाएंगे।
2: अच्छा, बाहर से भी नहीं लाएंगे?
1: और मछली भी नहीं पकेगी।
0: कह दो नहीं पकेगी।
2: अच्छा, नहीं पकेगी।
1: और अंडा भी नहीं?
2: ना सही।
1: और लहसुन भी नहीं और प्याज भी नहीं?
2: गोली मारिए दोनों को।
1: आपके घर में कव्वाली नहीं होगी?
2: नहीं होगी।
1: मुजरा नहीं होगा?
2: नहीं होगा।
1: किसी किस्म का दुराचार नहीं होगा?
2: दुराचार का क्या मतलब? क्या मैं अपने घर में अचार भी नहीं खा सकता?
1: दुराचार का मतलब ये है सक्सेना जी कि मेरे घर में कोई बुरा काम नहीं हो सकता।
2: अच्छा, तब तो शायद आप भी मुझसे इस फ्लैट की 4000 पगड़ी ना लेंगे।
1: क्यों?
2: 3 माह का डिपॉजिट ना लेंगे, 300 किराया ना लेंगे, 2 माह की दलाली ना लेंगे। ये सब लूटने के धंधे हैं।
1: मैं लूटने का धंधा करता हूँ?
2: हाँ, और ब्लैक का भी।
1: ब्लैक का भी?
2: आप बड़े भारी दुराचारी हैं। अगर कव्वाली सुनना, अंडा खाना और दाल में लहसुन या प्याज का बघार देना दुराचार में शामिल है, तो 4000 ब्लैक पगड़ी में लेना, 2 महीने की दलाली लेना और इस फ्लैट के लिए 300 लेना, जिसका किराया कायदे से किसी हालत में 60 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे बदतर दुराचार तो मेरे जहन में नहीं आ सकता।
1: मेरी दवाई मिर्जा जी।
3: लीजिए पिताजी, सिर्फ एक खुराक बची है।
0: ओ बेचारी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत।

0: है।
1: अब कुछ खाएंगे नहीं तो यही होगा।
0: इस वक्त ही ना कुछ मत कहो मुनन, मैं किसी वक्त इत्मीनान से इनसे बात करके तुम्हारे लिए घर ठीक कर दूंगा।
2: नहीं मिर्जा जी, आप तकलीफ ना करें, मुझे यहाँ मकान लेना ही नहीं है। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप मालिक मकान है कि फूड कंट्रोलर है? अच्छा मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे।
3: आज तो अष्ट ग्रह का दिन मालूम होता है, कोई ग्राहक भी ढंग का नहीं आता और दवा भी खत्म हो गई।
2: आप भी तो गजब करते हैं पिताजी, आखिर आप इस बिल्डिंग में रखेंगे तो किसे रखेंगे? एक बीवी वाला मुसलमान आप नहीं रखेंगे, तीन बीवियों वाला हिंदू आप नहीं रखेंगे, कवाली सुनने वाला आपको पसंद नहीं, मांस मच्छी खाने वाला आप नहीं चाहते, प्याज लहसुन वाला आप नहीं चाहते, पंजाबी को आप नहीं रखेंगे, बंगाली को आप नहीं रखेंगे, मलयाली को आप नहीं रखेंगे, आखिर आप रखेंगे तो किसको रखेंगे इस घर में? आधा हिंदुस्तान तो जात बाहर कर दिया आपने।
3: इस घर में रह सकता है जो मर्यादावादी है, जिसे हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर गौरव।
2: गौरव तो मुझे भी है और उन सबको है जो इस देश में रहते हैं। समय के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति दोनों बदलते हैं। इस देश में हमसे पहले द्रविड़ आए, फिर आर्य आए, फिर मंगोल आए, मुसलमान आए और अंग्रेज आए। इस दुनिया में भांत भांत का जानवर रहता है और अपनी अपनी बोली बोलता है, और आप कोई एक रंग, कोई एक ठप्पा, कोई एक धर्म सब पर लागू नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, चलेगा ही नहीं।
3: मगर इस बिल्डिंग में तो वही चलेगा जो मैं चाहूंगा, जैसे अब तक पुरानी आठ बिल्डिंगों में चला।
2: मगर ये नई बिल्डिंग है।
4: नमस्कार पंडित जी।
3: नमस्कार इंजीनियर साहब।
4: हेलो कोमल।
2: हेलो मुखर्जी।
4: ऊपर फोर्थ फ्लोर पर फर्श का घिसाई का काम शुरू कर दिया है, चल के देख ले बेन।
3: चलिए कमल, मेरे बाद कोई ग्राहक आया तो संभाल लेना।
2: आप बेफिक्र रहिए, मैं सब ठीक कर लूंगा।
3: और लकड़ी का कुछ करो सरदार गुरदयाल सिंह से। और मिर्जा जी।
0: जी हुजूर।
3: आप जाके इंस्पेक्टर डिसूजा से मिलिए बिजली के लिए।
0: जी बहुत अच्छा।
3: चलिए इंजीनियर साहब।
2: हेलो कौन? अहमद। अरे अहमद कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। हाँ अबे भूल गए, आज हॉकी का फाइनल है। हाँ तो तुम गाड़ी लेकर आ रहे थे ना? क्या गाड़ी खराब हो गई? अपनी गाड़ी भी पांच दिन के बाद गैराज से वापस आएगी। तो प्यारे काम कर, माथुर की गाड़ी ले लो या मकबूल की गाड़ी ले लो और सीधे आ जाओ यहाँ। मैं यहाँ बैठा बैठा सख्त बोर हो रहा हूँ यार। अरे यार अहमद गजब हो गया, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। हाँ हाँ। अरे नहीं भाई नहीं आ सकता मैं, पिताजी का हुक्म है, नहीं टाल सकता उसे। हाँ हाँ तुम जाओ मैच देखो, अपनी किस्मत में तो कोई दूसरा ही मैच है शायद। बाय बाय।
5: डैडी यहाँ है।
2: डैडी? किसके डैडी, मेरे या आपके?
5: डोंट बी सिली, ऑफ कोर्स माइन। क्या तुम मेरे डैडी को नहीं जानते?
2: आपके डैडी को जानने की ख्वाहिश किसको ना होगी, मगर मेरी बदकिस्मती है कि अब तक उनसे मुलाकात ही ना हो सकी।
5: वेरी सरप्राइजिंग, उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर कहा था कि वो मुझे यहाँ मिलेंगे। कमल कुंज यही है ना?
2: जी हाँ यही है।
5: ये इश्तेहार आपने दिया था?
2: जी हाँ।
5: दैट्स गुड। दरअसल हमें एक मकान चाहिए, माय फादर इज अ डॉक्टर, हम लोग कलकत्ता से आए हैं।
2: कलकत्ता बड़ा प्यारा शहर है।
5: मगर बड़ा ओवरक्राउडेड है।
2: हाँ ओवरक्राउडेड तो है।
5: और बड़ा नॉइजी है।
2: हाँ नॉइजी भी है, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं।
5: कलकत्ता गए हैं?
2: हाँ नहीं नहीं गया तो नहीं हूँ, मगर वो आते जाते दोस्त बताते रहते हैं कलकत्ते के बारे में।
5: मेरे डैडी को शोरगुल बिल्कुल पसंद
2: नहीं। मुझे भी शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है।
5: लेकिन मुझे है, I like Gaiety.
2: Oh, oh, Gaiety. Gaiety की बात ही दूसरी है। रौनक और चहल पहल को कौन पसंद नहीं करता? I'm all for Gaiety.
5: Oh God, Daddy अभी तक नहीं आए।
2: आ जाएंगे, जल्दी क्या है?
5: उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा था कि वो यहीं कहीं पर किसी मरीज को देखकर यहाँ आ जाएंगे। मगर आपकी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खाली भी है? वरना मैं यहाँ क्यों खामखा वेट करूं?
0: मोहतरमा एक नहीं नौ खाली हैं।
5: नौ? Really? You're not joking?
0: No.
5: और इन नौ फ्लैट्स में से मुझे एक फ्लैट तो मिल सकता है ना?
0: मोहतरमा जरूर मिल सकता है।
5: थैंक यू सो मच।
0: मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूं तो?
2: ओ, ये बीच में कम वक्त कहां से अटक गया। मिर्जा जी, आप तो इंस्पेक्टर डिसूजा से मिलने गए थे।
0: जी हाँ, जाता हूँ।
5: 10 दिन से हम दोनों बाप और बेटी इस शहर में फ्लैट ढूंढ रहे हैं। Oh, this is too good to be true.
0: मुझे अपना खादिम समझिए।
2: ये कम वक्त मुझे बात ही नहीं करने देता, अपना ही

0: अब डाले जा रहा है।
1: आपका नाम?
2: यूं तो मेरा नाम मिर्ज़ा इरशाद हुसैन तैमूरी अल-मुतख़ल्लस बआसी लखनवी है, लेकिन अगर आप मुझे अच्छन कहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: अच्छन? अच्छन? Oh, what a sweet name! और आप कौन है?
2: ये भी नहीं काम करते हैं।
0: जी, मैं इस बिल्डिंग के प्रोप्राइटर का लड़का हूँ।
1: Oh, how nice! Mr.
0: Kamalkant.
1: Please, Mr. Kamalkant, for God's sake, मुझे एक फ्लैट दे दो ना।
0: नो, खाली है। आप कोई सा भी पसंद कर लीजिए।
1: मैं बाद में पसंद करती रहूंगी, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो अभी मैं अपना सामान मंगवा लूं होटल से। उधर ही नई सड़क पर है।
0: मगर
1: लुक, I want to give my daddy a surprise. वो बहुत खुश होंगे।
0: तो फिर सामान मंगवा लीजिए।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: ਨਾਲ ਬਾਂਧ ਕੇ ਯਹਾਂ ਲੈ ਆਓ ਕਮਰ ਕੁੰਜ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਪਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤਨਾ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੋ
1: चलिए आपको फ्लैट दिखा दूं।
2: अजी आप क्यों जहमत करते हैं, मैं दिखा दूं।
1: मिर्जा जी मेरे ख्याल में आप अगर इस वक्त इंस्पेक्टर डिसूजा से मिलाए तो कैसा रहे,
2: और अगर आप सरदार गुरदयाल सिंह की दुकान पर चले जाएं तो।
1: पिताजी ने आपसे बिजली घर जाने को कहा था, आपको याद होगा।
2: आपसे भी तो कह गए थे सरदार गुरदयाल सिंह लकड़ी फरोश से मुलाकात करने के लिए।
1: मेरे ख्याल में आप मेरा मशवरा कबूल कर लीजिए और सबसे पहले बिजली घर चले जाइए, ये लीजिए फाइल
2: जी,
1: और फिर सरदार गुरदयाल सिंह के यहाँ भी चले जाइए, समझे
2: जी।
1: आइए चलिए देख लीजिए फ्लैट।
0: लेट्स गो।
1: आइए।
2: और हमको कर दिया फ्लैट। लालच है इस नौकरी पर, मगर जाना ही पड़ेगा।
3: बिटिया, बिल्लू बिटिया, हैं? यहाँ तो कोई नहीं है।
4: मगर कमल कुंज तो यही है।
3: यही है कमल कुंज, तो फिर सारा सामान यहीं रख दो। हाँ, बिल्लू बिटिया कहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। है मजूर के, अरे जरा पंखा तो बड़ी गर्मी है। हाँ, इस कुर्सी पर जरा सुस्ता लूँ।
1: बाबूजी पैसे।
3: पैसे?
1: हाँ जी।
3: ये लो पैसे।
1: बाबूजी ये तो बहुत कम है।
3: कम है? अच्छा अच्छा, ये और लो, अब तो खुश हो।
1: हाँ मालिक, राम राम।
3: राम राम।
5: तुम यहाँ क्या कर रहे हो
3: डॉक्टर साहब जी?
5: और हमारा सामान यहाँ कैसे आ गया
3: जी? बिल्लो बिटिया ने टेलीफोन किया था सरकार कि सामान लेकर फौरन यहाँ आ जाओ, मैं आ गया साहब।
5: बिल्लो ने टेलीफोन किया था?
3: हाँ सरकार।
5: तो जरूर उसे यहाँ फ्लैट मिल गया होगा, वो गलत टेलीफोन करने वाली नहीं है। मुझे जरा एक पेशेंट के यहाँ देर हो गई, वरना इससे पहले आ जाता। बिल्लो कहाँ है?
3: मालूम नहीं सरकार, मगर कमल कुंज तो यही है।
5: बिल्डिंग तो नहीं है, और बाहर से फ्लैट भी अच्छे मालूम होते हैं।
3: हमारी बिटिया कोई बुरा फ्लैट थोड़ी पसंद करेगी है जी।
6: साहब, अगर 3 दिन में खिसाई खत्म हो जाए तो अच्छा है।
7: हो जाएगा।
6: ये सामान किसका है?
5: हमारा है, और किसका?
6: और आप कौन है?
5: और आप कौन है?
6: ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, पहले आप बताइए आप कौन है और किसने आपको सामान यहाँ लाने की इजाजत दी।
5: सामान तो वही लाएगा जो फ्लैट किराए पर लेगा। मेरी बेटी ने गालिबन यहाँ फ्लैट किराए पर लिया है।
6: गालिबन?
5: गालिबन नहीं, यकीनन। वो इस कदर शोर न होती तो मेरे नौकर को टेलीफोन करके सामान यहाँ न मंगा लेती।
6: मगर आपकी बेटी है कहाँ?
5: यही तो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी बेटी है कहाँ?
6: मैं क्या आपकी बेटी का रखवाला हूँ?
5: मगर उसने अभी यहाँ से टेलीफोन किया था, क्यों राम भरोसे?
3: जी हाँ, और तभी मैं सामान लेके आ गया।
5: और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं, यू विकेड ओल्ड मैन। ठीक ठीक बताओ कहाँ है मेरी लड़की, वरना अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। बताओ।
6: छोड़ो मेरी गर्दन,
5: बोलो।
6: मेरे ही घर में आके।
0: जेरी, मैं अभी फ्लैट देख के आ रही हूँ।
5: तो फिर कैसा है फ्लैट?
0: Oh, it's a very nice flat. 2 bedrooms, 2 big bathrooms, and a big hall and a big kitchen and a big pantry. Oh, it's lovely. And you know, किराया सिर्फ 700 रुपए।
5: Good. तो तुमने देख लिया?
0: और ये देखिए फ्लैट की चाबी।
6: कमल
1: जी,
6: तुमने फ्लैट इनको दे दिया?
1: हाँ पिताजी।
6: मगर ये हैं कौन?
1: ये तो मैंने पूछा ही नहीं।
6: नाम तक नहीं पूछा और किराए पर दे दिया?
1: इनका नाम बिल्लो है शायद।
6: बिल्लो
1: जी?
6: बिल्लो कौन बिल्लो? अरे बिल्लो से बिमला हो सकती है, बिल्लो से बलवंत कौर हो सकती है, और बिल्लो से बतूल भी हो सकती है।
1: ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मेरे लिए बिल्लो काफी है, बहुत काफी है।
0: मैं बताती हूँ।

0: मेरा नाम इजाबेला है,
1: इजाबेला
0: कोलियो, और ये मेरे डैडी हैं, डॉक्टर एडवर्ड कोलियो, हिंदुस्तान के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट।
2: एडवर्ड कोलियो?
1: जी हाँ।
2: इजाबेला कोलियो?
0: जी हाँ।
2: तो आप लोग क्रिस्टान हैं?
1: हाँ, क्रिस्टान हैं और हिंदुस्तानी हैं।
2: मांस मछली अंडा मटन बेकन हैम सब खाएंगे?
1: खाएंगे, क्यों नहीं खाएं?
2: हे भगवान, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। निकल जाओ बदमाशो, अभी चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ।
3: पिताजी,
2: मैं मर जाऊंगा मगर जीते जी इनको कभी अपनी बिल्डिंग में घुसने नहीं दूंगा, सुनते हो? निकल जाओ।
4: जाता हूँ मगर अदालत में तुमसे समझूंगा। तुमने हमारी इंसल्ट की है, मैं तुमसे 50,000 रुपए हर्जाना वसूल करूंगा।
2: तुम 50,000 नहीं, 1,00,000 वसूल करो, 2,00,000 वसूल करो, 5,00,000 वसूल करो, 10,00,000 वसूल करो, मगर तुम कभी इस बिल्डिंग में।
5: दिखा दौरा पड़ गया।
1: चलो बेटा।
0: लेट्स गो।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
4: मेरा हाथ छोड़ दो।
3: डॉक्टर साहब, इन्हें दिल का दौरा पड़ गया है।
4: तो मैं क्या करूं?
3: फॉर गॉड सेक, हैव मर्सी ऑन हिम, इन पर दया कीजिए, इन्हें बचा लीजिए।
4: देखो बेटे, मैं क्रिस्टान हूँ, मेरे हाथ लगने से तुम्हारे डैडी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा।
3: वापस चले चलिए डॉक्टर साहब, पिताजी को बचा लीजिए, वो बूढ़े आदमी हैं, पुराने विचारों के हैं, मगर मेरे पिता हैं, उन्हें माफ कर दो डॉक्टर। डॉक्टर आप तो समझदार हैं, वापस चलो डॉक्टर, एक एक लम्हा कीमती है।
0: चलिए चलिए,
3: आइए डॉक्टर साहब।
4: आप सब लोग पीछे हट जाए, मैं देखता हूँ। इन्हें फौरन इंजेक्शन देना होगा। बेटी, मेरा बैग। स्प्रिट
0: लीजिए,
4: सिरिंज
0: ये लीजिए।
3: पिताजी, डॉक्टर साहब, इंजेक्शन ने तो अक्सर का काम किया है।
2: मैं
3: पिताजी,
2: मैं कहाँ हूँ?
4: उठिए मत, लेटे रहिए,
2: मुझे बैठने दो।
3: डॉक्टर साहब ने आपकी जान बचाई है पिताजी।
5: आप चुप क्यों हैं? क्या आप अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे?
4: इसे कुदरत का एक मौजदा कहना चाहिए। एक मिनट पहले मैंने देखा, आपकी नब्ज बंद थी, दिल बंद था, सांस बंद था, जिस्म हर एतबार से मुर्दा था।
2: मगर मैं मरा नहीं था डॉक्टर, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बहुत लंबे सफर पर जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे अपनी बिल्डिंग की आत्मा मिली।
4: बिल्डिंग की आत्मा?
2: हाँ डॉक्टर, बिल्डिंग की आत्मा। हर बिल्डिंग की आत्मा होती है, जैसे हर इंसान, हर कौम और हर देश की एक आत्मा होती है, उसी तरह हर बिल्डिंग की भी एक आत्मा होती है। और ये आत्मा मुझे रास्ते में मिली और मैंने उससे कहा, आओ इकट्ठे चले, हमारा तुम्हारा रास्ता एक है। वो बोली, इस रास्ते पर चलकर न तुम कभी मंजिल को पहुंच सकोगे न मैं, क्योंकि ये रास्ता पुराना हो गया, अब ये रास्ता कहीं नहीं जाता है। मैंने पूछा, तो आगे जाने की तरकीब क्या है? वो बोली, आगे वही लोग जाते हैं जो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं, इसलिए मैं वापस आ गया तुम्हें ये चाबियां देने के लिए। बिल्लो बेटी, तुम ये चाबियां ले लो और मेरे घर के सारे दरवाजे खोल दो। इस बिल्डिंग का नक्शा एक बंगाली इंजीनियर ने बनाया है, राजस्थानी मजदूरों ने इसमें ईंटें लगाई हैं, मलयालियों ने इसको रंग रोगन दिया है, पंजाबी बढ़ई ने इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाई हैं, अब्दुल सत्तार ने इसमें मोज़ेक का फर्श बिछाया है, डिसूजा इसमें बिजली लाएगा और डेविड अब्राहम पानी के नल लगाएगा और रुस्तम नसरवान जी सैनिटरी फिटिंग्स करेगा। ये घर जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी ने मिलकर बनाया है, अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे आबाद होगा और कैसे तरक्की करेगा और कैसे इसका झंडा आसमान पर बुलंद होगा? इसलिए मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हें ये चाबियाँ देता हूँ बेटी। अब इस घर के सारे दरवाजे खोल दो और इसके सारे बेटों को बुला लो, आफताब राय को, मुखर्जी को और डॉक्टर एडवर्ड कोलियो को और सरदार गुरदयाल सिंह को, और जिस किसी ने एक ईंट भी इस घर को दी है ये घर उसका है, और जो कोई इसकी दीवारों से लगकर रोया है ये घर उसका है, और जिस किसी ने इसके सहन में खड़े होकर इंसान और उसकी उम्मीद और उसकी हसरत और उसके दुख और उसकी मसरत और मुस्तकबिल से प्यार किया है ये घर उसका है। अब ये घर अकेले पंडित रामदयाल का नहीं है, ये घर तुम सब का है।
6: अभी आप सुन रहे थे ड्रामा उन्वान था दरवाजे खोल दो, तहरीर कृष्णचंद की थी और पेशकश अनवर खान की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

अभी आप सुन रहे थे कभी हाँ कभी ना फिल्म का नगमा, आवाज़ थी कुमार सानू की। अब सुनिए अनवर फिल्म का नगमा, रूप कुमार राठौर की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे जाल फिल्म का नगमा, आवाज थी मोहम्मद अजीज की। मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर।
1: आकाशवाणी प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर में आज का अंक फिर विशेष जैसे हर बार होता है और उम्मीद है हमारे सारे श्रोता हमारे साथ अब तक जुड़ गए होंगे। तो आप सब आ गए हैं हमें उम्मीद है, नहीं आए हैं तो फटाफट आ जाइए क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे विशेष विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर एस के रसानिया। आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
3: धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: आज का हमारा रेडियो डॉक्टर भी होगा डेंगू पर। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारे श्रोता जानते तो हैं, मच्छरों से जनित ये बीमारी होती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी जिज्ञासा भी आपके मन में जरूर होगी कि अगर ये हो जाती है तो किस तरह से, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू करूं, शुरू तो हो चुका है लेकिन आगे बढ़ूं, मैं ये जानना चाहूंगी इसको डेंगू बोलते हैं कि डेंगी बोलते हैं, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में मैं गलत ना बोलती रहूं।
3: वो ही है कि हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो बात है कि डेंगी अच्छा। और डेंगी एक ही चीज है, डेंगू बोलो या डेंगी अच्छा। बोलो
2: गलत नहीं है, दोनों
3: गलत कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप उसको बोलेंगे तो डेंगी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी में डेंगू है तो डेंगू या डेंगू बात एक ही है।
2: चलिए, तो डेंगू डेंगी दोनों नामों से आप इसको जानते हैं, लेकिन प्रश्न वही है। अगर आप डेंगू या डेंगी से संबंधित कोई भी प्रश्न डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं तो हमारे साथ सीधे जुड़िए। डॉक्टर साहब, हमें एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले इनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो।
4: हाँ शालिनी मैम को, शालिनी साहब से ही नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: डॉक्टर साहब को भी प्रणाम।
3: नमस्कार।
4: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। सर
2: जी, अपना प्रश्न करें आप।
4: यहाँ करमपुरा बिल्कुल नियरेस्ट पंजाबी बाग के पास है, गंदा नाला भी बहता है, यहाँ मच्छर बहुत ही ज्यादा होते, एक तरीके से कह लो कुंभ का मेला मच्छरों का लगा रहता है। कि जी, एक तो मैंने सुना है भैया पहाड़गंज में पंचकुला रोड है वहाँ तो मच्छर होते ही नहीं, और उत्तम नगर में बिल्कुल मच्छर नहीं होते, और मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है कि फ्रांस वाले तो मच्छर बला क्या है इसकी डेफिनेशन से ही वाकिफ नहीं है। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या होती है जो हिंदुस्तान में इतने मच्छर होते हैं, और इसका कोई घरेलू उपाय बताए, बड़ी मेहरबानी होगी, खासतौर से जो डेंगू।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
3: राजेंद्र जी, आपका प्रश्न बड़ा पेक्यूलियर है, पेक्यूलियर इन द सेंस आपने कहा कि मेरे इलाके में तो मच्छर बहुत है, और किसी दूसरे एक इलाके के दिल्ली का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा वहां के लोगों को मच्छर देखे भी नहीं उन्होंने, और फिर तीसरा आपने कहा फ्रांस में उन मच्छर होते क्या उनको मालूम भी नहीं है। ये प्रश्न अपने आप में ही आपके प्रश्न जो है उत्तर है इसका, वो इसलिए क्योंकि देखिए जो कहीं जगह ऐसी है जहां पर कि ये जितने भी मच्छर हैं बेसिकली पैदा हो रहे हैं जहां हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उसके हिसाब से। अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा है, जहां पर कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो रहा है, जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा या जा कहीं पानी स्टेग्नेशन होगा तो वहां पर मच्छर पैदा होंगे, क्योंकि मच्छर जो है पानी में पैदा होते हैं। तो जहां भी कहीं मच्छर पैदा होने के लक्षण या कारण मौजूद होंगे तो वहां मच्छर होगा, और जहां यदि जनता भी जागरूक होगी, अगर आसपास कहीं आपके मच्छर अगर कहीं पैदा होते देखें, अगर आप उन्हें खुद ही उस जगह को खत्म कर दें तो वहां मच्छर नहीं होंगे, ठीक है। और कहीं जनता अगर जागरूक होगी ये देखने के लिए किस तरह मच्छरों का अपने आप हम समाप्त कर सकें, या हम सरकारी तंत्र का उपयोग करके अपने आसपास के मच्छरों को समाप्त करा सकें, तो यही वजह है कि कुछ इलाकों में मच्छरों की बहुत ज्यादा तादाद है, कुछ जगह बहुत कम है और कुछ जगह नाके बराबर है
2: जी। और एक और प्रश्न डॉक्टर साहब इन्होंने किया था कि कोई घरेलू उपाय है क्या इसको ठीक करने का।
3: देखिए, मच्छर अगर पैदा हो रहे हैं कहीं भी तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का, स्पेशली जो डेंगी मच्छर है, डेंगी जो हम बोलते हैं एडीज मॉस्किटो, डेंगी जो होता है

0: एडीज मॉस्किटो के कारण होता है, और एडीज मॉस्किटो जो पैदा होता है हमारे घर और घर के आसपास के वातावरण में पैदा होता है, जहां भी कहीं अगर पानी इकट्ठा होगा किसी भी जगह, अगर सिर्फ एक चम्मच पानी भी यदि कहीं अगर कहीं इकट्ठा है उसमें अगर बरसात का पानी है, कहीं कोई पानी अगर इकट्ठा है तो बरसात या बरसात के दौरान में उस पानी में मच्छर पैदा हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपके अगर घर में कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर आपको लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके घर के आसपास कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो देखिए कहाँ पैदा हो रहे हैं। जहां पे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस जगह को, उस जगह जहां पानी स्टेग्नेशन अगर कहीं हो रहा है, पानी अगर इकट्ठा है कहीं भी है, तो उस जगह को आप सूखा कर दें।
1: जी, तो इसका उपाय यही है कि हम लोग मच्छरों को खत्म कर
0: बस। जी जी,
1: और मच्छर होते हैं पानी जमाव पे।
0: जी जी,
1: तो पानी कहीं भी जमा हो तो वहां पर हम कोशिश करें कि ऐसा
0: देखिए, स्पेशली ये जो बरसात का समय है, बरसात का समय तो मच्छर पैदा होने के लिए बहुत ही मतलब फेवरेबल एटमोसफेयर है मच्छर पैदा होने के लिए, क्योंकि उनको जो तापमान चाहिए, जो आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में चाहिए, वो सब बरसात में उपलब्ध होती है मच्छरों के लिए। तो वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें मच्छर बड़े आराम से पैदा होते हैं। तो ये आप देखें कि आप घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आसपास कहीं भी, आपके घर पे अगर छत पे चले जाए, कहीं अगर जैसे कहीं अगर बाहर कहीं खुले में जा रहे हैं, कहीं कोई टूटा हुआ कप है, टूटा हुआ कोई गमला पड़ा हुआ है, अगर उसमें कहीं जरा सा ही पानी इकट्ठा है, आप देखेंगे उसके अंदर पानी में बरसात या बरसात के टाइम में बाद में उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे लार्वा उसमें पैदा होंगे। तो यदि आपको कहीं भी ऐसा कोई जगह दिखती है जहां पानी जरा सा भी इकट्ठा है, इवन जो आपके पेड़ है, पेड़ के अंदर कहीं खोक बनी हुई है, कहीं पानी या इकट्ठा हो सकता है उसके अंदर, या कहीं बाहर कोई टूटा हुआ जूता, टायर, फटा हुआ टायर, कुछ भी, इवन घर के अंदर अगर आप देखें, घर के अंदर कहीं मनी प्लांट आपने लगा रखा है जहां आपकी पानी, आप जिसमें पानी आप इकट्ठा करते हैं। और एक और बड़ी कॉमन चीज है जहां पर मच्छर पैदा होते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आजकल आपके फ्रिज जो आते हैं, फ्रिज के पीछे की जो ट्रे होती है जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज जिसे आप बोलते हैं, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, पीछे उसके कंप्रेसर के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक बड़ा ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर है मच्छर पैदा होने के लिए। जो हमें बोलते हैं ना कि जो आपके घर के कूलर है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, आप यदि फ्रिज के पीछे की ट्रे को निकाल के बाहर देखें, उसके अंदर देखेंगे तो आपको उसमें मच्छर के लार्वा नजर आ सकते हैं।
1: अच्छा, तो उसकी ये भी सफाई करना,
0: तो उसकी रेगुलर सफाई, हफ्ते में रेगुलरली उसकी भी सफाई करें तो सारा पानी उसमें हटाते रहें, उसमें ये चीज बहुत जरूरी, ध्यान रखिए।
1: जी, बहुत जी, काम की बात है। डॉक्टर साहब, हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो,
2: सबको पहले मेरा नमस्कार आपको।
1: जी नमस्कार आपको।
2: मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार
1: जी।
2: और हमारा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि जो दिन वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है या रात वाला मच्छर काटने से डेंगू होता है?
1: जी
0: राजेश जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए राजेश जी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेंगू मॉस्किटो है इसकी खास चीज वो है जो दिन में ये मच्छर काटते हैं, तो डे बाइटर बोलते हैं। डे बाइटर इन द सेंस कि जिस वक्त ये दिन होता है, दिन के समय मच्छर काटता है, रात के समय आराम करता है। और इसीलिए अगर आप देखें, डेंगू वाला मच्छर या मलेरिया वाला मच्छर जो है, उन दोनों में कौन सा ज्यादा खतरनाक है, वो दिन का मच्छर खतरनाक है, डेंगू मच्छर ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि दिन में काटता है। दिन में आप जो है कभी मच्छरदानी लगा के बाहर नहीं घूमते हैं। दूसरा, बरसात या रेनी सीजन के दौरान में आपको ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आप पूरी बाजू के कपड़े पहनते नहीं, आप हाफ शर्ट या हाफ पैंट इस तरह के उसमें घूमते हैं, तो जितने भी आपके शरीर के एक्सपोज्ड पार्ट हैं तो वहां पर ये मच्छर आराम से काट दो। दूसरा, ये घर के अंदर अंधेरे में रहता है, ये तो कहीं भी आप अंधेरे में कोने में कहीं अगर बैठे होंगे तो वहां पर ये मच्छर काटता है। और दूसरा, एक और इस मच्छर की खासियत ये है कि जब आप दिन में मच्छर काटता है इसको, तो जो काटता है तो उसका थोड़ा पेनफुल होता है, इसका बाइट जो होता है, तो जैसे ही मच्छर काटेगा आप उसको उड़ा देंगे, तो इसका पेट एक बार के काटने से इसका पेट नहीं भरता है, एक बार के व्यक्ति का खून चूस के इसका पेट नहीं भरता। जैसे रात में अगर, जैसे जो रात के वाले के मच्छर होते हैं, वो किसी मच्छर, अब व्यक्ति सो रहा है, सोते समय मच्छर काट रहा है, काटने का तो पूरा एक तृप्त होकर वो अपना उसका हट जाता है मच्छर, रात वाला जो मच्छर होता है। मगर जो दिन वाला मच्छर होता है, कम से कम 15-20 लोगों को काटने के बाद में उसका पेट भरता है,
1: मतलब वो फैलाता जाता
0: तो
1: है,
0: तो वो इन्फेक्शन फैलाता है। इसलिए डेंगू का कभी भी आउटब्रेक होता है तो इसलिए वो काफी लार्ज स्केल पर होता है। इसलिए जो डे बाइटर मॉस्किटो, ये डेंगू मॉस्किटो, इसलिए थोड़ा ज्यादा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खतरनाक मानते हैं हम लोग।
1: जी, और आपने बताया कि ये बहुत तेजी से फैलता है, अगर
0: इसीलिए
1: आउटब्रेक की तरह होता है, इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है,
0: इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी जरूरी है कि दिन के टाइम में अपने शरीर को पूरा ढक के रखें, ढक के इन द सेंस की पूरी बाजू के कपड़े पहने, और हो सके तो रिपेलेंट क्रीम वगैरह, जो भी क्रीम वगैरह होती है जैसे मच्छर वाली क्रीम होती है, वो लगाएं। यदि बच्चे अगर दिन में सोते हैं तो उसको दिन में भी मॉस्किटो नेट के अंदर, मच्छरदानी में बच्चों को सुलाएं, ये बहुत जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कुछ तो बता

0: आया कि ये सुबह काटता है, दिन में काटता है, इसको कुछ पहचान भी सकते हैं क्या देख के?
1: हाँ, ये बहुत जरूरी। इसको डेंगी मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। एक चीज खास ये है कि एक तो ये जो तीन मच्छर, अगर आप देखें, डेंगी का मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो, मलेरिया का मच्छर होता है एनोफिलीज मॉस्किटो, और जो दूसरा एक तीसरा मच्छर जो हिंदुस्तान में काफी पाया जाता है वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये तीनों मॉस्किटो को पहचानने का बड़ा आसान वो है कि जो डेंगी वाला मच्छर होता है, दिन वाला मच्छर होता है, तो थोड़ा डार्क कलर का होता है, दूसरा इसके पैरों पे स्ट्राइप्स होते हैं, व्हाइट सफेद और सफेद और काले रंग की धारियां होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो ही बोलते हैं। तो इसलिए एक तो दिन के समय आप उसको दिखेगा नहीं क्योंकि काला होता है, अंधेरे में वैसे भी नहीं दिखेगा। यदि आप उसको मारेंगे तो मार के, यदि आप उसको ध्यान से अगर आप उसको देखें तो इसके पैरों पे इसके सफेद और काले रंग की धारियां सी होती
0: धारियां
1: हैं,
0: होंगी
1: इसलिए
0: क्या?
1: इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि डे बाइटर मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो ही बोलते हैं।
0: जी जी
1: ये आराम से पहचाना जा सकता है। जी
0: एक और श्रोता है
1: जी
0: ऑनलाइन पर। हेलो
2: जी नमस्कार।
0: जी, नमस्ते।
2: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
0: जी राजा जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: जी, किसी को डेंगू जब हो जाता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो डेंगू होने के बाद खास करके हमको किन बातों का ये ध्यान रखना है कि ज्यादा जो है ये बीमारी आगे ना बढ़ने पाए और कंट्रोल में रहे, ये जानना चाहते हैं। जी
1: राजा जी नमस्कार। एक तो एक चीज ये
2: नमस्कार।
1: तो मुझे मालूम पड़ गया कि शालिनी जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि का मुझे, क्योंकि मैं भी रेगुलरली ये प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और उसमें मुझे मालूम पड़ता है शालिनी जी वाकई काफी प्रसिद्ध हैं, लोगों में इनका काफी पहुंच है।
0: थैंक यू
1: और दूसरा
0: सर।
1: आपने एक प्रश्न पूछा कि ये जो डेंगू के बारे में यदि हो जाए तो उसे कैसे, इसको क्या करें। तो पहले तो मैं इस बारे में राजा जी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि डेंगू के लक्षण क्या है, थोड़ा ये जरूरी जानना जरूरी है। मेरे ख्याल से अधिकतर लोग जानते होंगे डेंगू के लक्षण क्या है, कि एक तो बहुत तेज बुखार आएगा और साथ में सर के आगे वाले हिस्से में काफी दर्द होगा, और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज जो डेंगू के फीवर में खास होता है कि जब आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, आंखों को घुमाने पे आपको आंखों के पीछे दर्द महसूस होगा, इसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। ये बड़ा पिक्यूलियर चीज होती है डेंगू वाले उसमें फीवर में। तो ये जब कभी, और स्पेशली जब आंख वगैरह घुमाएंगे तो उसमें आपको दर्द का एहसास थोड़ा ज्यादा होगा, ये बड़ी कॉमन और पिक्यूलर फीचर है। और साथ साथ में इसके पूरे शरीर में, मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत दर्द होगा, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं। और धीरे धीरे इसमें फिर आपका स्वाद भी थोड़ा चला जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, ये सब चीजें इसकी काफी चीज होती हैं। धीरे धीरे इसमें जब, यदि यूजुअली ये 5-7 दिन तक ये अवस्था रहती है, यदि ये फीवर अगर आप इसको किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं और फीवर इसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं तो उसके बाद में यदि सही हो जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि फिर लगातार उल्टी आना, उल्टी के साथ में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है खून में, खून के साथ मुंह से खून की उल्टी भी आ सकती है, मुंह से या नाक से भी खून आ सकता है, जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, वहां से भी खून आ सकता है। शरीर के ऊपर थोड़ा रैशेज आ जाते हैं एक स्टेज के बाद में, शरीर पे जैसे खसरे के जैसे रैशेज होते हैं, उस तरह के रैशेज शरीर के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा आ सकते हैं, और बड़ी बेचैनी रहती है, और जब वो स्टेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो लक्षण के शरीर में कहीं ना कहीं हेमरेज हो रहा है। तो उसको पहली स्टेज होती है डेंगू फीवर की, दूसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर की, DHF बोलते हैं इसे हम। और यदि वो स्टेज अगर जो अगर उस समय अगर पेशेंट को अगर थोड़ा सावधानी ना बरते तो वही धीरे धीरे वो शॉक वाली स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें कि शरीर में से शॉक के सारे फीचर्स होते हैं, आपकी पल्स काफी कम हो जाती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ड्राई मुंह, आपका मुंह सूख जाता है, और ये सब चीजें लक्षण पे होते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम उसे हम बोलते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो अपने आप को ध्यान रखें, कब आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है ये बहुत जरूरी है, कि ये थोड़ा जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए।
0: जी, ये हमें आपने काफी विस्तार से डॉक्टर साहब लक्षण बताए, लेकिन कुछ लक्षण इसमें मैं जब सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे लक्षण चिकनगुनिया में भी होते हैं, जो आंखों में दर्द होना और हड्डी या पसलियों में दर्द होना, तो मच्छरों से फैलने वाली और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया, तो
1: नहीं,
0: इनके बारे
1: अच्छा, ये
0: में थोड़ा
1: आपने
0: सा बताइए।
1: शालिनी जी आपने अच्छी चीज बताई कि जो यही जो लक्षण होते हैं ये उसमें भी होते हैं चिकनगुनिया, मगर चिकनगुनिया बस एक चीज है, चिकनगुनिया हड्डी और जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि मतलब मरीज मरीज को उसमें उठा भी नहीं जाता है। तो वो जो बिल्कुल हड्डी जैसे तोड़ना, जैसे बोलते हैं हड्डी तोड़, वाकई में हड्डी तोड़ टाइप की जो स्टेज आ जाती है वो चिकनगुनिया में काफी कॉमन होती है।
0: मलेरिया में
1: मलेरिया मलेरिया अच्छा आपने बोला, दूसरा प्रश्न था आपका कि ये मच्छरों से पैदा होने वाली और
0: कौन कौन सी
1: बीमारी, तो एक तो डेंगी, डेंगी वाला मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो, उससे आपकी इम्यून तो दो बीमारी हो गई आपकी,
0: डेंगू
1: हो गया और चिकनगुनिया हो गया, दो चीज होंगी। अब बाकी जो मलेरिया वगैरह है वो आपका एनाफिलीज से मॉस्किटो से मलेरिया

0: मलेरिया भी होता है, फिर कुछ वेस्ट नाइल फीवर, कई सारी और बीमारियां जो दूसरे हमारे यहाँ पर होती है, फाइलेरिया है, ये सब चीजें, ये बीमारी भी होती है मच्छरों से पैदा होने
1: जी
0: वाली।
1: जी
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। चाणक्य चौक गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं कि डेंगू बुखार तेजी से चढ़ता है फिर उतरता है, और ये सिलसिला कितने दिनों तक रहता है प्लीज बताएं। डेंगू कितने प्रकार का होता है? क्या हम डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं? ये सही रहेगा कि नहीं प्लीज बताएं।
0: शालिनी जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें कुछ प्रश्न का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। डेंगी कितने प्रकार का होता है? अगर शुरुआती स्टेज में उसको बोलते हैं डेंगी फीवर, जिसको हम बोलते हैं साधारण जो वायरल फीवर की तरह से, जिसमें पूरे शरीर में पूरा फीवर होना, बुखार होना, हड्डियों में दर्द, जी मिचलाना और पूरे जोड़ों में दर्द, ये डेंगी फीवर। और यदि वो डेंगी फीवर का थोड़ा और अग्रणी रूप हो जाए तो डेंगी हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि काफी कुछ चकत्ते शरीर में पड़ जाना और धीरे धीरे, और फिर उसका भी शॉक सिंड्रोम, वो थर्ड स्टेज होती है, वो मैंने आपको पिछले समय बता दिया। फिर आपने बोला कि जो क्या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ले सकते हैं कि नहीं।
1: जी
0: देखिए, सबसे पहली चीज है कि कभी भी यदि आपको लग रहा है वायरल फीवर है, आपको लग रहा है कि डेंगू फीवर हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा कुछ एक चीजें आवश्यक हैं कि कभी, क्योंकि बुखार काफी तेज होता है, तो बुखार को कम करने के लिए अपनी कोल्ड स्पॉन्जिंग से बोलते हैं कि अपने माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखना, ये शरीर को थोड़ा ठंडे पानी की पट्टियां रखना, ये सब चीजें जरूरी हैं। और यदि बुखार हो रहा है तो दिन में पैरासिटामोल, सिर्फ जो बुखार उतारने के लिए आप ले सकते हैं, दिन में तीन चार गोलियां ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई भी, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि उसमें, मतलब उद्देश्य ये है कि बुखार ज्यादा आपके 2 दिन 3 दिन से ज्यादा ना रहे, तो सिर्फ पैरासिटामोल गोली आप ले सकते हैं, प्लस पानी लगातार लेते रहें, खाना कम ना करें, ये चीजें, वरना तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मगर यदि आपको लग रहा है कि आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, प्लस आपके शरीर में कहीं चकत्ते पड़ने शुरू हो गए हैं, या आपको खून की उल्टी या लगातार कुछ उल्टी आ रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मितली बहुत ज्यादा, नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, सीने में कहीं आपको लग रहा है थोड़ा जकड़न टाइप की महसूस हो रहा है, मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं, तो तब आपको डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी चाहिए। और तब यूजुअली, अच्छा इसमें एक और चीज है कि डेंगू फीवर में जब फीवर नॉर्मल आ जाता है तो उसके बाद में सेकेंड पीक शुरू होता है फीवर का, वो थोड़ा एक थोड़ा डेंजर सिग्नल होता है, क्योंकि वो जो सेकेंड पीक जो शुरू हुआ उसमें कई दफे डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम वाले फीचर शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए डेंगू फीवर कम होने के बाद भी कुछ दिन थोड़ा सावधानी बरतें, ये थोड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि अगर 3-4 दिन फीवर का, अगर फीवर रुक गया और अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यदि फिर दोबारा से यदि टेम्परेचर बढ़ता है, या आपको धड़कनें तेज होने लगती हैं, या आपको मुंह सूख रहा है, कहीं वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, या कहीं मुंह से कहीं खून आने लगे, या मसूड़ों में से कहीं खून आने लगे, नाक में से कहीं खून आने लगे, तो ये थोड़ा लक्षण है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए।
1: जी, और डॉक्टर साहब ऐसे भी सुना है कि इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता
0: देखिए
1: है।
0: आजकल वैसे जनता बहुत जागरूक हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें यह कि जरा सा उनको लगता है कि उनको डाउट है तो खुद ही अपने आप जाके लैब में टेस्ट करा लेते हैं। प्लेटलेट काउंट उनका पहली चीज होती है, प्लेटलेट काउंट देखना, उनको लगता है कि अरे यूजुअली 1 लाख से ऊपर यदि प्लेटलेट है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1 लाख से 4-4.5 लाख तक प्लेटलेट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल है वो, ठीक है। मगर 1 लाख से अगर नीचे होना शुरू होता है तो उन लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मगर इसमें भी है कि यदि आपके प्लेटलेट अगर काउंट कम हो रहे हैं, 20,000 या उससे नीचे भी जा रहे हैं, तो डॉक्टर सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर अगर चाहेंगे तो उसमें यदि अगर शरीर में कहीं खून की कमी हो रही है या प्लेटलेट और भी कम हो रहे हैं, तो डॉक्टरी सलाह पर, डॉक्टर अपने आप उसको देख के, फिर मरीज को देख के डॉक्टर अपने आप इलाज करेंगे अस्पताल के अंदर, अपने आप से कोई इलाज ना करें उसके लिए, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है।
1: तो मुझे जहां तक समझ में आई डॉक्टर साहब आपकी बात कि बुखार को कम करने के लिए आप दवाई लेते रहें, पर जरा सा भी आपको
0: जरा
1: लगता है
0: भी,
1: कि 4-5 दिन से ऊपर हो गया है तो डॉक्टर के पास
0: तो डॉक्टर डॉक्टर
1: जरूर
0: डॉक्टर पास जरूर
1: जाएं। जी, हमारे पास ये एक प्रश्न आया है, नाम नहीं लिखा है उन्होंने अपने श्रोता ने, लेकिन लिखा है कि किस एज ग्रुप में डेंगू ज्यादा होता है, ऐसा कोई एज ग्रुप होता है क्या डॉक्टर साहब?
0: सभी इस एज ग्रुप में ये होता है, कोई उसमें सभी एज ग्रुप पर दोनों में, मर्द और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है डेंगू, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। मगर हाँ बच्चों में थोड़ा सा ये इसका थोड़ा विकरालता थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सीवियरिटी इसकी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे थोड़ा घर के अंदर ज्यादा रहेंगे तो उसमें ज्यादा उनको होता है, तो उसमें थोड़ा उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है उनके अंदर थोड़ा। जी
1: हमारे श्रोता है विशाल मल्होत्रा सिरसा हरियाणा से, इन्होंने लिखा है कि घर के अंदर

0: मच्छर को मारने के लिए अगर हम स्प्रे यूज करते हैं तो ये उपयुक्त होगा?
1: देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें मगर एक चीज कहना चाहूंगा, आप यदि घर के अंदर जो भी स्प्रे करेंगे तो वो एडल्ट मॉस्किटो जो वयस्क मच्छर है उसको खत्म करेगा, मगर रोग की जड़ जो है आप उससे देखें कि मच्छर कहाँ पैदा हो रहे हैं। जब तक आप उस रोग की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आज तो एडल्ट मॉस्किटो मार दिया स्प्रे करके, मगर कल को जहां मच्छर पैदा हो रहा है, जिस जगह पैदा हो रहा है, अगर आपने वो सोर्स खत्म नहीं किया, वो फिर दोबारा मच्छर वहां पैदा होकर आएगा। तो आप घर और घर के आसपास जरा देखें कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, आप उस सोर्स को खत्म करें। इसको हम बोलते हैं सोर्स रिडक्शन, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आप रोग की जड़ों को खत्म करो ना, कि कहां मच्छर पैदा हो रहे हैं वो देखो, वो जगह पहले आप देखो कहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं,
0: जी,
1: उस जगह को खत्म करो।
0: नेहा लिख रही है मुंबई से, डॉक्टर साहब कि डेंगू पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ डेंगू पेशेंट्स?
1: सब
0: थोड़ा
1: कुछ
0: तो आपने बताया था पानी का
1: देखिए,
0: इनटेक और
1: देखो एक चीज खासतौर से ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी बुखार ज्यादा हो, कभी ये जरूरी नहीं कि इसी डेंगू फीवर में, कभी भी यदि फीवर ज्यादा होता है तो शरीर में पानी की कमी होती है, क्योंकि जब फीवर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा एक मुख्य उद्देश्य होगा कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की प्रचुर मात्रा अपने शरीर में बनाए रखें। तो पहली चीज तो यह है कि नियमित रूप से पानी और या तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, प्लस जो हृष्टपुष्ट बनाने वाली चीजें हैं, जैसे जो घर की चीजें हैं, जैसे मेरे हमें याद है हमारे जो बचपन में डॉक्टर थे तो फैमिली डॉक्टर थे, कुछ भी चीज हो बोलते खिचड़ी दलिया खिचड़ी दूध चाय ये जरूर लेने, मतलब उनका कहना ये था कि कुछ ना कुछ खाते रहो मगर भूखे मत रहो। और खाने के लिए भी जरूरी नहीं कि आप बाजार की चीजें, घर की बनी हुई जो बिल्कुल सेहतमंद चीजें हैं वो सब लेते रहें। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कभी खाना कम नहीं करना है और पीने के लिए तरल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें लगातार। जी
0: जी दिल्ली से परिधि लिख रही हैं कि क्या डेंगू होने की वजह से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं? क्या ऐसा होता है कि एक बार डेंगू हो गया या बिगड़ गया उसका रूप तो वो ता जिंदगी उससे कुछ होता रहे नुकसान?
1: परिधि जी देखिए, वैसे तो अभी वो विकराल रूप जो होता है, वो जो इस तरह का विकराल रूप जो होता है डेंगू का, वो थोड़ा देखने का इतना वो नहीं मिलता देखने का वो, क्योंकि यदि आप उसको समय पर डेंगू को कंट्रोल कर लें, क्योंकि कई दफे क्या होता है जो डेंगू के जो अगर एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उसमें शरीर में कहीं ना कहीं किसी अंग के अंदर कई दफे गैंग्रीन या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, कोई या कोई शरीर का कोई अंग थोड़ा वैसा हो सकता है, मगर वो एक स्टेज अगर आप सही तरह से अगर डेंगू के मरीज का इलाज हो रहा है तो उसमें वो सब चीजें नहीं होती हैं। मगर वैसे रूटीन में कोई ऐसा उसका ये नहीं कि आफ्टर लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं होते हैं।
0: जी,
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न
1: जी
0: करने के लिए, उम्मीद है आपको प्रश्न के जवाब मिल गए। और हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर, हेलो,
2: हेलो, शालिनी मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: हाँ जी, एस चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: प्रश्न करें सर।
2: डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी तो क्या डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरा, डेंगू का वो खत्म करने के लिए लोकल अथॉरिटी स्प्रे करती है तो वो उसका जो स्प्रे का जो धुआं होता है वो आम आदमी के लिए कितना हार्मफुल होता है?
1: बहुत अच्छा जी जी, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, दोनों प्रश्न आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा कि जैसे कोविड के लिए वैक्सीन है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है कि नहीं है। देखिए तीन देश हैं जहां पर कोविड की वैक्सीन ऑलरेडी लग रही है, मगर वो हमारा देश इसमें शामिल नहीं, मगर वहां पर वो अभी ट्रायल बेसिस पे, हमारे देश में वैक्सीन में हम उम्मीद करते हैं कि 2026-27 तक शायद हम वैक्सीन
0: मतलब
1: उसको,
0: कुछ देशों में
1: हाँ
0: डेंगू की
1: कुछ देशों
0: वैक्सीन आ
1: में
0: गई है।
1: वैक्सीन
0: जी
1: वो
0: जी
1: अभी मगर लग रही है, मगर वो काफी समय से उनके, मगर वो अभी इंडिया हिंदुस्तान
0: इंडियन
1: में अभी अभी वो नहीं आई है।
0: जी
1: हमारे यहाँ कुछ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल स्टेज में है और उम्मीद है कि 2026-27 तक ये वैक्सीन शायद हमारे को उपलब्ध होगी।
0: जी
1: दूसरी चीज आपने बोली स्प्रे के बारे में,
0: जी
1: देखिए जो स्प्रे है जो हम जिसको फॉगिंग बोलते हैं, फॉगिंग जो असर करता है एडल्ट मॉस्किटो के ऊपर, जो वयस्क मच्छर होता है जो उड़ता है मच्छर उसके ऊपर असर करता है, उसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि वो जो एडल्ट मॉस्किटो है उसको खत्म कर देता है, और एडल्ट मॉस्किटो खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट तो रहता है, मगर उसका एक नुकसान ये भी है कि उसमें फॉगिंग में डीजल या केरोसिन का इस्तेमाल होता है, तो कुछ ना कुछ जो सांस के मरीज होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा नुकसान कर सकता है वो। दूसरा एक और चीज है कि उसमें फॉगिंग में कई सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय कहीं हवा तेज ना चल रही हो, दूसरा लोग अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि वो फॉग जो है या धुआं जो निकालते हैं वो घर के अंदर तक प्रवेश कर सके,

0: लोग वहां क्या करते हैं कि जब फॉगिंग होती है तो उस समय बल्कि और घर के अपने दरवाजे बंद कर देते हैं कि बाहर के मच्छर कहीं अंदर ना जाए, जबकि फॉगिंग में तो उद्देश्य होता है कि जितने मच्छर हैं सब पे उसका असर हो। तो ये थोड़ा जानकारी इसके लिए जरूरी है लोगों को, मगर फिर भी मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, सोर्स रिडक्शन, कि जहां ये मच्छर पैदा हो रहे हैं हमारा उद्देश्य उस तरफ होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक हमें प्रश्न आया है कि क्या ट्यूबलाइट, जैसे आपने कहा दिन में काटता है ये मच्छर, तो क्या ट्यूबलाइट की रोशनी डेंगू के मच्छर को काटने के लिए लाइट का काम करती है क्या? ये माना जाएगा कि लाइट है?
0: मैं इस बारे में अपने अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने मेडिकल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, तो उनको कई बार उनको जानकारी देने के लिए कि उनके घर में कौन से मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो वो जरा इकट्ठा करके लाओ, तो उनको मैं ये थोड़ा बताता था कैसे मच्छर इकट्ठा करने हैं। तो उनको बोलता था पूरे कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके एक मॉस्किटो मैट जलाओ, उसका धुआं करो और एक लाइट खुली छोड़ दो, तो सारे सारे मच्छर उस धुएं की तरफ आकर्षित होंगे, उस लाइट की तरफ आकर्षित होंगे, धीरे धीरे बेहोशों के नीचे गिर जाएंगे। अब वो उसमें इकट्ठे करके लो, अगले दिन उनको हैंड लेंस से आप आइडेंटिफाई करो। हम वो उनको सिखाते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉस्किटो है। तो ये जो प्रश्न है कि क्या वो ट्यूबलाइट की रोशनी वो मच्छरों को रोकने के लिए सही है कि नहीं है, देखिए जो भी कहीं भी कोई डार्क जगह होगी वो मच्छर वहां पर आराम करता है। रात के समय तो वो वैसे ही आराम करता है, दिन के समय वो काटता है, और दिन में भी जो अर्ली मॉर्निंग है सुबह का समय या शाम का समय, शाम से थोड़ा पहले या दिन में कभी भी वो काटेगा। तो कहीं रोशनी अगर थोड़ा अंधकार होगा तो वहां पर वो, जहां अगर आपका शरीर कहीं खुला होगा एक्सपोज पार्ट होगा उसमें वो काटेगा। ट्यूबलाइट की रोशनी हो या बल्ब की रोशनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंधेरा कहीं भी है तो वो वहां पर रहेगा और काट जाएगा।
1: जी अच्छा, एक डॉक्टर साहब ये हमारे एक पास प्रश्न आया है, रंजन लाल जी लिख रहे हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, और उन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली के पास में एक फार्म हाउस में रहता हूँ, बारिश में बहुत बढ़ जाते हैं मच्छर यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो आपने बताया है लेकिन कुछ शॉर्ट में बताना चाहें तो समय बहुत कम है, तो हम
0: देखिए रंजन लाल जी ये मैं शुरू से इस बात को बता रहा हूँ कि मच्छर जो है बरसात और बरसात के मौसम बाद का मौसम, ये दोनों मौसम ऐसे हैं जिसमें क्योंकि टेम्परेचर उनको अच्छा खासा मिलेगा, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी मिलेगी, उसमें तो पैदा हो गई होगा। तो मच्छर जहां बरसात, ये तो मच्छर ही मौसम बरसात का ही प्राणी है, बरसात या बरसात के बाद का प्राणी है, तो इसलिए तो जहां बरसात हो गई तो आप फार्म हाउस आप बता रहे, फार्म हाउस में आप रहते हैं तो फार्म हाउस में तो आसपास कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है फिर तो ये होगा।
1: तो बहुत सफाई रखनी है आपको, और बारिश आने से पहले ही आप पूरा ऐसा इंतजाम कर लें कि बारिश का पानी जमा ना हो कहीं पे। डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे थे तो हम आपने अपने बात में भी कहा कि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है इस मिशन में कि हम डेंगू मुक्त हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? हमारे बहुत सारे श्रोता आज सुन रहे हैं, आपसे प्रश्न भी कर रहे हैं, क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्या भागीदारी की उम्मीद करते हैं आप?
0: देखिए एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हर चीज के लिए, हम किसी भी चीज के लिए सरकार की तरफ निगाह मारते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, मगर कहीं ना कहीं किसी भी समस्या के निपटान के लिए, खासतौर से इस तरह की बीमारी जो होती है उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता का सहयोग आइडेंटिफाई करने में कि क्या समस्या है, क्या उसके कारण है और उसमें वो क्या सहयोग दे सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब भी कभी बरसात के टाइम में उसके बाद में खुद जो सिविक एजेंसीज हैं एमसीडी एनडीएमसी ये सब ऑलरेडी कहीं भी आपके घर के आसपास कहीं कूलर में या कहीं मच्छर पैदा होते हैं तो आपके आसपास आ जाते हैं, आपको चालान काटना शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक लीगल ऑप्शन बचता है अगर किसी घर में अगर मच्छर पैदा होते हैं तो। मगर ये मौका आना ही क्यों चाहिए, ऐसा हो ही क्योंकि कोई चालान काटे आके आपके घर पर, हम क्यों नहीं स्वयं ही जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरा एक और चीज है इसमें, मैं बहुत समय पहले कहीं एक बाहर गया था इस डेंगू के सिलसिले में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छा प्रयोग देखा, उन्होंने स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को, इवन दिल्ली में भी ये किया गया था प्रयोग, बच्चों को डेंगू कार्ड उनको दे दिया गया, कार्ड दे दिया गया उनको, अपने घर के आसपास के 50 घर जाके वो चेक करेंगे कहाँ कहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, और जिस किसी के घर में मच्छर है तो वो जानकारी अस्पताल देंगे उनको, अध्यापकों को आके देंगे, फिर वहां पे वो जो सिविक एजेंसी है वहां आके एंटी मॉस्किटो मेजर्स करती थी। तो इस तरह से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करना या गृहिणी को इस काम में शामिल करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महिला समिति बना के लोगों के घरों में जा जाकर देखें कहां मच्छर पैदा हो रहे हैं, कहां कौन कौन से ब्रीडिंग साइट्स हैं जहां मच्छर पैदा हो रहे हैं, ये सभी का सहयोग इसमें जरूरी है। लोगों को जानकारी, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वो उनका क्या कर्तव्य है, वो कैसे इस

0: समस्या को खत्म, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है कि यदि एक बार आउटब्रेक हुआ, कभी भी ये एपिडेमिक फॉर्म में कभी हुआ, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल या प्राकृतिक तरीका ही है जबकि ये खत्म हो सकती है। यानी कि बरसात या जैसे मई या जून के जून जुलाई में शुरू होती है ये बीमारी, और अगर आउटब्रेक यदि हुआ तो फिर ये नवंबर दिसंबर तक पीक होता है, फिर दिसंबर के बाद जब मौसम बदलता है तभी अपने आप ही खत्म होती है। तो ये एक बार यदि आउटब्रेक हुआ तो ये अपने आप ही कंट्रोल होता है, उसमें फिर ज्यादा कंट्रोल करने के फिर स्कोप ज्यादा रहता नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए कि ये आउटब्रेक हुई ना, कभी भी डेंगू फैले ना, ये सभी का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आपने बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब बोली कि सभी का सहयोग जरूरी है। हम अगर डेंगू मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे सारे श्रोताओं का और जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं उन तक भी ये मैसेज आप पहुंचा सकते हैं कि इस तरह की बात आपने सुनी है आकाशवाणी पर रेडियो डॉक्टर पर, और ये बहुत जरूरी है। इस वादे के साथ कि हम कर फिर होंगे आपके साथ, धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एस के रसानिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली को, कि आप स्टूडियो में आए, आपने इतने सारे प्रश्नों का डॉक्टर साहब जवाब दिया हमारे श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर, और इसी तरह से जुड़ते रहिए, स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, और अब खबरें नशर होंगी।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी मौजूदगी में इजाफा करें। तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी की है। नई दिल्ली ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बरका न्यूक्लियाई मरकज पर हुए हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जेनेवा में 79वीं आलमी सेहत असेंबली में सेहत देखभाल के मुस्तकबिल पर आलमी मुजाकरे में शिरकत करेंगे। और टेनिस में आलमी नंबर एक यैनिक सिनर ने फाइनल मैच में नॉर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त देते हुए इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी मौजूदगी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तरा और पायदारी की मुश्तरक अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो स्वीडन के दो रोजा दौरे पर कल गोटेनबर्ग पहुंचे हैं। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलार स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें यह एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली ताउन और उनकी दूरअंदेश क्यादत को तस्दीम करते हुए दिया गया। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वजीर आजम मोदी का 31वां बैन अवी एजाज है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दो तरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने से इत्तफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, एसएमईज, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे ताउन के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरक एक्शन प्लान इख्तियार करना है ताकि दो तरफा इकतसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने साल 2000

2027 में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी समिट मुनक्द करने का अज़्म किया है। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक वसत दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की जानिब से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर स्वीडन का शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तहत एक मुश्तरक अज़्म का इआदा है। वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इकतसादी असलाहत के जरिए मुल्क में आई यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामानिगानों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब मोदी किंग हेराल्ड 5 और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गेर स्टोर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीकी सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में उस वक्त एक बार फिर इजाफा हो गया है जब ईरान की जानिब से मुजाकिरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी। मगरबी एशिया में महीनों से जारी बेचैनी के दौरान ईरान के यूरेनियम ज़खीरे, पाबंदियों में नरमी और जंग में हुए नुकसान की भरपाई जैसे मामलों पर मुजाकिरात तातुल का शिकार हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो समझौते को मुमकिन बनाने के लिए तेज़ी से काम करे क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के बरका न्यूक्लियाई मराकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहदा अरब अमारात के अल दफरा के बरका न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया जिसे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। अबूजाबी हुकाम ने तस्दीक की है कि कोई जख्मी नहीं है और ताबकारी अखराज नहीं हुआ है। अक्वाम मुत्तहदा की न्यूक्लियाई निगरानी के इदारे बैनुल अक्वामी न्यूक्लियाई तवानाई एजेंसी IAEA ने कहा है कि वाकये के बाद प्लांट के 4 रिएक्टरों में से एक मामूली तौर पर स्विच होकर इमरजेंसी डीजल पावर पर चला गया। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीराला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में तकरीब में आज ओहदे और राजदारी का हलफ दिला रहे हैं। नामजद वजीराला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीराला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में हलफ ले रहे हैं। वजीराला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अराकीन पहली बार वजीर का अहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंचने लगे थे। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वजीराला सुबुगदोश वजीराला पिनरई विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये 6 रोज़ा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि ये असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मौजज़ अफराद और आलमी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहाँ मुस्तहकम, ज़्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तई मुश्तरक आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। टेनिस में आलमी नंबर 1 यैनिक सिन्नर ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। सिन्नर ने फाइनल मैच में नॉर्वे के

0: ज़बरदस्त वापसी की और शानदार बेसलाइन प्ले के साथ मैच में हावी रहे। सीजन के दौरान उन्हें पूरी तरह फिट रखने पर सिन्नर ने अपनी फिटनेस टीम का शुक्रिया अदा किया। वहीं रूड ने मैच के बाद सिन्नर की तारीफ की और कहा कि इस साल सिन्नर की कारकर्दगी गैर मामूली रही और उन्हें देखना बायस से तहरीक रहा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी मौजूदगी में इजाफा करें। तेहरान की जानिब से मुजाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी की है। नई दिल्ली ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बरका न्यूक्लियाई मरकज पर हुए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वीं आलमी सेहत असेंबली में सेहत देखभाल के मुस्तकबिल पर आलमी मुजाकरे में शिरकत करेंगे। और टेनिस में आलमी नंबर एक यानिक सिन्नर ने फाइनल मैच में नॉर्वे के कैस्पर रूट को शिकस्त देते हुए इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी दो गाने पर मबनी प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम की पहली पेशकश आक्रमण फिल्म है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। पहले सुनिए प्रोग्राम तारीख साज, मौजू है वैशाली। तहरीर SM जैनुल हक की है, रावी हैं SM नोमान।
1: वैशाली तारीख की किताबों में कैद एक ऐसा सुनहरा सफा कि जिसे जब भी खोला गया याद माजी का एक ताबिंदा सूरज बाहर निकल आया। वैशाली की तारीख ये भी कहती नजर आती है कि वक्त का बदलता मिजाज किसी भी चमकती शय को तारीखियों की एक न खत्म होने वाली सुरंग में धकेल देता है। वैशाली बिहार में वाकई एक तारीखी शहर है और गंडक नदी के किनारे वाकई है। इस शहर का नाम राजा विशाल के नाम पर रखा गया था, जिसकी बहादुरी का जिक्र रामायण में भी मिलता है। जदीद तारीख ये कहती है कि इस शहर को 12 अक्टूबर 1972 मुजफ्फरपुर जिले से अलग करके नया जिलाई इलाका बनाया गया, मगर इसकी कदीम तारीख के औराक पलटे जाते हैं तो ये खित्ता अपनी सियासी, मजहबी, सकाफती और तहजीबी विरासत की अनमोल मिसाल पेश करता नजर आता है। ये भगवान महावीर की जाय पैदाइश है तो भगवान बुद्ध का मैदान अमल, ये मौर्य और चंद्रगुप्त खानदान का वर्षा है तो अजीम अशोक की पसंद भी, यही इस साहित्य की अजीम किरदार अम्रपाली की ससुराल भी है। तारीख हमें यह भी बताती है कि ईसा कबल इस शहर की तामीर जिस तरह की गई, उस मिसाल के सामने आज की तामीरात भी जेर निगुं हो जाएं। वैशाली लिच्छवी खानदान के साये में रहा और आहिस्ता आहिस्ता तारीख दर तारीख तौसी पाते हुए और नज़रअंदाज किए जाते रहने के सबब आज खंडरात में तब्दील हो गया, जिसे असर नौ अजीम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। महात्मा बुद्ध के दौर में वैशाली मगध साम्राज्य के मध्य मुकाबिल तस्लीम किया जाता था। इस दौर के इंतहाई अहम तरीन मजाहिब बौद्ध और जैन के मुकद्दस मकामात होने की वजह से वहां आज भी गैर ममालिक के कई मनादिर मौजूद हैं। इसके अलावा ये हिंदुओं के लिए भी तकद्दस का मकाम रखता है। इसे सयाहों की पसंदीदा जगह के तौर पर भी जाना जाता है। सियासी सतह पर वैशाली किस कदर मजबूत और मुस्तकबिल भी था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया को जमहूरियत का सबक सिखाने वाली जगह वैशाली ही है। पूरी दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने वालों को समझना चाहिए कि इसकी शुरुआत लिच्छवी हुक्मरानों ने 6वीं सदी में ही कर दी थी। उस वक्त भी वहां के

0: राजा को अवाम मुंतखब करते थे। जाहिर है कि इस रिपब्लिक में जो भी राजा मुंतखब हुआ करता था वो अवाम का इस्तेहसाल तो नहीं करता होगा, बल्कि अवाम की तवक्कोआत को पूरा करने की कोशिश करता होगा। तारीख गवाह है कि कदीम वैशाली इंतहाई खुशहाल और पुरअमन और महफूज शहर था, जो एक दूसरे से कुछ फासले पर मौजूद तीन दीवारों से घिरा था, जिसकी वजह से दुश्मनों को वैशाली के अंदर दाखिल होने में पापड़ बेलने पड़ते थे। चीनी सयाह ह्योनसांग के मुताबिक पूरे शहर का दायरा 14 मील के करीब था। मौर्य और गुप्त खानदान के दौर में जब पाटलिपुत्र जदीद पटना राजधानी की शक्ल में फरोग पाया, तब वैशाली इस इलाके में होने वाली तिजारत और सनत का खास मरकज बन गया। भगवान बुद्ध ने वैशाली के नज़दीक कोल्हा में अपना आखिरी खिताब किया था। इसकी याद में सम्राट अशोक ने 3 ईस्वी क.म. अशोक स्तंभ की तामीर कराई थी। वही अशोक स्तंभ आज भी हिंदुस्तानी परचम के साथ खुली फजा में लहरा रहा है। वैशाली न सिर्फ मजहबी मकामात की वजह से मशहूर है, बल्कि फन, अदब और तहजीब का भी गहवारा है। वैशाली न सिर्फ मजाहिब की आमाजगाह रहा है, बल्कि सकाफत और साहित्य का भी मरकज रहा है। आचार्य चित्रसेन की लाफानी तख्लीक नगर वधु में वैशाली की तस्वीर कशी इस तरह की गई है कि जैसे उस वक्त के हिंदुस्तान में वैशाली जैसा मरकज कोई नहीं था। ये उस नगर वधु का किस्सा है जिसका असर लेकर अजातशत्रु ने जंग से तौबा की थी और इसके बाद अशोक जैसा अजीम सम्राट अमन की जस्तजू में बौद्ध मजहब का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। आज भी अम्रपाली जिंदा हकीकत की तरह वैशाली ही नहीं हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर किरदार में नजर आती है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज, मौजू था वैशाली। तहरीर SM ज़ैनुल हक की थी, रावी थे SM नोमान।

आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिल्म है दिल मांगे मोर, आवाज़ें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की।

0: इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए सुनिए प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: वैशाली तारीख की किताबों में कैद एक
2: सुर्खियों में
3: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने पर। भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग लगातार बेहतर हो रहा है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि नीदरलैंड्स में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन ने क्या कहा है।
5: मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इस यात्रा में जो इसका कंटेंट था और जो इसके जो आउटकम थे, अगर सबको देखें तो इतनी रिच कंटेंट और इतनी बढ़िया बातचीत जो यहाँ के नेताओं से हुई है, इतनी अच्छी बात मुझे लगता है कि बहुत ही समय में ऐसी कभी नहीं हुई होगी। इसको अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो जब यहाँ के किंग से और क्वीन से उनकी बात हुई, उनके प्रधानमंत्री जी के आदर में उन्होंने एक लंच भी आयोजित किया वहाँ पे बहुत ही विस्तार से और कई विषयों को टच करते हुए बात हुई। और यहाँ के जो किंग और क्वीन है उन्होंने लंच में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया ताकि उनसे विस्तार से हर विषय को, जिसमें कि कला भी है और संस्कृति है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी है, यहाँ के कुछ कंपनी के काफ़ी बड़े सीईओज को बुलाया गया था और पूरा का माहौल जो था वो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी इनफॉर्मल और ऐसा माहौल था जिसमें कि बहुत ही डिटेल में बात हो सकी उसमें। उसके बाद जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, उसके पहले दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए यहाँ पे। पहला तो ये हुआ कि जो चोला की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का रेस्टिट्यूशन, और इसके बारे में आपने सारी डिटेल देख ली होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक तरह समझिए कि दोनों देशों के बीच में एक तरह से सांस्कृतिक संबंधों को एक और मजबूत तरीके से ले जाने का एक आधार खुल गया है, क्योंकि बिना किसी कंडीशन के। और ये भी जानते हुए कि जो चोला की प्लेट्स हैं एक प्राइवेट कलेक्शन में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाइडन की है वहाँ पड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने एक कमीशन को रेफर किया और उसकी प्रोवेनेंस तय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे हमें भारत को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये इसके बाद में ASI और लाइब्रेरी उनके बीच में आगे जा करके और रिसर्च करने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, मेटा डेटा बदलने के लिए, इन सब के ऊपर में काम करने का एक बहुत मजबूत आधार बन गया है। दूसरी चीज हुई कि ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती हैं।

0: हमारे यहाँ जो ढेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा। और यही नहीं बल्कि जो सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे आने की। जो उनकी बातचीत यहाँ के प्रधानमंत्री से हुई उसमें भी कंटेंट बहुत ही रिच था और सारे संबंध के सारे आयामों पे, जिसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, डिफेंस है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हेल्थ है, हर विषय पर बात हुई। और साथ साथ विश्व में जो जो अभी आज की स्थिति है वहां भी बात हुई। और इसके बाद आपने जो हमारी वेबसाइट पर देखा है कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट निकली है सारे जो अग्रीमेंट्स कंक्लूड हुए हैं, और ये अग्रीमेंट्स आपको इनके जो रेंज है और इनकी जो डेप्थ है ये आपको एक आपको एहसास कराएगी कि जो वार्ता हुई और वार्ता की जो सफलता है वो कितनी गहरी है और कितनी व्यापक है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि इसके बाद जो एक प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर में एक रात्रि भोज किया था, उसमें भी बहुत ही सहज माहौल था जिसमें दोनों देश के नेताओं ने आपस में, उन्होंने जो कि उनकी पहली मुलाकात थी फॉर्मल तरीके से, काफी बढ़िया और क्लोज बात की, बहुत विषयों बात की। और यही नहीं इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री, दोनों और बाकी भी उच्च अधिकारी, उनको भी मौका मिला अपनी अपनी बात करने का। और मुझको ये लगता है कि इससे हम दोनों देशों का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश हुई है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको और कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही मजबूत हमारा एक आधार बन गया है। और कल एक हमारी प्रोग्राम का एक पार्ट और भी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, यहाँ आफ्सलाउ डाइक है जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो सीख है, इसके जो कुछ लेसन्स हैं, उस लेसन्स को हम लोग अपने यहाँ भारत में भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हम लोग लगा पाए। और जिसमें से एक है कल्पसार, इस पर भी एक लेटर ऑफ इंटेंट पर इसमें भी एक समझौता हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ही खुश हूं और मुझे लगता है कि ये एक ट्रूली माइलस्टोन विजिट रही है प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमारे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक टाइज स्टैब्लिश होने वाले हैं। धन्यवाद
1: अनिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को भारत यूरोप संबंधों और खासकर स्वीडन जैसे देशों के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, यूरोप हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है। सब डेमोक्रेसीज हैं, भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और सबसे बड़ा देश है आज की डेट में, बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उन लोगों का भी एक इंटरेस्ट है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कई तरह की ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोपियन देशों के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर हो रहा है। अब ये मिडिल ईस्ट का जो ईरान यूएस इसराइल का वॉर है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी तक पूरी तरह से पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था वो भी खत्म नहीं हुआ है, नई तरह के वायरस भी आने लगे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हों, टेररिज्म के हों, इनोवेशन के हों, रिसर्च और डेवलपमेंट के हों, उन सब में हमारा यूरोप के साथ में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस वर्ष, जैसा आपको पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इसी तरह से कुछ पांच देशों के साथ में यूरोपियन यूनियन के ही हैं, लेकिन उसमें अलग से भारत ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उन दोनों के अंतर्गत हमारे जो दिशाएं हैं एक दूसरे के साथ काम करने की और भी ज्यादा प्रगतिशील होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट इस वक्त हो रही है वो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए, स्वीडन और बल्कि चारों देश जो बाकी हैं, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो पांच देश हैं इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज के रूप से कहते हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा कर रहे हैं। आज वो स्वीडन पहुंचे हैं, नेदरलैंड्स में काफी अच्छी यात्रा रही वहां पर, जैसा कि आपने वहां के एम्बेसडर, जो हमारे एम्बेसडर हैं कुमार तोहिन, की बात से बताया, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है। देखिए, वहां करके एक बात कही कि WAH, जैसे वाटर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ और ग्रीन शिपिंग, ग्रीन कॉरिडोर, डिफेंस सिक्योरिटी में माइक्रोचिप्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स, और हमारे एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इस बार उन्होंने 11th सेंचुरी की जो चोला डायनेस्टी के टाइम की जो कॉपर प्लेट्स थी, इस पे काफी कुछ लिखा है, उनको उन्होंने वापस किया है, भारत को सौंप दिया। और एक

0: मैं एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए तैयार हुआ है, जिसके चलते और भी हमारे रिश्ते उनके साथ घनिष्ठ होंगे। अब स्वीडन एक ऐसा देश है जिससे मैं समझता हूँ 100 साल से ज्यादा पुरानी हमारी मित्रता है। 1922-23 में मैं समझता हूँ कि वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनी स्वीडिश मैच और ये सब भारत में आई थी, खासतौर से पुणे में एक जगह है जहां पर उनका पूरी सारी कंपनीज, चाहे वो अल्फा लवाल हो या स्वीडिश मैच हो, इन सब के ऑफिसेज और एस्टेब्लिशमेंट थे वहां पर। मुझे याद है जब मैं वहां स्वीडन में था तो एरिक्सन के जो सीईओ थे और एक वहां के ट्रेड मिनिस्टर थे लेफ पग्रोस्की, उन्होंने मुझसे कहा कि 95% जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर, 50 से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। छोटे से देश हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, R&D के मामले में और क्लाइमेट चेंज के मामले में हो, वाटर मैनेजमेंट के लिए हो, उन सब ने एक बहुत अग्रिम भूमिका निभाई है दुनिया में। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लोग इस बात पे करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा खुश देश माने जाते हैं दुनिया के अंदर, लीस्ट करप्शन माना जाता है वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, इतना बड़ा मार्केट, और वो लोग अब भारत की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे में इस बार जो है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट स्टार्ट हुई थी उसका ये तीसरा एडिशन होगा। पहली बार स्वीडन में हुई, दूसरी बार डेनमार्क में, और तीसरी बार जो है यहाँ हो रही है। लेकिन ये समिट जो है ऐसे वक्त में है जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी काफी है। तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर बड़ी डिस्कशन होगी, और खास तौर से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे नए आयाम को लेकर के, चाहे वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के रूप में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में हो, एजुकेशन में हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के बारे में हो, या और कुछ नए दिशाएं अगर दी जाएंगी इसको, तो मैं समझता हूँ रोड मैप जो है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का उसको और ऊपर ले जाया जाएगा।
1: जी, आपने लगभग सभी आयामों पर शुरुआती रोशनी तो डाली। अब कुछ क्षेत्रों पर हम बारीकी से बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलन स्टेनर ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में क्या कहा है।
2: नॉर्वे और भारत के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्वे में स्वागत है।
1: अनिल जी, जैसे आपने पहले उल्लेख किया था व्यापार समझौते की बात है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो FTA है, ये दोनों पक्षों के भविष्य के आर्थिक संबंधों को आकार देने में अब आगे और कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है?
0: देखिए, जैसा आपको मालूम है कि लगभग 18 सालों से हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था और मार्केट एक्सेस के कुछ बिंदुओं को लेकर के वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन चूंकि इस वर्ष में हुआ है तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा इस बारे में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक हमारा, अगर हम सबको एक साथ ट्रेड में रखें तो बायलैटरल तो है ही है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है ऑलमोस्ट। और टेक्नोलॉजी के रूप में भी हमारे जो भारतीय वहां पर काम करते हैं इतने सारे, और उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पर, तो अब यह कि सबको थोड़ा कहीं ना कहीं आजकल मार्केट चाहिए और मार्केट के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो ये उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और ये एग्रीमेंट में दोनों साइड्स को फायदा होगा लेकिन भारत की कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होगा जैसा पता लग रहा है। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट मोबिलिटी का चांसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं भारत से बहुत ज्यादा होते हैं, खाली गुड्स एंड का ही एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको हमें एक बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं कॉमन मार्केट, उसमें पूरी एक्सेस मिल जाएगी हमारी कंपनीज को। लेकिन ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि एक तरह से आपको एक एडवांटेज मिल गया है मार्केट एंट्री के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी भारतीय कंपनियों के लिए काफी अच्छा होगा। देखना पड़ेगा 1-2 साल में कितना लाभ इससे होता है और कितनी हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ी है, लेकिन जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, ये दुनिया की जो समस्याएं हैं उस सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ वो काफी आशाजनक है।
1: जी, और अंत में संक्षेप में जानना चाहेंगे कि रणनीतिक हितों की दृष्टि से क्या इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं?
0: देखिए, इसमें काफी सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, यूरोप के खास देश और नॉर्डिक कंट्रीज जिसके स्वीडन नॉर्वे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो लोग भी डिफेंस और सिक्योरिटी में, शिपिंग के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर्स के अंदर में, ग्रीन शिपिंग के अंदर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, फाइनेंस में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, रिन्यूएबल

0: के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें ये सारे आयाम आ जाते हैं। खाली मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं आती है, आजकल साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इन सब में ये देश बहुत आगे है, और इसलिए उनके साथ जो कोलेबोरेशन है वो हमारे लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रहेगा जिसमें दोनों साइड्स को बड़ा फायदा हो।
1: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, आज हमने भारत और यूरोप के बीच बदलते संबंधों तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश की। अनिल त्रिगुनायत जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर होंगी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमाकारी इख्तरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशित मुल्कों में से एक है। वज़ीर आज़म तीसरे भारत नॉर्वे समिट में शिरकत करने और दो तरफा बातचीत के लिए आज नॉर्वे पहुँचेंगे। तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक वाशिंगटन की शराइत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी की है। नई दिल्ली ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाराका न्यूक्लियाई मरकज पर हुए हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वीं आलमी सेहत असम्बली में हिफ्जान सेहत के मुस्तकबिल पर आलमी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। और टेनिस में आलमी नंबर एक यानिक सिनर ने फाइनल मैच में नॉर्वे के कैस्पर रूट को शिकस्त देकर इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों का मदऊ किया कि मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपने सरमायाकारी में इजाफा करें। गोथनबर्ग में स्वीडन के CEOs के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तरा और पायदारी की मुश्तरक अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के दौरा दौरे पर कल गोथनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी का स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें यह एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली ताउन और उनकी दूरंदेशी क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज़ है जो किसी सरबरा हुकूमत को दिया जाता है। वज़ीर आज़म मोदी का 31वां बैन अल-अक़वामी एज़ाज़ है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायज़ा लिया। दो तरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती टेक्नोलॉजी, दिफा, सलामती, SMEs, रसाई और आवाम से आवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे ताउन के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इस दौरे का असल मकसद सन 2026 से सन 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है ताकि दो तरफा इक्तसादी तबादलों को अगले 5 साल में दुगना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा सन 2047 की जानी मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने सन 2027 में दो तरफा तजारत सरमाकारी समिट मनक़द करने का आज़म किया। स्वीडन के CEOs के साथ बातचीत के दौरान वजीर अजम ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन, खास तौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमाकारी को मदू किया। अब इस शराकतदारी को सेमी कंडक्टर, जदीद तरीन मैनुफैक्चरिंग, मुस्तकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर अदम पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खास

तौर पर शुक्रिया अदा किया जो आलमी इस्तेहकाम करते हैं एक मुश्तरका अज़म का एआदा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दो तरफा सरगर्मी के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वज़ीर आज़म का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब मोदी किंग हार्ड 5 और क्वीन सोंजना से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म जोनास घर स्टोर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वज़ीर आज़म के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि स्वीडन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तिसादी असलाहत के जरिए मुल्क में आई यकसत तब्दीली की सताइश की। यूरोपीय गोलमेज सनती मीटिंग के बाद नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सेबी जॉर्ज ने बताया कि CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर की मुश्तरक सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा उस वक्त एक बार फिर इजाफा हो गया जब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन शराइत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी। मगरबी एशिया में महीनों से जारी बेचैनी के दौरान ईरान के यूरेनियम ज़खीरे पाबंदियों में नरमी जंग में हुए नुकसान की भरपाई जैसे मामलों पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से कहा कि वो समझौते को मुमकिन बनाने के लिए तेज़ी से काम करे क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। भारत ने मुत्तहिदा अमारात के बारका न्यूक्लियाई मरकज़ को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और कशीदगी खतरात फैलाव की नुमाइंदगी करते हैं। नई दिल्ली ने सब्र व तहम्मुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले कल मुत्तहिदा अमारात के अल डाफरा के बारका न्यूक्लियाई मरकज़ के अहाते में ड्रोन हमला किया गया जिससे मरकज़ की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। अबूधाबी हुकाम ने तस्दीक की कि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और तापकारी का अखराज नहीं हुआ। अक़वामे मुत्तहिदा के न्यूक्लियाई निगरानी के इदारे बैन अक़वामी न्यूक्लियाई तवानाई एजेंसी ने कहा है कि वाक़े के बाद प्लांट के 4 रिएक्टरों में से एक मामूली तौर पर स्विच होकर एमरजेंसी डीजल पावर पर चला गया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असम्बली में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। ये 6 रोज़ा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि असम्बली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत मौजूदा अफराद और अवामी सेहत माहरीन को यकजा करने की जहाँ मुस्तहकम ज़्यादा शमूलियाती लखेदार सेहत देखभाल निज़ाम के तहत मुश्तरक आलमी अज़म की यकीन दहानी कराई जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि HD देवेगौड़ा ने अवामी ज़िंदगी के अपने तवील अरसे के दौरान मुल्क की नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म को पॉलिसी वाबस्ता मामलात कहते हैं उनकी गहरी समझ बूझ और महरूम तबकों की खिदमत के उनके जज्बे के लिए जाना जाता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज वियतनाम जुनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के साथ भारत के रवाबत के दायरे में मजीद वसअत आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे में कलीदी फौजी इश्तराक को फ़रोग देने दिफाई सनती साझेदारी को मुस्तहकम बनाने भारत बहरुलकायल खत्ते में बहरी तालमेल को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। टेनिस में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। सिनर ने फाइनल मैच में नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही यानिक सिनर साल 1976 में अडेनो पनाटा के बाद इटालियन ओपन जीतने वाले पहले अतालवी
खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा सिनर सभी 9 ATP मास्टर्स था 1000 खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच के बाद करियर के गोल्डन मास्टर्स मुकम्मल करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। डैनियल मेदवेदेव के खिलाफ खेले गए सख्त सेमीफाइनल के बाद सिनर ने फाइनल में ज़बरदस्त वापसी की और शानदार बेस लाइन

ले के साथ मैच पर हावी रहे। सीजन के दौरान उन्हें पूरी तरह फिट रखने पर सिनर ने अपनी फिटनेस टीम का शुक्रिया अदा किया। वहीं रूड ने मैच के बाद सीनियर की तारीफ की और कहा कि इस साल सीनियर की कारकर्दगी गैर मामूली रही, उन्हें देखना बाई से तहरीक रहा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें।

0: आज सरमाकारी अख्तरा मैनुफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। वज़ीर आज़म तीसरी भारत नॉर्वे समिट में शिरकत करने और दो तरफ़ा बातचीत के लिए आज नॉर्वे पहुँचेंगे। तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी की है। नई दिल्ली ने मुत्तहदा अरब अमारात के मरक्का न्यूक्लियाई मरकज़ पर हुए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मरकजी वज़ीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा जिनेवा में 79वीं आलमी सेहत असम्बली में हिफान सेहत के मुस्तबिल पर आलमी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। और टेनिस में आलमी नंबर एक यानिक सिनर ने फाइनल मैच में नॉर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त देकर इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ और AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब पेश हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी, इख्तरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। वज़ीर आज़म तीसरी भारत नॉर्वे समिट में शिरकत करने और दो तरफा बातचीत के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक वाशिंगटन की शराइत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी की है। नई दिल्ली ने मुत्तहदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर मरकज पर हुए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जिनीवा में

जी बिल्कुल, छोटी सी कहानी जिसको लेकर आए सुबोध घोष जी की कहानी है ये। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इजाज़त जिसकी कहानी एक बहुत ही बड़े बंगाली लेखक सुबोध घोष की कहानी जातु ग्रह पर आधारित है। इस कहानी पर 1964 में बंगाली निर्देशक तपन सिन्हा ने कलाकार उत्तम कुमार को लेकर एक बंगाली फिल्म भी बनाई थी और उसी से इंस्पायर हुए गुलजार साहब। उन्होंने कहानी तो जादूग्रह से ली, लेकिन उसके जो कहानी का ताना बाना था उसको लेकर के उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने अपने अंदाज में लिखा और उसमें किरदार को जोड़ा। वो किरदार का नाम माया। उसके बाद ये तैयार हुई कहानी इजाज़त। फिल्म में माया का किरदार जोड़ा गया जो कि एक चुलबुला, बेपरवाह, थोड़ा सा पागलपन से भरा हुआ किरदार था और इस किरदार के लिए चुना गया अनुराधा पटेल को, जो उनके पूरे फिल्मी सफ़र का एक सबसे ज़्यादा यादगार रोल रहा। लेकिन इस रोल के लिए अनुराधा पटेल को चुनने से पहले गुलजार साहब की जो पहली पसंद थी वो परवीन बॉबी या जीना तमान जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेस को लेना था, लेकिन उनकी तरफ से हाँ नहीं हुई और बाद में अनुराधा पटेल को ये रोल मिला। तो उन्होंने इस किरदार में अपनी पूरी जो जान थी वो लगा दी और सादगी और संजीदगी की एक अलग ही मिसाल उन्होंने तैयार करके दी इस किरदार के रूप में।

जी दोस्तों, फिल्म इजाज़त, जिसके बारे में आज हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में बातें। वैसे एक तरह से हम देखें तो जो फिल्म इजाज़त है, ये एक बहुत अलग तरीके का एक अनोखा सा एक्सपेरिमेंट था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, और शायद ये एक अपने आप में एक पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उस वक्त 8 सिनेमा के हीरो नसरुद्दीन शाह साहब को लिया गया, और दूसरी तरफ उनके ऑपोजिट थी कॉमर्शियल सिनेमा की ग्लैमरस क्वीन रेखा। ये जोड़ी को पर्दे पर एक साथ लाने का काम किया गुलजार साहब ने, और उन दोनों को इस किरदार के लिए चुनने के पीछे गुलजार साहब की भी एक अपनी अलग तरह की सोच थी, क्योंकि फिल्म का जो मुख्य कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है महेंद्र, जो कि निभाया है नसीर साहब ने, वो कोई विलन नहीं है, बल्कि ना ही वो कोई धोखेबाज इंसान है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी पत्नी को भी नहीं धोखा देना चाहता, वहीं वो अपनी पुरानी मोहब्बत को भी नहीं भूल पा रहा है। अब इसी कश्मकश में वो है, इसी कमज़ोरी में, इसी उधेड़बुन में वो लगा हुआ है इस पूरे फिल्म के दौरान, और गुलजार साहब को इस किरदार के लिए एक ऐसा अभिनेता चाहिए था, एक ऐसा हीरो चाहिए था जो बिना विलन लगे अपनी लाचारी, अपनी मासूमियत से उस कैरेक्टर में इस तरह से दिखाए कि हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने हालातों से या अपने दिल के हाथों मजबूर है, यानी कि विलन वाले काम तो करे लेकिन उसके साथ नफरत ना की जाए। और वाकई में नसीर साहब ने उस चीज़ को जो गुलजार साहब चाहते थे, उस काम को उन्होंने बखूबी किया, बखूबी अंजाम दिया उन्होंने उस सोच को जो गुलजार साहब के मन में थी। और नसीर साहब जब भी स्क्रीन पर नज़र आए तो उनके चेहरे पर एक ठहराव, एक नेचुरलिटी थी, और इस किरदार को उन्होंने इस तरह से बना दिया था कि हर किसी को महेंद्र से नफरत नहीं थी, बल्कि उसके दर्द को हर किसी ने समझा। और इस किरदार को निभाने के लिए नसीर साहब ने उस किरदार में ढलने के लिए अपनी दाढ़ी बनाई, और एक पूरी तरह से एक शायर वाले लुक में वो ढल गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुधा का किरदार, जो कि नसीर साहब की पत्नी का किरदार था सुधा का, जो कि निभाया रेखा जी ने, जिसके लिए गुलजार साहब को चाहिए थी एक स्वाभिमानी महिला हो, समझदार, थोड़ी सी संजीदा भी हो, जो अपने पति के ज़िंदगी में दूसरी महिला के आने पर उसे बर्दाश्त तो ना ही करे, लेकिन जब घर छोड़े तो वो भी पूरी गरिमा के साथ में। और बिल्कुल इस किरदार के लिए पहली और आखिरी पसंद गुलजार साहब के लिए रेखा थी। जी हाँ, क्योंकि रेखा उनके साथ पहले भी घर फिल्म में काम कर चुकी थी, उससे पहले उमराव जान में भी वो काम कर चुकी हैं, और उस तरह के जो संजीदा किरदार रेखा जी ने निभाए हैं, उसके बाद गुलजार साहब के मन में सिर्फ और सिर्फ रेखा जी ही थी सुधा के किरदार निभाने के लिए। और वाकई में उनकी उस पूरी सोच पर खरी उतरी रेखा जी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस किरदार को निभाया, बहुत ही प्यार के साथ उस किरदार को उन्होंने अपने लाइफ में उतारा। एक तरह से कह सकते हैं कि रेखा जी ने एक बार ये कहा भी था कि जो ये सुधा का किरदार है वो उनकी ज़िंदगी के बहुत करीब था।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आशा जी की आवाज़ में जो भी आपने गीत सुना, वाकई में ये गीत एकदम दिल को छू जाता है। इस गीत में माया की वो तड़प, वो ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर थोड़ा थोड़ा कर जीने की जो ख्वाहिश है वो एकदम साफ दिखाई देती है। वाकई में इस गाने में पंचम गाने कमाल किया है। वैसे एक तरीके से मैं यही कहूँगी कि अगर हम फिल्म इजाज़त की बात करें, उस फिल्म के संगीत की बात ना करें तो मतलब बिल्कुल ही गलत होगा। इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है संगीत। जी हाँ, कहें कि ये फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के संगीत के बिना ये इस फिल्म के बारे में बात करना बिल्कुल बेमानी है। आर डी बर्मन साहब और गुलजार साहब और आशा जी, इस तिगड़ी ने मिलकर जो कमाल किया है ना, वो जादू आज भी हर किसी के दिल पर छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह है कि जो भी गीत बने हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही दिल को छू लेने वाले बने हैं। लेकिन इस फिल्म में एक और अहम किरदार था, वो था शशि कपूर साहब का। एक कैमियो का रोल उन्होंने इस किरदार में निभाया था और वो था

खुदा के नए पति के रूप में। जी हाँ दोस्तों, गुलजार साहब इस रोल के लिए किसी ऐसे स्टार को चाहते थे जिसके फेस पे रुआब हो। स्क्रीन पर जब वो आए तो उसको देखते ही जो देखने वाले हैं वो समझ जाएं कि नहीं, अभी जो सुधा है वो एकदम सेफ हाथों में है, सेफ व्यक्ति के साथ में है। और शशि कपूर साहब ने गुलजार के सम्मान में बिना किसी हिचकिचाहट के इस छोटे से किरदार के लिए हाँ किया। वैसे यही कहेंगे कि छोटा किरदार था, लेकिन हाँ बेहद अहम किरदार था इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में एक और खूबसूरत सा गीत है जो हम अभी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, लेकिन इस गीत के लिखने के पीछे भी एक मज़ेदार कहानी, एक किस्सा है। और वो किस्सा है कि जब इस गीत को लेकर बर्मन साहब गए इनके पास, बर्मन साहब गए गुलजार साहब के पास में, तो उन्होंने कहा, यार पंचम जी ये क्या आप मतलब मुझे लेकर आ रहे हैं, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग आप लेकर आएंगे, बोलेंगे कि जी इसके ऊपर गाना बना दें, ऐसे थोड़ा ना होता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये बहुत खूबसूरत है, ज़रा इसके ऊपर आप एक बार बनाओ। उन्होंने धुन बनाई और जो धुन बनी है वो गीत बनकर तैयार हुआ है कि वाह, आज भी वो गीत हर किसी की पसंद है। वो गीत हम आपको सुनवाएंगे अभी कुछ ही देर में, लेकिन हाँ उससे पहले हम संदेश अपने शामिल कर लेते हैं जो हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं। और ये संदेश आया हमारे पास गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह का, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर और पुना राम कृष्णा देवगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश आया है समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता के साथ। पिपरिया से हमारे साथ जुड़े हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता के साथ। सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगला जो संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू के साथ। मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, लवली, पिंकी, आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नववानकर, निर्मला विशाल नववानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार डूड़ी जुड़े हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए। कैथल हरियाणा से मधु नायक, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनता वर्मा, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरगांव गुजरात से जुड़े हैं अजित भावसर, प्रमिला भावसर, भावेश सन्नी भावसर जुड़े हुए हैं। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जिव्यम जैन हमारे साथ एक बार फिर से सरधना से जुड़े हुए हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत जानकारी इन्होंने हम तक पहुंचाई है इस फिल्म से जुड़ी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उषा मोहन जी जुड़े हैं पीटीआई संसद मार्ग से, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार जी हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। भूषण खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके फजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा है। भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवानशी, वाणी, आरबी खेड़ा जी, जीवन सिंह भूख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऊपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से। निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज फरजान, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ। अगला संदेश जो हम तक आया है लालगिरी गोस्वामी हेमलता जी का है, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। तो ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए सभी हम तक जुड़े दोस्तों और सभी संदेशों को हमने शामिल किया। और जाने से पहले दोस्तों यही कहूँगी मैं आप सभी से कि जो हमारी फिल्म है इजाज़त, जो कि ट्रेन के सफ़र में शुरू हुई और अब इस सफ़र को मैं यहीं पर रोकूंगी। ज़रूर उम्मीद करूंगी कि इस कहानी ने, इस इन किस्सों ने आपके दिल को छुआ होगा।
फिर से मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ, तब तक खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, जिंदगी को खुलकर जीने की अपने आप को दीजिए इजाज़त। तो अब मुझे भी दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम की समाप्ति की, छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए आशा जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: खबरां दी नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशां दे दौरे दे चौथे पड़ाव ते अज नॉर्वे दे ओस्लो पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम ते दक्षिणी कोरिया दे दौरे ते रवाना। केरल में सीनियर कांग्रेसी नेता ने आज केरल विच मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। पंजाब विच 26 मई नूं होण वाले नगर निगम चोणां लई 10,809 उम्मीदवारां दे नामजदगी पत्र दाखिल कीते। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव च नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए ने। इस दौरे च भारत नॉर्वे दरमियान दवली गलबात ते तीजा भारत नॉर्डिक सिखर सम्मेलन शामिल है। ए दौरा नॉर्डिक देशों दे नाल भारत दे संबंधा नूं गति प्रदान करेगा। आज प्रधानमंत्री नॉर्वे दे राजा हेराल्ड 5वें ते राणी सोनिया नाल मुलाकात करनगे। इस तों बाद उह नॉर्वे दे प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे नाल तवल्ली गलबात करनगे। उह भारत नॉर्वे व्यापार ते खोज शिखर सम्मेलन नूं भी संबोधन करनगे। कल प्रधानमंत्री तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैणगे। मौजूदा समय विच भारत ते पांच नॉर्डिक देशां दरमियान करीब 19 अरब डॉलर दा व्यापार हुंदा है। व्यापार दे प्रमुख खेत्रां विच नवीआं काढ़ां, रक्षा, ऑप्टिक अते लोक संपर्क जिहे कई खेत्र शामिल ने। इस तों पहलां श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि उन्हां दी स्वीडन यात्रा दौरान कई अहम नतीजे सामने आए जो दवल्ले संबंधां विच नवीं गति लियाउणगे। उन्हां कहा कि अपने दवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण, संयुक्त नवीनता भाईवाली 2.0 ते भारत स्वीडन तकनालोजी ते आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस कोरीडोर दी शुरुआत करन तों लैके अगले 5 सालां विच दवल्ले व्यापार नूं दुगणा करन दे उद्देश पूर्ण टीचा तय करन तक चर्चावां बेहद लाभकारी रहीआं। उन्हां ने स्वीडन दे लोकां, स्वीडन दी सरकार अते प्रधानमंत्री ओलफ क्रिस्टरसन दा उन्हां दे निग अते दोस्ती लई धन्नवाद कीता। प्रधानमंत्री दी स्वीडन यात्रा नूं कवर करन वाले साडे पत्रकार ने खबर दित्ती है कि दवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली दे पद्धर तक उच्चा चुकना भारत स्वीडन संयुक्त कार्ज योजना 2026-30 राही हो सकिआ है। व्यापक खाके दा उद्देश अगले 5 सालां दे अंदर दवल्ले आर्थिक वटांदरे नूं दुगणा करना ते मेक इन इंडिया ते मेड विद स्वीडन पहलकदमियां तहत सहयोग नूं डूंगा करना है, खास करके चुगिरदे पक्खी हाइड्रोजन, सैमीकंडक्टर अते आधुनिक निर्माण वर्गे खेत्रां विच। इस दौरे दा एक महत्वपूर्ण पल प्रधानमंत्री नूं रॉयल आर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान कीता जाणा सी, जो कि विदेशी सरकारां दे मुखियां लई स्वीडन दा सब तों वड्डा सन्मान है ते इह दोवां देशां विचकार डूंघे हो रहे सभ्याचारक ते लोकतंत्री संबंधां दा प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम अते दक्षिणी कोरिया दे दो देशां दे दौरे ते रवाना होए। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां कहा कि दौरा दोवां देशां नाल देश दे संबंधां दे दायरे नूं होर वधाएगा। उन्हां कहा कि दौरा रणनीतिक फौजी सहयोग नूं डूंघा करन, रक्षा सनअती भाईवाली नूं मजबूत करन अते हिंद प्रशांत खेत्र विच समुद्री सहयोग नूं वधाउण ते केन्द्रित होएगा। वियतनाम दी अपनी यात्रा दौरान राजनाथ सिंह वियतनाम दे राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फॉन वेन चियांग नाल दवल्ली गलबात करनगे। श्री सिंह दा दौरा 19 मई नूं वियतनाम दे साबका राष्ट्रपति हो ची मिन दी 136वीं जन्म वरेगंढ मौके भी हो रहा है। केरलम विच सीनियर कांग्रेसी नेता वी डी सतीशन दी अगवाई वाले नवे यूडीएफ मंत्रीमंडल नूं तिरुवनंतपुरम विच सौं चुकाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने नवे मंत्रियों नूं सौं चुकाई। साबका विरोधी धिर नेता अते केपीसीसी दे साबका प्रधान

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन का 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को तकवियत मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे के अपने पहले दौरे पर ओस्लो पहुंच गए हैं। पिछले 43 वर्ष में भारत के किसी भी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा है। जनाब मोदी आज नॉर्वे के शाह हारल्ड पंजुम और मलका सोंजना से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम योनास गहर स्टोरेस के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी समिट से भी खिताब करेंगे। इस दौरे में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी, समुद्री मईशत जैसे शुबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा तजारत सरमाकारी के मौाक़े को भी फ़रोग हासिल होने की तवक्को है। कल वजीर आजम तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हाल ही में नाफिज किए गए तजारती और इकतसाई शराकतदारी माहदे के तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस रुकन मुल्कों के साथ इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहक करने में मददगार साबित होगी। सरजद भारत और 5 नॉर्डिक ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत 19 अरब डॉलर मालियत की है। नॉर्वे के ओस्लो से संगीता गोडबुले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्वीडन के उनके दौरे में ऐसे कई अहम नतायज सामने आए हैं जिनसे बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक पहुंचाने से लेकर मुश्तरका इख्तराई साझेदारी के दूसरे मरहले के आगाज और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत कॉरिडोर से लेकर अगले 5 साल में दो तरफा तजारत को दोगुना करने का बड़ा मकसद तय करना उनके दौरे के खास निकात रहे और बातचीत काफी मुफीद साबित हुई। जनाब मोदी ने स्वीडन के आवाम, वहां की सरकार और वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने में 2026 से 2030 तक के भारत स्वीडन मुश्तरका अमली मंसूबे का अहम रोल रहा। जामे खाके का मकसद अगले 5 साल में दो तरफा इकतसादी लेन देन को दोगुना करना और मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी, इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। जनाब मोदी स्वीडन के अपने 2 दिन के दौरे में गोतनबर्ग में सनअत से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्दा

0: Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया।

0: केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को

0: नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ मन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और

0: सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। कार्यक्रम एक ही कलाकार में स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही कलाकार, और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपको रूबरू कराते हैं हर बार एक अलग शख्सियत से। आज भी इस कड़ी में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही शख्सियत को, जिसकी वैसे लोग कहते हैं कि जो रंगमंच का सिकंदर होता है ना, वो रुपहले पर्दे पर इस जो सिल्वर स्क्रीन होती है उसकी चकाचौंध में खो जाता है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में कहानी हम एक ऐसे शख्स की करेंगे जिसने जब स्टेज संभाला तो एक हिस्ट्री बन गई, और जब कैमरे के सामने कदम रखा तो कॉमर्शियल सिनेमा के दौर में उसने पैरेलल सिनेमा का भी परचम लहराया। जब कैमरे के पीछे गया तो भी उसने एक अलग ही कमाल दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के बारे में, एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो कि बहुत से गुणों की खान है, जो एक अभिनेता है, एक निर्देशक है, एक लेखक है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो बहुत से गुणों की खान है। और अगर हम बात करेंगे उसके सम्मानों की, पुरस्कारों की, तो राज्योत्सव पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कालिदास सम्मान, और दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से भी उन्हें अवार्ड मिला है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे भाई इतने सारे अवार्ड, इतनी सारी चीज़ों के साथ में आखिर आज वो शख्सियत कौन है जिससे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं? तो दोस्तों, थाम के बैठिए अपनी कुर्सी की पेटी, हम लेके चल रहे हैं आपको अपने साथ गिरीश कर्नाड के बारे में जानकारी देने वाले इस खूबसूरत से सफ़र पर। तो लीजिए करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ जो कि है उन्हीं की फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, भूपिंदर की आवाज़ में सुनते हैं फिल्म निशांत से ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं 19 मई सन 1938 को जन्मे गिरीश कर्नाड के बारे में, जो सिर्फ एक नाटककार नहीं थे बल्कि एक बेमिसाल अभिनेता, दूरदर्शी निर्देशक और एक बहुत अच्छे विचारक थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा कन्नड़ भाषा में, लेकिन उनके लिखे हुए जो नाटक थे वो सिर्फ कन्नड़ भाषा तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि हिंदी, अंग्रेज़ी और यहाँ तक कि दुनिया भर की जो भाषाएं हैं उसमें उन नाटकों को ढाला गया और उन नाटकों ने स्टेज पर आग लगा दी। और उन्हीं नाटकों में से कुछ नाटक ययाति, तुगलक, हेवदन और नागामंडल, ये कुछ ऐसे नाटक थे जो कि सिर्फ हम कहेंगे कि नाटक नहीं थे बल्कि हमारे भारतीय थिएटर की जो इंडस्ट्री है उसमें एक मील का पत्थर साबित हुए। मतलब आज भी अगर किसी को थिएटर में कुछ सीखना है तो इन नाटकों के ज़रिए वो बहुत कुछ सीख सकता है। और जो कर्नाड साहब थे उनके लिखने की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी जो लिखने के लिए थीम या जो सोच आती थी वो हिस्ट्री में से निकालते थे या फिर मिथ में से लेते थे और उन चीज़ों को उठाकर वो प्रेजेंट के टाइम पर आज के दौर से उनको जोड़ करके उस नाटक को लिखा करते थे। वहीं जैसे हेवदन जो नाटक उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने जो एक इंसान है, जो एक आदमी है, वो किस तरह से अपने आप को पूरा करने की चाह दिखाता है, उसके अंदर की जो चाह होती है उसको दिखाया गया। वहीं दूसरी ओर नागामंडल जो नाटक है उसमें उन्होंने छोटी छोटी लोक कथाओं के ज़रिए दिखाया कि एक महिला का, एक औरत का जो अस्तित्व है, उसकी इच्छाओं का जो, उसकी इच्छाओं की जो आवाज़ है वो किस तरह से पूरी हो सकती है। उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को छोटे छोटे रूप में दिखाया अपने नाटकों के जरिए।

जी दोस्तों, गिरीश कर्नाड जी के बारे में हम बात कर रहे हैं और बात करते हैं उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। साल था सन 1970, कन्नड़ फिल्म आई संस्कार और इस फिल्म से कर्नाड ने बतौर स्क्रिप्ट राइटर और मेन अभिनेता के रूप में अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। पहली फिल्म और सीधा लिया नेशनल अवार्ड पर कब्ज़ा। पहली फिल्म से दिखा दिया कि भाई कुछ तो है इस बंदे के अंदर, सिर्फ चेहरा दिखाने के नहीं बल्कि सिनेमा की परिभाषा बदलने के लिए आया है ये व्यक्ति, और बिल्कुल वही किया। हिंदी सिनेमा को एक नया रास्ता दिखाया गिरीश कर्नाड ने, और तभी निर्देशक श्याम बेनेगल की नज़र जब उनकी उस कड़क कद काठी और दमदार आवाज़ पर पड़ी तो बनाया उन्होंने अभिनेता और इतिहास बना दिया। जी हाँ दोस्तों, अंकुर, निशांत और मंथन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और अभिनय किया, दिखाया कि किस तरह से शोषित और शोषक के बीच में जो द्वंद्व होता है वो सब उन्होंने अपनी इन फिल्मों के ज़रिए दिखाया, और अपने हर सिनेमा में, अपनी हर फिल्म में अपनी संजीदा अदाकारी से उन्होंने हर सिनेमा प्रेमी का दिल जीता। लेकिन ठहरो भाई ठहरो, कर्नाड सिर्फ कैमरे के सामने अपना जादू नहीं दिखाना चाहते थे या सिर्फ लिख कर अपना जादू नहीं दिखाना चाहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने कमान संभाली कैमरे के पीछे की।

ये दोनों इतनी बेहतरीन फिल्में बनी कि उसके बाद इन्हें लगा कि वाकई मुझे अब सिनेमा के निर्देशन में भी उतरना चाहिए, और उन्होंने कन्नड़ फिल्में बनाना शुरू किया। लेकिन उसके बाद वो हिंदी फिल्मों में भी निर्देशन के लिए उतरे, और साल सन 1984 में उन्होंने बनाई फिल्म उत्सव। ये फिल्म एक संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम पर आधारित था, और इस फिल्म में उन्होंने रेखा और शेखर सुमन को मुख्य भूमिकाओं में लिया। कला, सौंदर्य, संगीत का ऐसा बेजोड़ तालमेल दिखाया गया फिल्म उत्सव में जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। और वही फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। तो दोस्तों, सुरेश कन्नड़ जी के बारे में बातें चलती रहेंगी, ये सफ़र अभी यूं ही चलता रहेगा। और अभी हम सुनते हैं लता जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म स्वामी से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जी दोस्तों, वक्त बदला, सिनेमा बदला, लेकिन कर्नाट का जलवा नहीं बदला। नई पीढ़ी ने उन्हें देखा बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, जिसमें उन्होंने रॉकी चीफ शाह साहब का किरदार निभाया। वही पुरानी कड़क आवाज़, रौबदार शख्सियत देखकर थिएटरों में तालियां गूंज उठी। वैसे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने किरदार निभाया। और लीजिए, सुनते हैं उसी फिल्म से ये शानदार गीत।

जी दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हमारे बहुत से श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वर्ण सिंह गिल, तलचीत राजदीप गुरनूर, गुरनाल अविराज सिंह, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हैं कस्बा गन्नौर यूपी से, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा के साथ मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिरमिरी कोरासिया कालरी से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे के साथ, अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं पीटीआई बिल्डिंग संसद मार्ग से, ग्राम फरासी जिला हिसार से जुड़े राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। अगला संदेश भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव के साथ में। ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत मक्कर जी ने, भारत मक्कर के साथ कमल साहनी पिंगा वाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से, मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौकेटी बुलंदशहर से और इनके साथ हैं निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं अनिल मोहन जी और इनके साथ हैं उषा मोहन, मधु नायक जी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़े हैं पी एस नववानकर, निर्मला विशाल नववानकर जी। और अगला संदेश आया है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का, दत्रेंगी से। संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। और ये अगला संदेश हम तक आया है इसको पहुंचाने वाले हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और इनके साथ हैं आशा देवी। दोस्तों ये थे वो संदेश और ये अगला संदेश एक और हम शामिल कर लेते हैं। ये आया है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, इसको भेजने वाले हैं उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार के सभी सदस्य। दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने ये संदेश शामिल किए और आज हमने बात की कर्नाड साहब के बारे में, गिरीश कर्नाड जी, गिरीश कर्नाड जी जिन्होंने ना रंगमंच पर रुके ना सिनेमा पर और उन्होंने हर जगह पर अपना जो जलवा है वो यूं ही बिखेरा। वैसे आपने देखा होगा कि वो सिर्फ सिनेमा, रंगमंच और यहीं तक सीमित नहीं थे बल्कि उन्होंने टीवी पर भी अपना जलवा बिखेरा। मालगुड़ी डेज तो आपको याद ही होगा और भाई उस वक्त में मालगुड़ी डेज, इंद्रधनुष, खानदान, अपना अपना आसमान जैसे कार्यक्रमों से वो टीवी के ज़रिए हर घर में, हर किसी की, बच्चे बच्चे की पहचान में थे। दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हमने इनकी बात की और जाते जाते यही कहूँगी कि थिएटर का जो ये महान अदाकार था उसका एक संवाद मैं आपके सामने ज़रूर बोलूँगी। उनकी ही ज़बानी था ये, उन्होंने कहा था कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस एक होठ से दूसरे होठ तक का सफ़र तय करती हैं। तो दोस्तों आप कर्नाड साहब की कहानियाँ अब आपके पास भी हैं तो आप भी उन्हें ज़िंदा रखिएगा। तो इसी के साथ ये सफ़र हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस सफ़र को ख़त्म करने की, जाएगा कहीं नहीं, छोड़े जाती हूँ बहुत ही खूबसूरत सगीत उन्हीं की फिल्म शिवाय से।

आदाब, ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, डी डी फ्रिडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया मैमुना, और अब पेश है उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात में नश होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। अब से कुछ देर बाद 3:05 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें। 3:15 पर पेश होगा प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 पर प्रोग्राम पेश होगा कहकशां, जिसमें आप फिल्म कुर्बानी को सुनेंगे। 4:00 फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 4:50 पर खबरें नश होंगी। 9:15 पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात शुरू होंगी, जिसमें आप 9:20 पर सुनेंगे एक फनकार। 9:45 पर आप सुनेंगे खबरें। 9:55 पर हेल्थ टिप्स सुनेंगे, और 10:00 मार्केट मंत्र पेश होगा। 10:30 पर प्रोग्राम तामिले इरशाद नशर किया जाएगा। 11:00 खबरें बरे सगीर से पेश की जाएंगी। 11:10 पर तामिले इरशाद और 11:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। 11:45 पर आपके सामने पेश होंगी कवालियाँ। 12:00 आलमी खबरें नशर होंगी। 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया जाएगा, और 12:30 पर प्रोग्राम आखिर शब नशर होगा। ये थी आज की फहरिस्त, प्रोग्रामों की नशर होने वाली फहरिस्त, और अब से कुछ देर बाद नशर होंगी उर्दू खबरें।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद अम्मार से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हम मनसब योनास गैर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह दिफाई और भारत बहरुलकाहिल राबतों को फरोग देने के लिए वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जनेवा में शुरू होने वाली 79वीं आलमी सेहत असम्बली में हिफ्जान सेहत के मुस्तकबिल के बारे में आलमी मुजाकरात में शिरकत करेंगे। और IPL क्रिकेट में आज शाम मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन का 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के

0: अमल की अहमियत को उजागर करता है। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जेर क्यादत बीजेपी सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए रियासती सरकार की मुलाजमत में आने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया है। ग्रुप ए असामियों में भर्ती के लिए उम्र की हद अब 41 साल तय की गई है, जबकि ग्रुप बी के ओहदों के लिए इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी असामियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र अब 45 साल होगी। सरकार ने ये वजाहत की है कि जहां कहीं उम्र की बालाई हद पहले ही नाफिज है, वहां मौजूदा जाब्ते बरकरार रहेंगे। केरलम में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर वी डी सतीशन की सरबराही में नई यूडीएफ वजारत को आज तिरुवनंतपुरम में हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए वजीर को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। साबिक अपोजिशन लीडर और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के साबिक सदर रमेश चेन्नीथाला, केपीसीसी के मौजूदा सदर सनी जोसेफ, केपीसीसी के साबिक सदर के मुरलीधरन और आईयूएमएल के लीडर पीके कुनालीकुट्टी नई वजारत में सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 अरकान को हलफ दिलाया गया। वजीर आजम ने मोदी ने केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वी डी सतीशन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार आवाम की उमंगों की तकमील में केरलम की नई सरकार की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। भारत ने मुत्तहिदा इमारात के बराका न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में उस वक्त एक बार फिर इजाफा हो गया जब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी। मगरबी एशिया में महीनों से जारी बेचैनी के दौरान ईरान के यूरेनियम ज़खीरे, पाबंदियों में नरमी और जंग में हुए नुकसान की भरपाई जैसे मामलों पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने ईरान से कहा है कि उस समझौते को मुमकिन बनाने के लिए तेज़ी से काम करे क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। चीन के ग्वांगशी खित्ते में आज सुबह 5.2 शिद्दत का जलजला आने से 2 अफराद हलाक हो गए। जलजले के बाइस कई इमारतें गिर गईं और हज़ारों अफराद को अपने घरों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। टेनिस में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। सिनर ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह दिफाई और भारत बैरुल-काहिल राबतों को फरोग देने के लिए वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जनेवा में शुरू होने वाली 79वीं आलमी सेहत असम्बली में हिफ्जान सेहत के मुस्तकबिल के बारे में आलमी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आदाब सामई, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अभी आपने सुनी उर्दू खबरें। 3:15 हो चुके हैं और अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया ममूना। लीजिए पहला नगमा इस प्रोग्राम का।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। सामईन, 3:30 बज चुके हैं और अब पेश होगा प्रोग्राम कहकशां, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म कुर्बानी की कहानी और नगमे।

राजेश यानी अदाकार फिरोज खान को तिजोरियां तोड़ने में कमाल हासिल था। रोजाना शाम को तफरी के लिए वो एक क्लब में जाता था जहां शीला यानी अदाकारा जीनत अमान सैकड़ों मद्दाहों के दरमियान घिरी अपने दिल फरेब रक्स और सेहर अंगेज आवाज से उनका दिल बहलाती थी। लेकिन राजेश को यह महसूस होता गोया शीला का यह गीत महज उसी के लिए था।

0: Antoni Carrick.
1: Ah ah.
0: बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे प्यार में इतना खो गई है कि इसे याद नहीं कि बाप नाम की भी कोई चीज है। तकदीर वाली है।
1: इसमें तकदीर की क्या बात है?
0: कहते हैं किसी का प्यार तकदीर के आसमान में चार चांद लगा देता है। चाहत इंसान का नसीब संवार देती है।

अमर और शीला की मुलाकातों से बेखबर राजेश जेल की चहरदीवारी में मेहनत मशक्कत करता रहता और जब थकन से चूर हो जाता तो अपनी आइंदा जिंदगी के सपने देखने लगता। जब वो जेल से रिहाई के बाद शीला के साथ मोहब्बत और शराफत की जिंदगी बसर करेगा। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जेल में राजेश की मुलाकात विक्रम यानी अदाकार शक्ति कपूर से हुई, जो राजकुमार

0: इसने चालाकी से विक्रम और उसकी बहन ज्वाला के कई करोड़ रुपए की मालियत के हीरे हड़प कर लिए थे। इसलिए इन भाई बहन ने कसम खाई थी कि वो राका से इस सितम का बदला लेकर ही रहेंगे। क्योंकि राजेश तिजोरियां खोलने में माहिर था, इसलिए विक्रम जानता था कि राजेश ही उसके काम का आदमी है। और फिर एक दिन विक्रम ने राजेश को जबरदस्ती उठवा लिया।
1: आप इसे जानते हैं?
2: हाँ, ये एक बार मुझसे आठानी की शर्त हार चुका है।
1: आठानी की? ये तो अरबों रुपयों का मालिक है।
2: मेरी नजरों में जिस आदमी की जितनी कीमत होती है, मैं उसके साथ उतनी ही शर्त लगाता हूँ।
1: खूब परखा आपने, ये है इसी काबिल। लेकिन इसकी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए के जेवरात बंद हैं, जिन पर हमारा हक है। सुना है आपकी उंगलियों में जादू है, ताले आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचने लगते हैं और दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं।
2: आप चाहती हैं कि मैं अपनी उंगलियों का जादू दिखाकर इस तिजोरी के दरवाजे खोल दूं?
3: दोस्त, ये रहे 50,000 रुपए, एडवांस के तौर पर रख लो, काम खत्म होने पर 5 लाख और।
1: कितनी जल्दी हो सके हमारा ये काम कर दीजिए।
2: बहुत जल्दी में है आप लोग, मैं अभी भी बाहर निकला हूँ। ये एडवांस अपने पास रखिए, दोबारा मुलाकात होगी फिर बात करेंगे।
3: दोस्त, इसे रखिए अपने पास, जब तक ये एडवांस आपके पास रहेगा आप हमें और हम आपको याद रखेंगे।
0: राजेश ये रकम लेकर शीला के पास पहुंचा।
1: कौन थे वो लोग?
2: कौन?
1: वही जो जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले गए थे।
2: अरे वो, उन्हें मुझसे कुछ काम था।
1: क्या चाहते थे वो तुमसे?
2: चाहते क्या थे, मिलना चाहते थे और क्या मिलके वापस आ गया।
1: राजेश, तू रहा उनसे, वो लोग मुझे खतरनाक मालूम होते हैं।
2: हुआ करें खतरनाक, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे।
1: मुझे डर लग रहा है कि तुम फिर उसी रास्ते पे वापस तो नहीं जा रहे हो।
2: मैं कहीं वापस नहीं जा रहा हूँ शीला, यही हूँ तुम्हारे पास।

0: है।
1: पैसे कहाँ से आए इस बात की फिक्र मत करो। तुम इस बात की फिक्र करो कि इसे खर्च कैसे करो।
0: मगर तुम लाए कहाँ से?
1: अरे यार तुम आम खाओ ना, पेड़ गिनने से क्या मतलब है तुम्हें?
0: राजेश तुम्हें पैसे से ज्यादा प्यार है या शीला से?
1: ये भी कोई पूछने की बात है?

0: क्या किया तुमने?
1: वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अकल आ गई है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। चोरी तुम्हारी नस नस में बस चुकी है राकेश।
0: हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन किसी गरीब की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं उनके यहाँ चोरी करता हूँ जो सिर्फ पैसे की पूजा करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते।
1: और ये हक तुम्हें किसने दिया?
0: उन लोगों ने जिन्होंने लाखों इंसानों का हक मार कर ये दौलत जमा की है। शीला तुम समझती क्यों नहीं, मैं चोरी अपने जेब में भरने के लिए नहीं करता हूँ। मैं सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदों में डाल देना चाहता हूँ। बुरा क्या है अच्छा क्या है मैं नहीं जानता, और न ही मुझे इस बात की परवाह है। लेकिन जब मैं तुम्हें क्लब में नाचते गाते देखता हूँ तो मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है।
1: तो क्या चाहती थी तुम? कि मैं सड़कों पर भीख मांगती फिरती, लोगों के आगे हाथ फैलाती फिरती? 3.5 साल की तन्हाई और अकेलापन जानते हो क्या होता है? अगर जानते होते तो आज फिर ये काम नहीं करते। राजेश, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है।
2: राजेश को इतनी बड़ी रकम खोने का जरा भी सदमा नहीं हुआ, क्योंकि उसे दौलत से ज्यादा शीला से प्यार था।

एक मौके पर राजेश न चाहते हुए भी विक्रम से लड़ने पर मजबूर हो गया। ये टकराव अमर की जान बचाने की खातिर हुआ। दरअसल राजेश और अमर दोनों ही मुजरिमाना जिंदगी से आजीज आ चुके थे और इज्जत की जिंदगी बसर करने का तहैया कर चुके थे। ख्यालात की ये यकसानियत उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आई और फिर दोनों गहरे दोस्त बन गए।

0: दूसरी तरफ विक्रम, जो एक बार अमर के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा चुका था, अमर से इंतकाम लेने की आग में झुलस रहा था। एक दिन मौका पाकर विक्रम के आदमी अमर को उठाकर अपने अड्डे पर ले आए। विक्रम ने अमर को रस्सियों से जकड़कर उस पर बेतहाशा कोड़े बरसाए।
1: याद आया, मैंने कहा था हमारी तुम्हारी एक मुलाकात और होगी और वो तुम्हारी आखिरी होगी।
2: जिंदगी की परवाह वो लोग करते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो। मैंने जब से होश संभाला है खिलौनों की जगह मौत से खेलता आया हूं,
1: लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, जिंदा रखूंगा। पर सिर्फ इतना होगा कि वो जिंदगी मौत से बदतर।

राजेश को मालूम हुआ तो वो भी वहां पहुंच गया।

0: इस तरह राजेश अमर को विक्रम और उसके आदमियों के चुंगुल से निकाल लाया। मगर विक्रम को अपनी शिकस्त पर बेहद गुस्सा था। वो मौके की तलाश में रहा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसने अमर की बेटी टीना को अगवा करवा लिया। जब अमर को इल्म हुआ तो वो दीवानावार विक्रम के घर पहुंचा।
1: विक्रम, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरे पास है, गरीब और ले लो।

0: अपनी कदर से गोलियों से।
1: और आगे आने दे बहन, इसकी मौत का तमाशा नजदीक से देखेंगे।
2: अमर की बेटी टीना के अगवा के बारे में जब शीला ने राजेश को बताया तो वो भी विक्रम के घर पहुंच गए।
3: मुझे
4: तेरी बच्ची मेरी कुछ नहीं, ये लोग चाहते हैं।

0: Seni kendimi söylüyorum.
1: Mekanım var. Mekanım söylemeyeceğim ya. Anne.
0: Beni bak Eklen. Bu şey ekmek kim anı dost. Sırf ekmek ki. Mekine kobili yatam.
2: Dersin. ये विक्रम की दोहरी चाल थी, एक तो अमर को नीचा दिखाना और दूसरे राजेश से सौदा करना। विक्रम अपनी इस चाल में कामयाब हो ही गया। उसने इस शर्त पर अमर और टीना को छोड़ दिया कि राजेश राका की तिजोरी तोड़कर उसमें छिपे हुए हीरे विक्रम के हवाले कर देगा। राजेश ने शर्त तो मान ली, लेकिन उसने अमर के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा तैयार किया कि दौलत भी हाथ आ जाए और वो विक्रम और ज्वाला के चुंगुल से आजाद भी हो जाए। उधर विक्रम और ज्वाला का मंसूबा भी कुछ कम न था।
3: क्यों आए हो?
4: तुम्हारी मौत का परवाना लेकर आए हैं।
3: यही अल्फाज मैं पहले भी सुन चुका हूं।
4: शायद उस जेल की चक्की को भूल चुके हो तुम।
3: इंतकाम का भूत अभी तक नहीं उतरा।
5: वो मेरे भाई का इंतकाम था, लेकिन एक औरत का इंतकाम तुमने नहीं देखा। औरत जब इंतकाम लेती है तो उसकी आग में सब कुछ चलकर खाक हो जाता है।

0: देखिए प्लान तो इसने गजब का बनाया है, लेकिन बेचारे की किस्मत में इसका फल नहीं है।
1: राका के ज्वार आज लाते ही इसको 5 लाख मिलने की बजाय 5 गुनिया इसके सीने में भर देना।
0: वैसे प्लान हमारा भी बुरा नहीं।
2: हेलो पुलिस।
3: यस।
2: हाँ देखिए मेरे सामने की बिल्डिंग में डाका पड़ रहा है।
3: कहाँ?
2: 7th फ्लोर पे। बिल्डिंग का नाम है रिवेरा नारिमन पॉइंट।
3: आप अपना नाम बताइए, बहुत जरूरी है।
2: हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे बीच में मत डालिए, मैंने खबर दी है बस इतने काफी है।
3: हेलो हेलो हेलो
4: पुलिस को फोन किया।
2: हाँ
4: माला माल हो गया। इत्मीनान नहीं मिलेगा दोस्त, पुलिस को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा बड़ी चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरा यहाँ पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अब साल डेढ़ साल की तो बात है, देख पुलिस आ रही है। सुन चोर से मिलने का कोड याद है ना?
2: हाँ ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। मैं शीला से क्या कहूंगा,

0: Inspector. Man.
1: IPC Section 379, Region to Section 511, attempted robbery. Chori karte vak pakde jane ki saza. Ek saal. 1 year.
0: Aur agar mere purane record pe jag saab ki nazar padi, to shayad 6 mahine aur, yane, 1.5 saal.
1: Right.
0: Phir soch kya rahe, Inspector? Lagaiye hath kadi.
1: Chicha Ghalib ka ek sher yaad aa raha. Suniyega.
0: Irshad.
1: Bekhudi be sabab nahi Ghalib. Bekhudi be sabab nahi Ghalib. Kuch to hai jiski pardadari hai.
0: Kya matlab?
1: Matlab saaf hai. Tum aur itni mamooli si chori mein itni aasani se pakde jao. Baat zara ghatiya si lagti hai.
2: Raka ke ghar chori hui. Uski tijori se 1 crore ke heere ghaib hai.
0: Usse mera kya lena dena hai?
2: Usi se tumhara lena dena hai. Ye sab dikhavega poster hai, dikhavega.
0: Inspector, tum kabhi sabit nahi kar sakoge ki us chori mein mera haath hai.
1: तुम ठीक कहते हो इतनी बड़ी चोरी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता अलबत्ता इस खून के इल्जाम में जरूर कर सकता हूं
3: नहीं पता मैंने खून नहीं किया
2: शट अप
3: मैं कहता हूं मैंने खून नहीं किया
2: जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी क्वाइटली बॉय
1: तुम्हारा सारा रॉबरी का प्लान मेरी समझ में आ रहा है तुमने और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने मिलकर ये डबल चोरी का प्लान बनाया था तुम राका के घर में चोरी करोगे उसकी तिजोरी से जेवरात निकालकर अपने दोस्त के हवाले करोगे तो उसके बाद तुम्हारा दोस्त हिंदुस्तान से हमेशा के लिए फरार हो जाएगा तुम यहां इस दफ्तर में एक मामूली सी चोरी करते हुए पकड़े जाओगे ज्यादा तुम्हें साल 1.5 साल की सजा लगेगी और उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त राका की दौलत से ऐश करो तुमने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की तुम्हारे दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया

0: ये खून कर दिया और यहाँ से भाग गया।
1: ये झूठ है,
0: ये सच है।
2: मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता।
0: तुम्हारे दोस्त ने ऐसा ही किया है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी माशूका को लेकर यहाँ से फरार हो गया है। तुम्हारे हिस्से में आई है जेल की सलाखें और फांसी का फंदा, सिर्फ फांसी का फंदा। राजेश,
2: मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता।
0: राजेश, डोंट बी एन इडियट, नामुमकिन कोशिश मत करो। राजेश, जिद मत करो, तुम यहां से भाग नहीं सकते।
3: जब तक मैं अमर को मौत की नींद नहीं सुला दूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे। इंस्पेक्टर
0: ऑफिसर, डाउन द स्टेप, गेट डाउन द ब्लडी स्टेप।
4: इंस्पेक्टर खान को चकमा देकर राजेश गुस्से से भरा सीधा अमर के पास पहुंचा।
3: मुझे जिंदा देखकर ताजुब हो रहा है ना?
5: क्या बात कर रहा है यार, जब तक दुनिया जिंदा है भगवान तुझे जिंदा रखे। तेरी जिंदगी पे ताजुब कैसा?
3: ये सब शीला को सुनाने के लिए कह रहा है।
5: क्या पता है, तू नशे में तो नहीं है?
3: नशा तो अब उतरेगा। दोस्ती का, प्यार का, इंसानियत का।
6: क्या हो गया है तुम्हें राजेश?
3: यह आदमी मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर यहाँ गया था।
5: फांसी?
3: हाँ, फांसी। तू तो यही समझता होगा ना कि कानून ने मेरे लिए अभी तक सजाए मौत का ऐलान भी कर दिया होगा।
6: सजाए मौत?
3: एक खून हुआ है शीला, जिसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर ठोसा गया है।
5: कत्ल? किसका कत्ल?
3: अपने आप से पूछ।
5: नहीं राजेश, मैंने किसी का खून नहीं किया।
3: तो फिर वो लाश कहां से आ गई? बोल, खून तूने किया और उसके छींटे मेरे दामन पर रंग दिए ताकि मैं फांसी के तख्ते में चढ़ जाऊं। तू सारी दौलत के साथ शीला को अपनाकर जिंदगी भर आयश करता रहे।
5: राजेश
3: कमीने, गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी और खुशियों के 1.5 साल तो वैसे भी कुर्बान कर चुका था। दौलत चाहिए थी ना, एक बार मुंह से कैसे तू देखता? शीला का हाथ चाहिए था तो मैं तेरी दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करके खुद अलग हो गया होता।
5: बकवास बंद करना ही तो मेरा हाथ उठ जाएगा।
3: उठा के देख, सोचता क्या है?
5: मर्द का बच्चा है तो ये रिवॉल्वर फेंक कर बात कर।
4: और फिर जब राजेश को पता चला कि राका का असल कातिल कौन है तो उसे अमर के साथ अपने सलूक पर नदामत हुई।
2: अमर, मैंने तेरी दोस्ती को गाली दी है, तेरा दिल बहुत दुखाया है।
5: हाँ यार, दिल तो तूने वाकई दुखाया।
2: ले अमर, मार दे मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।
5: दुनिया में एक ही तो दोस्त मिला है, तुझे मार दूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा?
2: अमर,
4: राजेश और अमर के दरमियान गलतफहमियां दूर हो गईं और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त जंग। एक तरफ थे राजेश और अमर, दो गहरे दोस्त, और दूसरी तरफ विक्रम, ज्वाला और उनके खोखार साथी।

मैंने कहा था ना साथ में मर के दिखाओ, अब वो वक्त आ गया है। पहले तुम, क्योंकि तुमने हमको धोखा दिया।

0: वाह, क्या दोस्ती है, क्या दोस्त के लिए कुर्बानी का जज्बा है।
1: नहीं अमर,

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामेईन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कहकशां, जिसमें फिल्म कुर्बानी की कहानी और नगमे पेश किए गए थे। सामेईन, 4 बज चुके हैं और अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

0: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं
0: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
1: वो है कौन
2: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
0: नाम

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामईन, अभी आप सुन रहे थे चंद फिल्मी नगमे। आपसे कुछ देर बाद 4:50 पर खबरें नशर होंगी। मीडियम वेव 1071 KHz, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DD फ्रिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज वियतनाम में जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से इन दोनों मुल्कों के साथ भारत के राबतों के दायरे में मजीद वसअत आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे में कलीदी फौजी इश्तराक को फ़रोग देने, दिफाई सनदी साझेदारी को मुस्तकम बनाने और भारत बहरुलकल खत्े में बहरी तालमेल को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असम्बली में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं। ये 6 रोज़ा तकरीब आज जिनेवा में शुरू हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस साल का मौजू आलमी सेहत की असरन व तश्कील है, एक मुश्तरका जिम्मेदारी, आलमी सतह पर सेहत से मुतालिक चैलेंजों को दूर करने के इज्तिमाई अमल की अहमियत को उजागर करता है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में उस वक्त तक एक बार फिर इजाफा हो गया जब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक वाशिंगटन की शरायत मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताज़ा वार्निंग जारी कर दी। मगरबी एशिया में महीनों से जारी बेचैनी के दौरान ईरान के यूरेनियम ज़खीरे, पाबंदियों में नरमी, जंग में हुए नुकसान की भरपाई जैसे मामलात पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो समझौते को मुमकिन बनाने के लिए तेज़ी से काम करें क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई। मालूम है कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक सामने से आने वाली एक गाड़ी से टकरा गया। इस गाड़ी में 2 खवातीन समेत 10 अफराद सवार कर रहे थे। यह हादसा सदर मकाम से कोई 40 किलोमीटर पीलीभीत बस्ती शाहरा पर आदिलपुर गांव के नज़दीक पेश आया। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल में सनराइजर हैदराबाद फिलहाल 12 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे मकाम पर है। उसने अब तक 7 मैचों में जीत हासिल की और प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूत दावेदार है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वह नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दोतरफा तजारत दुगना करने से इत्तेफाक किया है। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के भरका न्यूक्लियाई मरकज़ को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह दिफाई और भारत बहरुलकैल राबतों को फ़रोग देने के लिए वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में शुरू होने वाली 79वीं आलमी सेहत असम्बली में इंसान सेहत से मुतालिक आलमी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।
1: सामईन अभी आप सुन रहे थे खबरें, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। दूसरी मजलिस की हमारी नशरियात अब ख़त्म होती है। 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। नशरियात में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ड सर्विस तिंदी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समात फरमाओ सराई की प्रोग्राम झूक माही दी।

0: कुछ पेज अपनी बोली मुल्तानी सराइकी है, तो मैं उन्होंने को प्रेरणा गिने के मेरा भी बहुत दिल है कि मैं सराइकी वास्ते कुछ करा। हुण हिंदे एक होर गल दसे ना, मैं तक मैं कॉलेज स्कूल में ना मेकू स्टेज करा का शौक है, मैं बहुत स्टेज करे ना, हम नाटक डिबेट डेक्लावेशन पोएम रेसीटेशन कविता पाठ जो भी होंगे हिस्टोनिक्स जिन्हें भी एक्टिविटीज़ होंगे ना स्टेज दियाँ मैं सारिया करे ना। हम ये मेरे भांजे को पता है, मेरे भांजे का नाम है नीलेश बजाय, तो बैठ के जो असा डिस्कस करेंदे आसे कि नहीं यार सराइकी वास्ते मैं भी कुछ करने, तो हुक पता है कि मैं स्टेज करेंदा आया, मैं एक्टिंग करन दा भी शौक है, मेकू तो मेकू बोलन दा बड़ा शौक है। हुने मेकू सलाह दिती कि मामू तुसा ना वीडियो बनाने शुरू करो सराइकी विच, पेज है पोस्टा आंदे हुंदे ते वीडियो भी आंदे चंगी गल है, पर तुसा अपना एक पेज बनाओ, एक यूट्यूब चैनल बनाओ सराइकी, उत्ते शॉर्ट फिल्मा बनाओ ते उह पावनियां शुरू करो। सराइकी को फायदा हो सी और वाकई मैं हुंदा भी शुक्रिया अदा करेना नीलेश बजाज दा कि हुने मैनू ए दसी, ते इवें जाके साडा चैनल शुरू थिया ते पेज शुरू थिया।
1: अजकल घर घर चाहती है तुहाडी वीडियो खूब देते हैं लोग
0: जी, बड़ी मेहरबानी है। मतलब मैं तो ये दसना कि घर घर चाहते हैं, सिर्फ इंडिया च ही कहनी देखिया वेंदियां साडियां फिल्मां, साडियां फिल्मां आस्ट्रेलिया यूके यूएस मतलब दुबई पाकिस्तान हर पासे देखिया वेंदियां जी, साडे कोल जिहड़े ना आंकड़े आंदे ने।
1: अच्छा संजीव जी, तुहाडी पहली फिल्म केड़ी हाई ते कड्डण आई है?
0: मेरी पहली फिल्म हाई ए बेचारा कद्दू दा मारा, ये अज तो 4 साल पहला आई है जी, तो वह मेरे को डिलीट करनी पैगी क्योंकि स्टार्टिंग में जो असा शुरू की ना फिल्मा बनानिया, मैं कहानियां लिखता गिंदा हम, हूकू डायलॉग भी बना गिंदे हूँ, स्क्रीन प्ले सारा कुछ कर गिंदा हम, पर जो टैक्नीकल एस्पैक्ट होंगे ना, बहुत सारे टैक्नीकल एस्पैक्ट होंगे फिल्म मेकिंग दे, फिल्म मेकिंग मैंने को कहना आँदी है भी बस, हाँ एक मोबाइल कैमरा सामने रख दिता असा सामने बैठे बोल अपने डायलॉग बोले खत्म, दैट्स ऑल। हुंदे विच ना कोई साउंड इफेक्ट ना कोई ट्रांजिशन होंगे, ये टैक्नीकल एस्पैक्ट हैं, लाइटिंग का भी कहना पता है कि लाइट किड़े पासों आवे किमें आवे माइक किमें सैटअप करने, बहुत सारी चीज़ा होंगे ना ही करके मेकू जी अपन शुरुआती 5-7 फिल्म हैं वो डिलीट करनिया पी, पर साड़ी जी पहली फिल्म आई वो इई आई ए बेचारा कद्दू का मारा।
1: बहुत अच्छा जी।
0: हाँ जी,
1: थोड़ा परिवार ही काम भी थोड़ा कितने सहयोग करें,
0: तुसा साडियां फिल्मां देखदे वे?
1: हाँ जी बिल्कुल देखदा जी,
0: तो बस फिर यही जवाब तो मैं कहना जिन्हें भी सराइकी देखते हैं है ना फिल्मां देखते हैं सारे को हो सी कि साडा पूरा परिवार जड़ा है वो मेरा सहयोग ही कहनी करेंदा, मतलब सारे दे सारे सराइकी को समर्पित हैं। मेरी धी है 10वीं च पढ़ती है, मेरा पुत्र 7वीं च पढ़ दे, कमाल दी गल है दोनों बहुत सोहनी सराइकी बुलेंदे ने, तो साड़िया सराइकी फिल्मों काम भी करेंगे, तो परिवार का पूरा सहयोग है। मेरे मम्मी जी 70+ हैं तो वह भी साड़िया फिल्मों चाहते हैं जी,
1: वो तो साढ़े देर आते हैं खैर।
0: हाँ जी,
1: एक फिल्म बनावनी तुहाड़ा कितना खर्चा आता है, वो क्या फिल्म बनावन नाल तुहाड़ी कुछ कमाई भी थींदी है?
0: नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो सब तो वड्डी जिहड़ी प्रेरणा हुंदी है ना, तुसीं प्रेरणा पुछा ही ना, मैं हाँ ये गल बिल्कुल ठीक है कि सब तो वड्डी प्रेरणा पैसा हुंदी है। चलो मैं एक इवें कहना कि जिहड़ी हिंदी भाषा है ना वह भारत में सब तो ज़्यादा बोली तो समझी वेंदी है ना
1: जी। हाँ,
0: दूजे नंबर ते मेरे को लगता पंजाबी है जिहड़ी समझी तो बोली वेंदी है, तो सराइकी की जे उन्हां नाल तुलना की जाए तो सराइकी की ऑडियंस मेरे को लगता हिंदी पंजाबी के मुकाबले शायद 1% भी कहना हो सी, तो जे पैसे वास्ते असं फिल्मा बनानी होंदिया ना तो असं सराइकी ना बना के हिंदी या पंजाबी बनाते। साडा सराइकी फिल्मा बनावन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सराइकी को वधावन का है, सराइकी को पुनर्स्थापित करना है। हाँ, हिंदी च कोई शक है नहीं कि साकू पैसे आते हैं, मैं ही गल तो इनकार कह नहीं करेंदा कि साकू कमाई होंगी, साडा एक इनकम सोर्स है सराइकी फिल्मा, पर जिनी साड़ी लागत आती है, लागत इन द सेंस क्योंकि सारे काम असा खुद करें, कहानी आप लिखी हुंदा, स्क्रीन प्ले आप लिखा, डायलॉग आप लिखे, ठीक है डायरेक्शन आप की, एडिटिंग भी आप की, मिकसिंग साउंड इफेक्ट सारा कुछ आप किया, करके साड़ी जी लागत है वह पैसों से तो इन्नी नहीं आती, पर जोड़ा टाइम है ना, जो असी फिल्म बनाने एक फिल्म को पूरा तैयार करते 2 दिन या 2.5 दिन लग पेंदे, वो 2-2.5 दिन जोड़ा मेरा मेन काम है जोड़ा मेरा इनकम सोर्स है वह मिस होंगे, तो क्या वह लागत हिंदे गिनी वैसी? तो जे आप लागत को हिंदे गिनू बराबर करूँ तो साड़ी जिनी लागत आती है ना उन्नी कमाई कहनी आती, क्योंकि सराइकी तो दर्शक बहुत घट हैं, तो साकू तो पैसे तो व्यू के हिसाब न मिलने ना, व्यू के हिसाब न नहीं जिनी एड आसी, हम जिन्हें ज्यादा व्यू आसन उन्ने ज्यादा बारी एड आसी ਹੈ ਨਾ, ਵਿਊ ਘੱਟ

रात मैं उड़ीका उआ रस दी भरी हई, रात मैं उड़ीका उआ

रखी जाती है ताकि वध तो वध लोग इस विच आ सकन। इस साल इस दिन का जड़ा थीम सिगा विशा सिगा ओ ए सी कि अजायब घरां दे विच एक विभाजित दुनिया नू एक जुट कर देने, यानी जड़ी वख वख हो गई है दुनिया उस नू कट्ठे लेके आना। कोई भी अजायब घर साड़ी सांस्कृतिक विरासत ते आपसी समझ नू वधाउंदे ने, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे भी ने। अंतरराष्ट्रीय अजायब घरां दे बारे दे विच असी जे गल करिए तां बहुत ज़्यादा इहदे विच आपां देख सकते हैं, और कई जगह है जिसनों असी जिसदे विच पुरानियां चीज़ां नू असी संजो के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उसदे कई तरह के चीज़ां दे ट्रीटमेंट करके ताकि वह आने वाले समय दे विच सही सलामत रहन। इस बारे जिहड़े ने ओ काम करदे आ, इह काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी हुंदे ने, कई बार इतिहास समझ तो बाहर हुंदा है। सो इना दे विच चीज़ां नू रखना बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा एक चुनौती भरिया काम हुंदा है, क्योंकि किसी भी प्राचीन इतिहास नू जानना, किसी दे बारे सही राय अपनी लिख के देना, ये बड़ी ही मुश्किल काम किया जा सकता है। सो इस दिहाड़े नू मनाउण दा मुख मंतव यही हुंदा है कि असी जिहड़ा अपना पुराना प्राचीन साडा इतिहास है, साडी संस्कृति, कई धरोहरां, कई जिहड़े ने महापुरख होए ने उहनां दीआं चीज़ां या उहनां दे किसे साडे योध्यां दे हथियार जिहड़े ने ओह असी संजो के रखिए तां जो आन वाली पीढ़ी जिहड़ी है ओह साडे इतिहास नू समझ सके, साडे उहनां इतिहास दे विच जिहड़े भी साडी दिमागी जां विचार जिहड़े ने उहदे उहनू आपां जाण सकीए।

0: हां जी सरपंच जी, देखो अपना एक नाटक है लड़ीवार, होया देश पराया।
1: होया देश पराया,
0: हां हां, एदी सत्तवी किश्त यह आप साझी कर दे।
1: सुनाओ जी। फिर
0: पेशे अवतार सिंह बिलिंग दे नावल ते आधारित लड़ीवार पंजाबी नाटक होया देश पराया दी सत्तवी कड़ी, रेडियो नाटक रूपांतर बखशिंदर।

0: आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। शाहिद भाई, देखिए हम अपना कृषि जगत प्रोग्राम लेकर उपस्थित हैं और अपने भाइयों को जानकारी के साथ साथ उनका मनोरंजन भी कराएंगे। और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि हमारा गोवर्धन मिशन, गोवर्धन योजना जो है हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इस योजना में जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने पशुओं का जो गोबर है उसको उसको इकट्ठा करके अपने खेतों के अपशिष्ट जो होते हैं उनको इकट्ठा करके और जो खाद बना होता है उसको इकट्ठा, सबको इकट्ठा करके जैविक खाद यानी कंपोस्ट में बदल कर गाँवों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और स्वच्छ बना सकते हैं अपना जो हमारा पर्यावरण है। बिल्कुल,
1: ये कई योजनाओं का उद्देश्य समेटे हुए है। इसमें गोबर धन जैसा कि नाम है ना, गोबर को ही धन के रूप में इंगित किया गया है। गोबर से हम पहले तो उसकी जो है कि
0: गैस बनाते हैं और उसके बाद खाद बनाते हैं,
1: खाद बनती है, इससे जो है कि गांव स्वच्छ होते हैं, ऊर्जा मिलती है और सबसे बड़ी चीज जो है इसके जरिए से गांव में एक संबल मिलता है।
0: बिल्कुल, और हम
1: आर्थिक

0: दिया
1: और
0: जाए।
1: हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ती
0: जी
1: है।
0: हाँ,
1: तो ये तो थी हमारी गोबर धन योजना के बारे में बातें। और अब आपको एक जानकारी दिलवाते हैं कि खरीफ फसलों में कम लागत में अच्छा उत्पादन कैसे करें। डॉक्टर वाई के तिवारी से बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार। आप फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसमें अच्छा बीज खरीदते हैं और खेत में अच्छी से कृषि क्रियाएं करते हैं। उसके साथ साथ आप उर्वरक हैं, आप उसमें दवाएं हैं, सभी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन तो आपको मिलता है लेकिन आपकी लागत बढ़ जाती है। ये लागत कैसे कम की जाए और आपका उत्पादन भी अच्छा मिले, इस पर आज हम बात करेंगे। और विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके तिवारी जी, जो कि संयुक्त महाप्रबंधक रह चुके हैं क्रभको में। तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: तो डॉक्टर साहब,
3: धन्यवाद।
2: हमारे किसान भाई अब खरीफ में बिजाई की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बात सही है कि किसानों की लागत बढ़ती है जब भी कोई भी फसल लगाते हैं, तो वो कैसे कम की जाए और उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिले।
3: कि कैसे हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें। अब आप देख ही रहे हैं इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद बीज का दाम बढ़ता जा, जो बीज है उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है। और जैसा इस समय वैश्विक संकट चल रहा है, खाद की भी उपलब्धता भी तो वैसे प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने सभी किसान भाइयों से, सभी लोगों से अनुरोध किया है कि इस समय की स्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाई फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, खाद का उपयोग कम करें और जैविक खेती या परंपरागत खेती भी कुछ करें। तो हम इसमें सलाह देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जैसे आपको कुछ भी बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये ब्लड का टेस्ट करा लो। ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं, इस जो धरती माता है इनसे फसलें उगाते जा रहे हैं, लेकिन धरती माता की स्थिति क्या है, कितना खुराक को पौधे को उपलब्ध करा पाएंगी, कितना नहीं करा पाएंगी, क्या क्या स्थिति है हमारे जमीन में पोषक तत्वों की, उसका जरूर किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं और उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में कितना इस समय पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है, कितना नाइट्रोजन उपलब्ध है, कितना फास्फोरस उपलब्ध है, कितना पोटास उपलब्ध है, और जो मुख्य गौण तत्व तो है जिंक है, आयरन है, उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर मिट्टी की जांच कराए बिना ही अंदाजे से जब हमारे किसान भाई डालते हैं उर्वरक, तो उससे क्या होता है कि एक तो मिट्टी में जा करके ये जो उर्वरक होते हैं मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके जैविक जो मिट्टी का कीटाणु है उनको नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही हमारे किसान भाइयों की लागत भी बढ़ जाती है। तो हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, अभी मई जून 2 महीना है और इस समय हमारे किसान भाई लोगों का खेत खाली है, और किसान भाई अपनी मिट्टी का जरूर से जांच कराएं और मिट्टी का नमूना लेकर के उनके जिले में मृदा परीक्षण केंद्र होता है कृषि विभाग का, वहां भेज दें, या जो हमारी क्रिप्को संस्था है नोएडा में ऑफिस है वहां भी वो किसान भाई अपना कोरियर से किसान सेवा केंद्र पर भेज सकते हैं और वहाँ निःशुल्क उनकी जांच हो करके उनको मेल के माध्यम से मृदा की रिपोर्ट मिल जाएगी।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, आपने जिस तरीके से मृदा परीक्षण की बात की, तो मृदा परीक्षण कराने के लिए किसान भाई जो सैंपल लेते हैं,
3: जी
2: सैंपल लेते समय क्या सावधानी रखें?
3: किसान भाई हमारे मिट्टी का नमूना लेने के लिए क्या सावधानी रखें, ये सही बात है कि हमारे किसान भाई ऐसा न करें कि जो होता है ना खेत की चौहद्दी मेढ़ मेढ़ के पास से ही एक जगह से मिट्टी निकाल करके दे दिए तो उससे पूरा खेत का, अब जितना बड़ा खेत है उसकी सही एनालिसिस नहीं हो पाएगी, सही जांच नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ये है कि किसान भाई हमारे जैसा खेत हो उस खेत के हिसाब से जो मेड़ होती है उनकी, उस मेड़ से लगभग अपना 3-4 फुट छोड़ करके और खेत में लगभग ऐसा करें कि अगर छोटा खेत है तो 5-6 जगह और बड़ा खेत है तो 8-10 जगह से अगर गन्ने की खेती करना है तो 9 इंच तक का, और जनरल खेती करना है धान गेहूं का तो 6 इंच तक की मिट्टी को

0: हम आपको बताएं कि ये अपने जिले में मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाएं, तो वहाँ पे जांच होने के बाद इनको किसान भाई को नमूने से ये मिल जाएगा कि हमारे खेत में कितना पोषक तत्व है और फसल के लिए उनको कितना खाद जद डालना है। अब हमारे जब किसान भाई करेंगे तो उस मिट्टी के नमूने के जांच में सबसे बड़ी बात ये रहती है, हमारे किसान भाई अपनी सुविधा के लिए केवल यूरिया डाई पोटास तो देख लेते हैं, लेकिन उसमें जो गोबर की खाद की संस्तुति की जाती है उसको नहीं डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि जो फार्मर यार्ड मैन्योर का जो रिकमेंडेशन किया जाता है सॉइल लैब द्वारा, उसको जरूर प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि अभी जो हमारे खेत में कार्बन की स्थिति दिन पर दिन कम होती जा रही है, और कार्बन कंटेंट कम होने से क्या होता है, कार्बन जो है ये हमारे खेत के जीवाणुओं को एक तरह से पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये जो कार्बन है उन जीवाणुओं का, उनके लिए ये पोषक तत्व का काम करता है कार्बन। और कार्बन सही मात्रा में उपलब्ध होने से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में हवा की उपलब्धता सही रहती है, हवा की उपलब्धता सही होने से हमारे जो खेती होती है उसमें मृदा जनित रोग नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें हवा का संचार प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है। और किसान भाई सिंचाई करते हैं तो उसमें मिट्टी में जल रुका रहता है, जिससे पौधों को काफी समय तक नमी प्राप्त होती है। जो हम पोषक तत्व डालते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं, तो घुल करके लीचिंग मतलब बह करके जमीन के सतह से नीचे नहीं जाता है, वो मृदा में उपलब्ध होता है, जिससे पौधों को सही मात्रा में उर्वरक मिल पाता है। तो जो हम इतना महंगा उर्वरक डालते हैं वो हमारी जमीन में नुकसान न हो करके पौधों को उपलब्ध होता है, तो इससे हमारी उत्पादन लागत कम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्पादन लागत कम होती है, तो हमारे किसान भाई जो रासायनिक उर्वरक हैं, जिनके वैज्ञानिक कभी कभी सुझाव देते हैं, और जो लागत को कम कराने के लिए दूसरे भी माध्यम हैं, जैसे जैविक खाद हो गई, आपके बायोफर्टिलाइजर हो गए, आपकी हरी खाद हो गई, इनका भी तो प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे हम बताए आपको कि मृदा परीक्षण में जो ये खाद की संस्तुत की जाती है, उसके अलावा भी धान में बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया हरी खाद का, के लिए सनई ढांचा जो होता है अभी इसको छिटक करके खेत में बो दें, और जब ये लगभग 35 से और 45-50 दिन की हो जाएगी तो इसको खेत में अपना ट्रैक्टर चला करके दबा देंगे और पानी भर देंगे, तो उससे वो क्या होगा कि हरी खाद खेत में सड़ करके खाद हो जाएगी, और ये हमारी मिट्टी के लिए एक समझिए कि बहुत ही अच्छा काम करेगी, वरदान हो जाएगा, एक जैविक खाद हरी खाद अपना पौधे को उपलब्ध होगी और हमारे मिट्टी की स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और जो हम इसमें उर्वरक डालेंगे आगे चल करके वो भी पौधे अच्छी तरह से ले पाएंगे। और जब हम उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो चूंकि हम हरी खाद का प्रयोग कर लिए हैं, तो हम जो रासायनिक उर्वरक है उसकी मात्रा को हम 15-20% तक कम कर सकते हैं, तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम बीज का नर्सरी में डालते हैं तो आजकल बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है, एजोटोबैक्टर है, इससे एजोटोबैक्टर क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उनको उपलब्ध कराता है पौधों को। इसी तरह से PSB है, फास्फेट सालिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हम मिट्टी में इतना महंगा DAP खाद डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो पौधे केवल अपनी जड़ की एरिया के पास जो रहता है उसी का उपयोग कर पाते हैं। तो हम थोड़ी मात्रा में बीज को हम बेहन डालते हैं, तो इससे अगर हम एजोटोबैक्टर से, PSB से या पोटास सालविजाइंग बैक्टीरिया से और जिंक सालविजाइंग बैक्टीरिया से, इनके हम बायो फर्टिलाइजर से को जो बीज कम मात्रा में होता है इसको शोधित कर दें और इसको बोएं, तो इस बीज जब शोधित होगा तो ये जीवाणु उस बीज के परत पे लगे रहेंगे, और ये जब जमीन में की रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय भी जो नर्सरी होती है उसको इसका बायो फर्टिलाइजर का घोल बना लेंगे, उसकी जड़ को अपना 15 मिनट के लिए डुबो देंगे उस घोल में, उसके बाद रोपाई करेंगे, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये जमीन में कार्यशील हो जाएंगे, और जमीन से जो हमारे उर्वरक पोषक तत्व उपलब्ध है लेकिन पौधे नहीं ले पा रहे हैं तो उनको घुलनशील दशा में बना करके और पौधे को उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे किसान भाई जब रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में भी डालेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और ये जो हमारे

0: जैविक कीटाणु हैं ये अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो हमारे जो पौधे होंगे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी और इसमें कीट पतंगे भी कम लगेंगे। ऐसा देखा गया कि जो हमारे किसान भाई आजकल क्या करते हैं कि पौधे में थोड़ा सा भी इनको लगता है कि पौधा पूरा हरा नहीं दिखाई दे रहा है तो ले जाके यूरिया छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे में बढ़वार तो अच्छी हो जाती है लेकिन पौधा में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, पौधा कोमल हो जाता है, सक्सलेंट हो जाता है और उससे हमारे कीट पतंगे और बीमारियां अधिक लगने लगती हैं। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो यूरिया का बहुत ही अधिक मात्रा न प्रयोग करें। यूरिया की मात्रा जितना मृदा परीक्षण में दिया गया है उतना ही करें या उससे कम करें और उसके जगह पे 20-25% की मात्रा इस जैविक खाद से, हरी खाद से और गोबर की खाद से इसको 25 से लेकर के 40% तक इसको सब्स्टिट्यूट करें।
1: जी डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने विस्तार से बताया। और बहुत से हमारे किसान भाई खरीफ में दलहनी फसलें भी बोते हैं, तो दलहनी फसलों में तो उनकी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं, तो क्या उनके बीजों को भी उपचार प्रचारित करके बोना चाहिए?
0: देखिए उनके जड़ों में तो पाए जाते हैं, अगर हमारे किसान भाई कर देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो PSB है, फास्फेट सालिजाइंग बैक्टीरिया है, वो तो जमीन से हमारे जो वैज्ञानिक संस्तुति करते हैं वो दलहनी फसलों के लिए 10:40 के रेशियो में करते हैं कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस उपलब्ध कराएं, तो वो हमारे किसान भाई कर देंगे जब उनका बीज शोधन PSB से, फास्फेट सालिजाइंग बैक्टीरिया से, तो वो हमारे किसान भाई अगर उसकी मात्रा कम कर देंगे तो ये हमारे PSB बैक्टीरिया काम करेगा और उसको उपलब्ध कराएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया है, निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ फसलों में कम लागत में अच्छा उत्पादन कैसे लें, इस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर YK तिवारी और आपसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: जी बिल्कुल, और देखिए जैसे कि मौसम में बदलाव बहुत ही तेज़ी से आया है, 41-42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और हमारे किसान भाई उनका तो काम देखिए 24 घंटे का होता है, यानी कि रात दिन वो खेतों पर ही होते हैं और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी मौसम हो, उन्हें तो सुबह 5 बजे खेत पे जाना ही है और दोपहर में भी वो लोग काम करते रहते हैं। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, पानी की व्यवस्था अपने पास जरूर बनाए रखें
2: और कोशिश ये करनी चाहिए कि सीधे जो है ना हवा और धूप के संपर्क में सीधे ना, जब जब तेज हवा चलती है ना गर्म वाली
3: जी,
2: उससे बचे।
3: बिल्कुल, कहते हैं लू लग जाती है तो फिर उल्टी दस्त का हो जाता है, परेशान हो जाते हैं और बुखार बन जाता है, तो ऐसी अगर हालत हो जाती है हमारे किसान भाइयों की तो काम करने में फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। तो लू ना लगे इसलिए पानी का प्रबंध पूरा रखें और थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड, कोई भी लिक्विड, पानी ना, कोई भी लिक्विड जो आप पी सकते हैं, छाछ भी है, दही भी है, दूध भी है और वो क्या नाम, शरबत भी है, तो आप कुछ भी अगर लेना चाहते हैं, नींबू पानी है वो लेते रहें।
2: जो मौसमी सब्जियां हैं, फल हैं ना, उनका भी इस्तेमाल करते रहें, तो ये क्या है कि जो ताकत तो देते ही हैं, जल और मिनरल्स की जो एक प्रचुर मात्रा है वो शरीर में बनी रहती है।
3: बिल्कुल, खाने में अगर आप खाते रहते हैं तो और पीते भी रहते हैं तो आपको कमजोरी महसूस नहीं देगी और लू का भी प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपने पशुओं को भी बचाना है गर्म हवाओं से और गर्मी से, तो इसलिए सुबह सूरज निकलने से पहले थोड़ी देर उनको बाहर बांधें लेकिन उसके बाद अंदर कर दें और फिर शाम को ही बाहर निकालें, क्योंकि बहुत तेज धूप है हमारे पशुओं को इस चीज़ से
2: लगती है और हवा में गर्माहट आने लगती है ना, तो बचाना चाहिए।
3: जी हाँ, कुछ मंडियों के भाव भी हमारे पास आए हैं, गेहूं का जो इस वक्त हमारा रेट चल रहा है वो हरियाणा की मंडी में है 2590 रुपये प्रति कुंटल है और सरसों का जो भाव है वो 6300 रुपये प्रति कुंटल है, धान 4600 रुपये प्रति कुंटल है और अरहर की दाल 11832 रुपये प्रति कुंटल का रेट चल रहा है। और गुड़ का भाव है 4,440 रुपए प्रति क्विंटल और चीनी है 4,400 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये थी तो मंडी के भाव।
2: जी अब वंदना बहन, अपने बहनों भाइयों का हम जो है

अभी हमारे भाई सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना की आवाज में ये उपदेश। और इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोतो, लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

0: श्रोताओं, गजलों का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और DTC बस से अपने कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। NEET UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में 2 सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत मेट्रो मंडे पहल शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो प्रत्येक सोमवार निजी वाहनों के स्थान पर मेट्रो को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 24 अतिरिक्त ट्रेन चला रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि ये निर्णय मौजूदा परिस्थितियों में ऊर्जा दक्षता, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम DTC की बस से अपने कार्यालय पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का

0: आधुनिक नेटवर्क, स्वच्छ स्टेशन, समयबद्ध सेवा और सहज कनेक्टिविटी वास्तव में विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें आरामदायक, सुरक्षित और वातानुकूलित हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जहां संभव हो मेट्रो, डीटीसी बसों और कार पूलिंग को अपनाकर मेरा भारत मेरा योगदान जन भागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
1: दिल्ली के अपने सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा।
0: इस बीच दिल्ली पुलिस ने सरकारी वाहनों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने और ईंधन की खपत कम करने के उपायों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश पुलिस आयुक्त कार्यालय ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और ईंधन की खपत में कमी लाने की अपील को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। इसके अनुसार दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों और कार्यालयों को अनावश्यक आवागमन रोकने, उपलब्ध वाहनों का अधिकतम उपयोग करने और ईंधन के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है ताकि ईंधन संरक्षण और अनावश्यक व्यय में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास में सार्थक योगदान दिया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल द्वारका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, सीवर ओवरफ्लो और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगा। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण, चौपालों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और पार्कों का सौंदर्यीकरण तथा पर्यावरण अनुकूल विकास शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज सुबह दीपक सिंगला और अन्य हवाला संचालकों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन के हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। इसके अलावा दीपक सिंगला ने अपने चाचा और भाई के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 150 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। निदेशालय ने बताया कि ये पैसा सिंगापुर स्थित नियंत्रित फर्मों को भेजा गया था। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है।
2: आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के यहाँ करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी, बैंक लोन से धोखाधड़ी और आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में जो काला धन कमाया है उससे जायदाद खरीदना, वो एक मामला सामने आया है जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक कर आई थी हम समाज को बदलने आए हैं, क्या इन्होंने बदला कि रिश्वत खोरी से शुरू करते करते अब टैक्स चोरी भी करेंगे, काले धन से बेनामी जायदादें भी खरीदेंगे और बैंक लोन की धोखाधड़ी भी करेंगे।
0: नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। सीबीआई ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। ये संस्थान विद्यार्थियों को नीट स्नातक परीक्षा की कोचिंग देता है। मोंटेगांवकर को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अभिभावक पर भी अपनी बेटी के लिए लीक हुए प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। सीबीआई की एक टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए कल एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की

0: राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की एक आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज शशि गार्डन इलाके से मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुछ नकद धनराशि और 294 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग जोन में धूल नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने और लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर स्वच्छता में सुधार के लिए 15 दिन का धूल मुक्त सड़क अभियान शुरू किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: यह अभियान सड़कों को नो डस्ट स्थिति में बनाए रखने पर केंद्रित है। इस सफाई अभियान में MRS मशीनें, वाटर स्प्रिंकल, पानी के टैंकर, ऑटो टिपर और साथ ही 40 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अभियान के अंतर्गत प्रमुख सड़क मार्गों की नियमित निगरानी, कचरे का त्वरित उठान और निरंतर रखरखाव पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वहीं करोलबाग जोन के उपायुक्त दिलखुश मीणा ने बताया कि अभियान सख्त फील्ड मॉनिटरिंग और समर्पित सफाई व्यवस्था के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत साफ सुथरी सड़कें, प्रभावी धूल नियंत्रण और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ करिश्मा राय।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय को नामित किया है। बोर्ड के सदस्य के लिए नांगलोई जाट से विधायक मनोज कुमार शौकीन और घोंडा से विधायक अजय कुमार महावर को नामित किया गया है। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त आतंकरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित कार्रवाई और निर्बाध समन्वय का शानदार प्रदर्शन किया गया।
2: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये मॉक ड्रिल उप महानिरीक्षक और विमानन सुरक्षा समूह के मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी तथा CISF के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया। CISF, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बम निरोधक दस्ते तथा अन्य एजेंसियों के कर्मियों ने इस समन्वित अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाना था। प्रिया रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज एक यातायात परामर्श जारी कर बताया है कि कल दोपहर 12 बजे से शाम के 3 बजे तक भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने बताया कि भारत मंडपम में इस महीने के अंत में होने वाले 2 सम्मेलनों का कल अभ्यास किया जाएगा। इसके मद्देनजर पुलिस ने लोगों को रिंग रोड, राजघाट, धौलाकुआं, मोतीबाग, सराय काले खां, बीकाजी कामा प्लेस और वंदे मातरम मार्ग के साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली सचिवालय में आज सिक्किम दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेश और देशवासियों को सिक्किम दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय संत महापरिषद का वैश्विक सम्मेलन आज नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाना, सभ्यतागत एकता को आध्यात्मिक संवाद से जोड़ना और भारत में निहित साझा परंपराओं के माध्यम से भारतीय मूल्यों का पुनरुद्धार करना था। आयुष मंत्रालय ने आज अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में लोगों के लिए गर्मी से होने वाले तनाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: परामर्श में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय में सीधे धूप में आने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा मौसमी फलों और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर जोर दिया गया है। इस सलाह में नागरिकों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के संकेतों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, शरीर का अत्यधिक तापमान, निर्जलीकरण, दौरे पड़ना और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गंभीर मामलों में तुरंत आपातकालीन दिन हेल्पलाइन नंबर 108 और 102 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। परामर्श में लोक स्थिति से निपटने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, योग

0: योग यूनानी और होम्योपैथी सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के पारंपरिक स्वास्थ्य और निवारक उपायों को भी शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
1: इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में इस सप्ताह लू का येलो अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस सप्ताह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और डीटीसी बस से अपने कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में दो सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया, जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: पापा, लाइए 3,000।
8: क्यों भाई?
7: मेरी पॉकेट मनी।
8: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
7: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
8: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
7: अपना मोबाइल लाओ।
8: ले ले।
9: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
10: हर लेन देन अब है आसान।
11: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। और कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं मन से मन की, और इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं मन फिल्म से लिए हुए इस गीत के साथ।

मन, जी हाँ श्रोताओ, फिल्म का नाम भी यही है और आज हम इस कार्यक्रम में बात भी मन की ही कर रहे हैं। मन जो कभी हंसता है तो कभी हंसाता भी है, कभी मायूस होता है तो कभी मयूरा सा नाच भी उठता है। तो इंद्रधनुषी रंगों की तरह, सरगम के सुरों की तरह होता है ना मन? बिल्कुल होता है, बस जरूरत होती है इसे समझने की और मन की पुकार को सुनने की।

प्यार है तो है इस फिल्म से लिया गीत अभी आपने सुना, आवाज़ हरिहरन प्रतिभा सिंह बघेल की थी। श्रोताओं, मन पर कभी हारी तो कभी मन पर ही बलिहारी, लेकिन मन की बातें ही क्या जो ना हो प्यारी प्यारी, जो मन से प्रीत नहीं तो फिर कहाँ मिलेगा भला चैन। ये तो हिचकोले लेता है धरती से लेकर अंबर तक, मन का मीत होता ही ऐसा है।

देखिए श्रोताओं, जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आपको अपने मन का मीत मिले। वो इसलिए क्योंकि जिससे आप अपने सुख दुख बांट सकते हैं, अच्छी बुरी बातें कर सकते हैं। बहुत सारी खुशियां अगर आपको किसी दिन मिल जाए तो वो आप उससे बांट सकते हैं और ढेर सारी प्यार की बातें भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मेरी इस व्यक्ति से नहीं बनती है, इस व्यक्ति से मेरी बहुत बनती है। तो यही फ़र्क होता है मन के मीत से मिलने का, क्योंकि जब मन का मीत आपको मिल जाता है तो हर तरह की बात, हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव आप अपने मन के मीत से ही बांटते हैं, साझा करते हैं। तो श्रोताओं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़वाते हैं और आपको सुनवा देते हैं एक और गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में मीत मेरे मन के इस फिल्म से लिया गीत।

श्रोताओ, देखिए मन और मीत की क्या खूबसूरत जुगलबंदी है, जिसे हिंदी फिल्मों में बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ शब्द और सुर में पिरोया गया है। तूफानों के डर से दूर नहीं होने का वादा है, तो आगे आगे हम और प्रीत के पीछे पीछे चलने का इरादा भी है। यही है मन और मीत, मनमीत।

हम सभी जानते हैं, क्योंकि मन पर मन का विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। एक ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसी यादें जो उम्र भर के साथ का वादा दे और वादा ले, और ये वादा बस बरसों बरस, जन्मों जन्म बस निभता रहे।

और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं और आपको सुनवाते हैं दीवाना फिल्म से लिया गीत। आवाज है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: और श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गीत मालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत

0: भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से

0: ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
3: Aaj hum भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
2: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
3: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
3: मैं पिछले वर्ष

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। 10:45 खबरें नशर की जाएंगी और 9:55 पर सुनिएगा कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। 10:00 हम पेश करेंगे खुसूसी प्रोग्राम आईना। आज का मौजू है उर्दू में साइंसी अदब। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुन सकते हैं रात 10:30 से लेकर 11:30 तक। इस दौरान 11:00 सुनिएगा खबरें बड़े सगीर से। रात 11:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। कवालियों के आज के प्रोग्राम में रात 12:45 सुनिएगा मुबारक हुसैन कव्वाल और साथियों की गई कव्वालियाँ। 12:00 आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में आज सुनिएगा उस्ताद विलायत खान से सितार पर बजाया राग बिहागड़ा। सदाबहार फिल्मी नगमे आप सुन सकते हैं आखिरी शब प्रोग्राम के तहत रात 12:30। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 तक। 12:50 पर खबरें नशर होंगी और 1:00 हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में गजल सरा है पीनाज मसानी।

0: हो जाती है। तो अगर ये सब चीजें हम सावधानी रखेंगे तो हमारे के जो लू से हम बच सकेंगे या उसके दुष्प्रभाव कम हो सके। जैसे घर में आपकी चीनी ज्यादातर लोग उपलब्ध होता है, गुड़ भी उपलब्ध होता है, नमक उपलब्ध होता है, आप सिर्फ साफ पानी लीजिए एक गिलास, उसमें आप अपना एक चम्मच चीनी डालिए और उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल लीजिए, वही हाइड्रेशन का बढ़िया काम करता है। एक लीटर पानी अगर हम लें तो एक लीटर पानी में, जिसको हम ORS का घोल कहते हैं, जो कि हम दस्तों में भी देते हैं, तो एक लीटर साफ पानी में अगर हमें घर पे ORS घोल है तो एक लीटर साफ पानी में अगर ग्लूकोज है तो 4 चम्मच ग्लूकोज, नहीं तो 4 चम्मच चीनी मिला लें, आधी चम्मच नमक मिला लें, चौथाई चम्मच खाने का सोडा मिला लें, और अगर नींबू वगैरह है तो वो निचोड़ लें। ये हमारा ORS का घोल बन गया, और इसको बस पीते रहिए तो सारे शरीर के जितने इलेक्ट्रोलाइट वाटर की सारी कमी पूरी हो जाए।
1: लू से कैसे बचा जाए और उसके क्या नुकसान थे, इस मौजू पर भी आपसे मुखातिब थे डॉक्टर AK वार्ष्णेय। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेश खिदमत प्रोग्राम आईना। सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। आईना प्रोग्राम लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज के आईना प्रोग्राम का मौजू है उर्दू में साइंसी अदब, और आज इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं जनाब सिराज अजीम साहब, आप मारूफ अदीब हैं, बच्चों के हवाले से बहुत काम है आपका, जनाब ताहा नसीम साहब जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और ख़ुद पब्लिशर भी हैं, और जनाब हबीब सैफी साहब जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी PhD का मकाला मुकम्मल किया है बच्चों के अदब में साइंस की अक्कासी। तो सूरत हाल ये है कि जाहिर है कि अदब तो समाज का अक्कास कहा गया है, लेकिन जहां तक बात इसकी है कि साइंसी अक्कासी उर्दू में जरा कम देखने को मिलती है, इनकी क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं हमें अभी तक इतना साइंसी अदब मिलता जितना दूसरा अदब मौजूद है। उर्दू को सिर्फ शायर की हैसियत से, शायरी की हैसियत से ही जाना जाता है कि उर्दू जबान जो है शायरी की वजह से जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अदब का एक खास पहलू ये भी है कि वो जमाने को उसके नशेब फराज से रोशनास भी कराए। हमारे यहाँ साइंसी अदब का फुकदान है, इसकी क्या वजह है, मैं सबसे पहले सिराज अजीम साहब से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा कि सिराज साहब चूंकि आप तो लिखते रहे हैं और अदब इत्फाल सोसाइटी से भी वाबस्ता हैं, तो वजह क्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है।
2: बहुत शुक्रिया शमीन साहब। जहां तक उर्दू अदब में साइंस के ताल्लुक से हुआ यह है कि सब हम लोगों में खासतौर से उर्दू वालों के अंदर ये एक अजीब मसला है कि वो सिर्फ उर्दू पढ़ना जानते हैं, एक तो बेसिक चीज़ ये है, वो उसके साथ साथ जो दूसरे उलूम हैं उनके ऊपर उनकी नज़र नहीं जाती है, या तो ज़्यादातर जो कलमकार हैं या तो वो शायरी में मुलव्वस हैं या फिर जो है वो अफसाना निगारी नावल निगारी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब आप जो है शायरी ही करके मशहूर होंगे या ये कि अफसाने लिखकर मशहूर होंगे तभी आप उर्दू अदीब या उर्दू शायर कहलाएंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आज के वक्त की ज़रूरत है,
1: बेशक
2: जो हमारे उर्दू नोइंग पर्सन हैं, जो हमारी उर्दू नोइंग आवाम है, उसको हम क्यों नहीं बताते। अगर देखा जाए एक आम सा मकूला है कि साहब आज उर्दू जो जिंदा है वो मदारिस की वजह से जिंदा है, जब उर्दू मदारिस की वजह से जिंदा है तो मदारिस के जो बच्चे हैं क्या वो उनका हक नहीं है कि वो साइंस के बारे में जानें। क्यों नहीं हमारे यहाँ वसत पैदा होती, वजह उसकी ये है कि हमने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, हम दूसरे उलूम को पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप अपनी जो है तारीख उठा कर देखें, ख़ासतौर से अगर कहा जाए कि उर्दू अदब की या इससे रिलेटेड या अरबी की, तो क्या जो ज़माने को दुनिया को बहुत से साइंसी उलूम जो हैं वो अरेबियंस ने दिए हैं।
1: यकीनन
2: हैं, आज भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम साहब, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो मिज़ाइल मैन कहलाते हैं। APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो दूसरी कौम के बच्चे हैं वो सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनकी, लेकिन अगर नहीं जानता तो हमारे मदरसे का बच्चा नहीं जानता कि APJ अब्दुल कलाम की क्या खसूसियात थी, वो क्या क्या करते थे, उनको क्या वो एक इबादत गुजार शख्स भी थे और सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी जो चीज़ें हैं वो उर्दू आवाम तक नहीं पहुँच पाई हैं। उस पर हमारा कहीं ना कहीं हमारी कोताही
1: हमारी है, पढ़ने वाले की तो ये कोताही कह सकते हैं कि आप उसको तक चाहिए मिल नहीं रहा है, लेकिन हमारी कोताही है कि हम उस तक पहुंचा नहीं रहे हैं
2: जी।
1: ताहा नसीम साहब, आप तो चूंकि शास्त्र से भी वाबस्ता हैं और किताबें लिखते रहे हैं, तो वजह क्या है कि हम फिक्शन हमारे पास मौजूद है उर्दू में, ज़बरदस्त फिक्शन है, हर तरह का फिक्शन मौजूद है, लेकिन साइंसी फिक्शन क्यों इतना कम है।
3: देखिए, इसके लिए जो है हमारी सहाफ़त ज़िम्मेदार है और हमारे पब्लिशर्स भी ज़िम्मेदार हैं और हमारे स्कूल भी ज़िम्मेदार हैं। बच्चों का जो मिजाज बनाया जाता है वो बिल्कुल शुरू से ही बनाया जाता है।
1: यकीनन
3: आपने देखा होगा कि पहले सोशल साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट था, अब उसको भी एक साइंस का नाम दे दिया गया है, अब वो एनवायरनमेंट साइंस के नाम से पढ़ाया जाता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एनवायरनमेंट का है। हमारे यहाँ जो एक साइंस का ज़ौक नहीं पैदा हुआ है, इसके लिए जहाँ पर असातज़ा ज़िम्मेदार हैं वहीं पब्लिशर्स भी ज़िम्मेदार हैं, और वहीं पर बहुत सारे राइटर्स जो हैं हमारे, उन्होंने साइंस में लिखने की कोशिश नहीं करी। जबकि आप ये देखें कि मैंने एक किताब मेरे नज़र से गुजरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नवासे थे, उन्होंने उनका एक अपना मकतबा था कूचा चलान में, वहाँ से एक किताब कभी शाये हुई थी। उस किताब की उस ज़माने में कीमत थी दो आने, दो आने की कीमत थी उसमें, और उसके अंदर साइंस में मजामीन भी थे और कहानियां भी थी। मैं हैरत ज्यादा रह गया उसमें, मतलब जमाने में, हाँ मतलब कोई उसमें कलर,
2: वो सन
3: 48 या सन 48 की बात नहीं है, सही में 1926 की बात कर रहा हूँ तकरीबन। और उस जमाने में किताबें वो भी रंगीन टाइटल से नहीं आती थी, वो किताब में देख कर हैरत ज्यादा रह गया कि इस तरह की भी किताबें थी। एक मेरे सामने से एक मैगजीन गुजरा जो मटिया महल से शाये होता था, उसका नाम था फूल, और फूल में बाकायदा बिजली का आदमी, लोहे का आदमी, इस तरह की कहानियां, ऐसे कॉन्सेप्ट थे उनके पास। अब ये हुआ कि हमारे जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी थी कि जो हमारे पब्लिशर्स थे, हमारे पब्लिशर्स ने एक संजीदा कोशिश नहीं करी कि वो साइंस की किताबें बच्चों के सामने लाते। एक पहले से एक ट्रेंड चला आ रहा था उर्दू में कहानी का, देवर परी का,
1: मैं एग्जैक्टली उसी तरफ
3: तोता
1: हमारे यहाँ पढ़ाया तो जाता है, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, चांद सितारों की कहानी, लेकिन चांद सितारों को साइंटिफिक नहीं, चंदा को मामा बना दिया।
3: जी जी जी।
2: और बल्कि आज तो बच्चा ये पूछता है कि सर परी परी होती कहानी क्या होती। आज का बच्चा जो है सवाल करता है कि आप जो बता रहे हैं
1: ये कहाँ मिलती है,
2: ये है हकीकत है कि नहीं है।
3: अब ये अब उसको अब ना उनको देखिए, अब अंग्रेजी वालों को, उनके यहाँ जो पुरानी कहानियां जैसे नार्निया एक कहानी उनकी
2: जी,
3: तो
2: जी,
3: नार्निया में उन्होंने जादू के साथ साथ साइंस को भी शामिल कर दिया।
2: जी,
3: अगर वो सिंधबाद की कहानी दिखा रहे हैं तो सिंधबाद में वो साइंस भी दिखा रहे हैं।
2: भाई इसके सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हैरी पॉटर की है।
3: हाँ, हैरी पॉटर
1: जितनी है। पब्लिशर मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, तो क्या आपको ये लगता है कि फिक्शन की जो कहानी होती है साइंस फिक्शन की, वो कम बिकती है या उनकी फरोख्त कम है, क्या वजह?
3: असल में क्योंकि उर्दू में ना इसका मिजाज नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मैंने अपना एक नावल लिखा था कई साल पहले, और वो बल्कि उसको NCPL के माली ताबन से वो शाये हुआ दुनिया खतरे में, तो उसमें मैंने वो एक वो दिया था कि
1: था
3: पूरा साइंस फिक्शन था कि वे दुनिया में जो हथियारों की दौड़ है ये बहुत ख़तरनाक है, और हमारे अलावा और भी दुनिया के अंदर मखलूक़ात हैं जिन्हें हम एलियन कहते हैं, और इसको बाहर की फिल्मों में भी, बाहर के नावलों में भी, कॉमिक्स में भी और कार्टून में भी, जितनी भी असनाफ आजकल एंटरटेनमेंट की हों, मुताले की हों, उसमें सब में पेश किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोशिश नहीं की गई। हमारे यहाँ हम वही पुराने ढर्रे पे चलते रहे, एक बादशाह था उसके साथ बेटे थे, छोटा बेटा बहुत बहादुर था, यही बच्चों का जहन बना। अच्छा मैंने फिर ये करा कि जब मैं मेरे सामने कोर्स की किताबें बनने गए, मैंने निसाबी किताबें, तो मैंने निसाबी किताबों में हिंदुस्तान के साइंसदानों का डालना शुरू करा, जैसे डॉक्टर बसु थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जो पेड़ पौधे इनमें भी जान होती है, और हम बचपन से सुनते थे, हमारी नानी आमतौर पर मगरिब के बाद कहती थी बेटे जरा पेड़ों को परेशान मत करना, इनके सोने का वक्त है। तो ये साइंस थी, ये कोई वो नहीं था कभी कोई एक माइथोलॉजी थी या कोई ऐसी चीज़ आ रही थी। तो हमने हमारे पब्लिशर्स ने संजीदगी से कोई कोशिश नहीं करी। हमारे यहाँ कॉमिक्स, अब आप देखिए ना उर्दू के सैकड़ों पब्लिशर हैं, बहुत बड़ी मार्केट है बच्चों की, लेकिन उर्दू में कॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमिक्स लिखने वाला नहीं है। फोर कलर में कॉमिक अब हिंदी में देखिए भरे पड़े, बल्कि हिंदी का एक कैरेक्टर है
1: को तो आम करने में हिंदी अदब का बहुत बड़ा
2: बहुत
1: उन टॉपिक्स पर कॉमिक्स तैयार किए जिन पर आमतौर पर नहीं दिखाई देता।
2: आप देखें आज आज छोटा भीम जो है वो पूरी वर्ल्ड ओवर
1: डिजिटलाइज कर दिया उन सबको।
3: जी जी। जो हमारे यहाँ देखिए चाचा चौधरी जो किरदार है, न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम है
2: जी जी
3: सारे कार्टून्स का
2: जी,
3: चाचा चौधरी का जो कार्टून है उसको वहाँ पे रखा गया है, कितना बड़ी बात है।
2: अच्छा आपके यहाँ एक चीज और भी है, आपके यहाँ एक किरदार है खोजी का,
1: जी
2: खोजी को आप, आपने क्यों नहीं बच्चों के लिए आपने उसको डेवलप किया? नहीं, आपने डेवलप क्यों नहीं किया? आप असल में आप कुछ करना ही नहीं चाहते, बहाने बनाते हैं कि साहब हमें पैसे की। अरे आप पहले उसके पर एक छोटी सी कहानी लिखिए

0: कहानी जब मकबूल होगी तो फिर बच्चा, जब बच्चा जब उसको पकड़ेगा तब फिर लोग हिम्मत पैदा करेंगे, कुछ कुछ आएगा।
1: मैं अभी सैफी साहब की तरफ आ रहा हूँ। सैफी साहब
2: जी जी,
1: क्या सोचकर आपने अपने इस मकाले के मौजूद जो रखा है, आपके जहन में क्या बात थी?
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। और दूसरी बात, मैंने सोचा कि बच्चे साइंसी अदब से,
1: क्योंकि आप तो नज़में वगैरह लिखते रहे
2: जी, अल्लाह का फजल है, मैंने साइंसी नज़में ही तकरीबन ज़्यादा लिखी हैं। ग़ज़ाइयत से हटके, सेहत से हटके जो मैंने काम किया है, मुझे हालिया सरकार की तरफ से जो है मौजूदा मरकजी जो हुकूमत है इसकी तरफ से बड़ा तावन मिला है।
1: अच्छा।
2: और कौमी कौंसिल ने बहुत हौसला अफजाई की है मेरी। मैंने जब इसका खाका तैयार किया अपने मौजू का, बच्चों के अदब में साइंस की अक्कासी, तो मैंने देखा कि दूसरी तमाम जबानों में बच्चों का अदब बहुत आगे जा रहा है,
1: बहुत नीचे,
2: और हमारी उर्दू में बहुत नीचे है। हम उर्दू जबान की बात कर रहे हैं, चूंकि बच्चों के अदब में साइंस की अक्कासी जो मेरा मकाला है, तो मैंने इसमें तमाम उन नुकात की तरफ इशारा किया, उन तमाम बातों को मैंने पेश करने की कोशिश की जिनसे उर्दू जबान पीछे है, जिनको हम शामिल करके उर्दू को भी जिंदा रख सकते हैं और कौम को तरक्की के रास्ते पे भी ला सकते हैं। अपने बच्चों को हम जब तक साइंसी अदब से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिला के चलने वाले नहीं हो सकते।
3: सही, बिल्कुल सही।
2: दूसरी बात, साइंसी अदब खालिस बच्चों का ही अदब नहीं है। अदब अतफाल में जो 3 साल से 5 साल या 7 साल से 12 साल या 12 से 15 साल 18 साल के बच्चों को हम उम्र के लिहाज से तकसीम करते हैं, हमारी जो हुकूमत है वो तालीम के साथ साथ बच्चों को साइंसी तालीम की तरफ रागिब कर रही है। और उर्दू के जो बच्चे हैं जो साइंसी अदब नहीं पढ़ते, जो मदारिस इस्लामिया के बच्चे हैं, जो उर्दू जबान से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्हें हमारे दरसी तब्दीलियों की, निसाबी तब्दीलियों का इल्म भी नहीं है। बाज़ औक़ात
3: नहीं
2: है, बाज़ जगहों पर नहीं है मदारिस से। मैं ये बात बर्दस्ता कह सकता हूँ कि मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ कि कहीं ना कहीं मदारिस अपने दायरे में महदूद हैं, सिमट के रह गए हैं। अगर हम अंग्रेजी अदब
1: किसी खास इदारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक
2: जनरल मदरसे की बात कर रहे हैं
1: और सिर्फ उर्दू सोसाइटी की हम बात,
2: उर्दू सोसाइटी की बात कर रहे हैं।
1: उर्दू सोसाइटी में मदारिस भी हैं, उर्दू के स्कूल भी हैं जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं, और भी बताइए, पूरा उर्दू का अदब है,
2: उर्दू का अदब है,
3: लेकिन उर्दू समाज है
1: जी,
2: उर्दू समाज
1: से कम क्यों है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कम क्यों है?
2: कम मकाले हमारे हमारे यहाँ कम होने का एक अमल यहाँ भी सामने देखने को मिलता है कि दूसरी जबानों का जो अदब है वो हमारे अदब में मुंतकिल नहीं किया गया, तर्जमे की सूरत में बच्चों के सामने पेश नहीं किया गया। दूसरा ये कि जो हमारे अदीब हैं, जो अदब लिखने वाले हैं, वो साइंसी तरक्यात के सफर को देख तो रहे हैं, उसके कायल तो बन रहे हैं, लेकिन बच्चों को मुतासिर अपनी तहरीकत के जरिए नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए
3: लिखना भी नहीं जानते,
2: लिखना भी चाहते भी नहीं, मुताला भी महदूद है उनका, और फिर वो बच्चों को सामने पेश करना भी नहीं चाहते।
1: देखिए, जहां तक बच्चों के लिए लिखने की बात है, बच्चों के लिए लिखना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत बड़ों के
2: जी,
1: और ये मुश्किल काम क्यों करेंगे जब आसानी से हमारी चीज शाये हो रही है, हमारी कहानी बिक रही है, तो हम बच्चों के लिए लिख के क्यों मुश्किल में डालें अपने आप को?
2: नहीं, मुश्किल में तो डालना पड़ेगा बच्चों को, हमें
3: ये तो करना पड़ेगा सर, इसके बगैर नहीं
2: होगा। अगर तरक्की की राह पे ले जाना है बच्चों को, अगर हमें आगे वाकई तरक्की की तरफ बढ़ते देखना है, तो हमें तो मुश्किल
3: बिल्कुल टेक्नोलॉजी और उसका सब सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1: चलिए, एक बहुत लंबा फासला हो गया, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा गैप हो गया, हमारे यहाँ भी अदब नहीं मिल रहा है, लेकिन अब कोशिशें क्या हो रही हैं सर साहब? आप
3: मैं देखिए, शमीन साहब, आपने तो ये कि बहुत अच्छा टॉपिक रखा आज, और मैं ये आपको बता दूं कि ये ज़रूरत मैंने महसूस की, और हबीब साहब और नसीम साहब जानते हैं कि अभी मैंने एक पीछे एक सेमिनार कराया था जिसका उन्वान था उर्दू में बच्चों के अदब में साइंस और टेक्नोलॉजी। उसका मकसद यही था कि हम अपने जो राइटर्स हैं, जो हमारे जो कलमकार हैं, जो शायर हजरात हैं, जो हमारा उर्दू समाज है, उसको हम इस तरफ रागिब करें, क्योंकि अब ये एक ज़रूरत बन गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो ज़रूरत बन गई। आज बच्चा जो है वो स्क्रीन ज़्यादा है, स्क्रीन पर बच्चा सब कुछ देखना चाहता
1: है। जी।
3: आज उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में इंटरनेट है, उसके हाथ में जो है तमाम दुनिया भर के लवाजमात हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं। आज बच्चा जो है वो मंगल सैयारे के बारे में जानना चाहता है, ना कि वो शमीम उस्मानी साहब की कहानी सुनना चाहता है कि एक चूहा था एक बिल्ली।
1: बिल्कुल सही
3: समझ रहे हैं। आज का बच्चा जो उसके अंदर तजस्सुस है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी मजबूरी, मैं ये भी एक बात बता दूं, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा यह है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, लोग कहते हैं कि साहब किताबें नहीं बिक रही। अरे आप जब वो मवाद नहीं दे रहे हैं उन बच्चों को तो पढ़ेगा क्या? नसीम साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं नसीम साहब की किताबें जो

0: लिखेंगे, बच्चों की दिलचस्पी को सामने रखेंगे तो यकीनन बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को तजस्सुस है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सारे हर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता
1: और
0: है।
1: ये बात भी है कि ये आईनी हक है कि वो उस मालूमात को अपनी मादरी जबान में हासिल कर सकें।
0: मैंने अभी एक आपको शमीम साहब बताऊं, एक मैंने अभी कल मैं एक इत्तेफाक की बात की, मैं कानपुर में था, नहा रहा था मैं, वहां मेरे हाथ से साबुन फिसल गया। जब साबुन फिसल गया तो मुझे मेरे जहन में एकदम एक कहानी जो है वो जन्म लिया। अब वो मैंने जो है वो बच्चों के जो हिफ्जान सेहत के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत कहानी ली, बहुत छोटी सी कहानी, बहुत मुख्तसर कि वो मैंने लिखा है शरारती साबुन और रशू ये करके। अब वो जो है वो साबुन से बातें करता है बच्चा कि तुम्हारे मेरे हाथ से क्यों फिसल गया, और तुम तो वो कहते हैं तुम गंदे बच्चे हो, तुम नहाते नहीं हो, तुम मम्मी की बात नहीं सुनते हो, तुम्हारे पास बदबू आती है। अब इस तरह की ये चीज़ें जो हैं ये बच्चे के हर वक्त के नॉलेज की चीज़ें हैं। बच्चे नहाना नहीं चाहते, नहाते हैं। यहाँ बच्चों की दिलचस्पी वो जो जो आप बच्चों के माहौल में ढल के बच्चों की तरह सोच के बच्चों के लिए बच्चों का साइंस फिक्शन क्यों नहीं लिखते। ये साबुन की कहानी मैंने लिखी है और नहाने की हिफ्जाने सेहत, उसमें हिफ्जाने सेहत भी है, उसमें जो है मम्मी के लिए की कहना मानना भी है, नहाने का भी है। मतलब ऐसा कुछ अदब तैयार कीजिए जो बच्चों के लिए दिलचस्प हो, और ये हमारे यहाँ इसका फुकदान है, ऐसी सोच नहीं है। हमारे यहाँ भी वही किरदार के था, वो ये जो है अच्छा बोलना चाहिए, इसको बड़ों का अदब, ठीक है, ये भी जरूरी है।
1: मालूमात है जो जमाना कहाँ गुजर रहा है,
0: जमाना
1: कहाँ पहुंच गया है, ये भी
0: बहुत जरूरी है।
1: अच्छा नसीम साहब, मैं फिर एक मतलब आपकी तरफ आऊंगा, आप तो चूंकि किताब मेले भी करते रहे शहरों में, तो किस तरह की किताबें आमतौर पर बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं?
2: देखिए, जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चे किताब पसंद ना पसंद उनकी पॉकेट पर मुनहसिर करता है कि उनके घर वाले जो है उसको कितने पैसे लेकर भेजते हैं। किताब 10 रुपए की भी होती है, किताब 20 की भी है, 50 की भी है, और बच्चों के अदब में बाज़ किताबें 150 रुपए की भी हैं। तो हमने एक तजुर्बा करा था, एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जो किताबों के जो टाइटल बनते हैं उसको 3D टाइटल कहते हैं। 3D टाइटल की खूबी ये होती है, अगर आप उसको रोशनी में रखेंगे या आप रात का मंजर दिखा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा हमारी किताब में से लाइट जो है बाहर निकलती हुई दिख रही है।
1: अच्छा,
2: बाकायदा किताब का टाइटल ऐसा होता है। तो हमने एक कहा चलो इसमें थोड़ा सा पैसा खर्च करके ये किताब भी छपवा लें हमने वो। हाँ तो हाँ, आपको वो आपके पास है वो किताब, हमारी बेगम की किताब है वो, दिलचस्प साइंस। अब वो जनाब हम ले गए उसको, उस पर लागत ज़्यादा आई थी तो 80 रुपए की किताब थी। अब ये जो बेचारा बच्चा है ना, बच्चा उस किताब को देख रहा है, उसको अच्छी लग रही है, लेकिन वो 80 रुपए की किताब है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करके उसको 60 रुपए की दे दूंगा, लेकिन बच्चे के पास पैसे नहीं है। ये जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। मिसाल के तौर पर मैं एक बार अपने बच्चों को लेकर आ गया,
0: बहुत बड़ी बात कही है आपने,
2: यहाँ पे जो इंटरनेशनल बुक फेयर में मैं गया तो वहाँ पे कुछ फॉरेन की किताबें आई हुई थी, तो उसमें एक थी वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से एक किताब थी, और वो छोटी सी किताब लेकिन इसकी कीमत थी 260 रुपये। वो देखते देखते मेरी बेटी को किताब बहुत पसंद आई और वो कहने लगी पापा ये किताब मुझे चाहिए। तो मैंने पूछा तो वो कहने लगे इस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, 26 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी ने एक किताब की ख्वाहिश जाहिर करी थी, मैंने अपनी बेटी को किताब उसको दिलवा दी।
0: हाँ, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है।
2: अब वो बच्ची जो है ना आज भी उसके पास है। मैं तो ये देखता हूँ कि बेचारे बच्चे को वो 20 रुपये देकर भेज रहे हैं, 15 रुपए हैं बच्चे के पास, 10 रुपए बच्चे। बल्कि एक दिन तो मेरे पास एक मदरसे का बच्चा आया, उसके पास बेचारे के पास 10 रुपए का नोट था, और उसको उसने एक ऐसे बत्तीसी बना के मुट्ठी में कस के पकड़ा हुआ था कि उसका नोट ना गिर जाए। तो वो बहुत सहमा हुआ मेरे स्टॉल पे खड़ा हुआ। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने बेटा हाँ क्या हुआ, क्या लेना है? तो वो कहने लगा ये बताइए चाचा आपके पास कोई ऐसी किताब है जो 10 रुपए की भी हो। तो मैं उस बच्चे का ना जज्बा मैंने देखा उस मदरसे के बच्चे का,
0: जज्बा है।
2: देखिए, और एक चीज ये बता दूं, जो कहा जाता है ना जो उर्दू जिंदा है वो वाकई मदारिस की वजह से है। मदारिस वालों के पास जज्बा है लेकिन सरमाया नहीं,
0: सरमाया नहीं।
2: उसके बरक्स मैंने देखा जब जामिया के अंसारी ऑडिटोरियम के सामने बुक फेयर लगा, जिस दिन जुमा था, जुमे वाले दिन मदरसों की छुट्टी थी, सबसे ज्यादा किताबें मदरसे के बच्चे ले गए। कॉलेज के जो बच्चे आ रहे थे उनकी सारी तवज्जा खाने पीने के स्टॉल्स पर थी। ये फर्क है, उनके अंदर है जज्बा, लेकिन बच्चे की जो सारी बेचारे की दिलचस्पी का जो दारो मदार है वो उसकी पॉकेट पर है।
1: तो आपने बात बता दी ऐसी जो अमूमी तौर पर देखने में आती है कि कहीं ना कहीं माशी तौर पर जो कमजोर है वो नहीं खरीद पाते। चूंकि अच्छा उर्दू किताबों के साथ एक मसला ये भी है खासतौर पर, کہ اردو کی کتابیں مہنگی بہت پڑتی ہیں, تو کیا وجوہات ہے کہ یہ کتابیں اتنی مہنگی کیوں؟

0: रुझान ये पैदा हो रहा है कि आप साइंस की तरफ रागिब हो रहे हैं। मैं भी, मैंने आपको बताऊं, हालांकि मैं ट्रेडिशनल लिखता था, लेकिन मैं जो हूँ, मैंने भी एक नावल लिखा है जो जिसका जिसका एक उन्वान है मंगल सैयारे पे जंग।
1: मंगल सैयारे पे जंग,
0: जंग। और उसमें मैंने एक कंसेप्ट ये दिया है कि मंगल सैयारे पे जो है वो आदमी जो पहुंचता है तो वहाँ वो गिर जाता है, तो फिर यहाँ से, हमारे यहाँ से जो फौज जाती है तो वो फौज ऐसे नहीं जाती, बल्कि वहाँ जो है वो उसकी फोटोकॉपी जाती है।
1: अच्छा,
0: मतलब ये एक बिल्कुल बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है और एकदम बिल्कुल नई चीज है, जहाँ पर नई चीज है जो फोटो के जरिए से हम आदमी को वहां पहुंचाते हैं। क्योंकि वो जो मंगल सैयारे में मैंने दिखाया है कि जो मंगल सैयारे के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में है, और वो आदमी क्या सोच रहा है उसको पढ़ लेते हैं, वो दिमाग में पढ़ लेते हैं। तो अब ये जो फोटो कॉपी जाएगी तो इसको पढ़ नहीं पाएंगे, पीछे से ऑर्डर मिलता रहेगा, ये करते रहेंगे, तो बस वो करते हैं, वहां पर जो है वो इंसान जो है वो मंगल सैयारे जीत जाता है। अब मतलब ये इस तरह का एक कंसेप्ट है, ये
1: एक अच्छा नॉवेल,
0: ये अच्छा नॉवेल बन सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है बच्चों को बताना, ये तो क्योंकि देखिए, हालांकि ये हकीकत नहीं है, लेकिन एक आपसे तकरीबन 10 साल पहले मैंने इस तरह का एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने एक अपना एक मकाला पढ़ा था, ऑल इंडिया रेडियो भी पढ़ा था, और फिर मैंने उसमें ये लिखा था आखिर में कि अजब नहीं कि इंसान इतनी तरक्की कर ले कि इंसान की फोटो कॉपी जो है वो दूसरे सैयारों पर पहुंच जाए। तो मुझसे एक साहब ने कहा था, यार क्या बातें कर रहे हो यार, ख्याली बात लगे, लेकिन आप देखिए कि जो कुछ चीजें हैं, कभी रॉकेट के बारे में सन 1820 में एक राइटर ने दिया था, और आप देखिए वो रॉकेट जो है वो चांद पर पहुंचा, वो बाकायदा वो मैंने पढ़ा है, वो नॉवेल मैंने पढ़ा है, वो अंग्रेजी नॉवेल, तो आज वो उसकी जरूरत है। इस तरह के तो तखयलात जो हैं आपको वो पहुंचाते हैं वहां पर।
1: अहम कोशिश की तरफ तवज्जो दिलाई थी तर्जुमे की तरफ
2: जी,
1: क्योंकि साइंसी अदब का तर्जुमा हमारे यहाँ उर्दू में बहुत कम मिलता है,
0: है ही नहीं,
1: तो इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? जो लोग तर्जुमा कर रहे हैं, जो कहानी लिखते हैं या तर्जुमा करके कहानी शायद कराते हैं, उनकी तवज्जो कैसे जानी जाए?
0: नहीं, उनके एक तो सबसे बड़ी चीज जो है, सब कम से कम दो जबानों का आना, एक तो जिस जबान से आप तर्जुमा कर रहे हैं उसमें आना। ये वाकई हबीब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि उर्दू के अलावा हिंदुस्तान की जितनी जबानें हैं उन सब में अदब अतफाल जो है, साइंस फिक्शन उसके अंदर बहुत है, भरा पड़ा है। अब उर्दू के जो मराठी नोइंग पर्संस हैं, जो बंगाली नोइंग पर्संस हैं, जो कि तो वो ये काम उन लोगों का है, उनको संजीदगी से लेना चाहिए कि उर्दू में उसको मुंतकिल करें। और देखिए, जज्ब का जो मामला होता है, जज्ब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी शख्सियत नहीं निखरेगी। ये मैं मानता हूं।
2: मैं तर्जुमे के हवाले से एक बात और कहना चाहता हूं यहां पे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे तर्जुमा निगारों की जो है हौसला अफजाई नहीं हो पा रही है।
1: यकीनन
2: मैं देख रहा हूं, गुज़िश्ता 18 सालों से दिल्ली में उर्दू अकादमी है, साहित्य अकादमी है और कौमी काउंसिल भी है, जब साइंसी अदब का तर्जुमा करने में लोग दिलचस्पी ले रहे थे तब भी उनकी हौसला अफजाई उस नहज पे, उस दर्जे पे, उस मैार पे नहीं हुई जिसकी जरूरत थी, और आज जो है आज भी नहीं हो रही है। कुछ अकादमीज ने, कुछ इदारों ने मुतर्जिमीन की हौसला अफजाई न करने का तहिया कर लिया है,
1: जबकि
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। उर्दू जबान की तरफ मुतर्जिम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें उसका सिला नहीं मिल पा रहा है,
0: माकूल मुआवजा नहीं मिल पा रहा है,
2: माकूल मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है।
1: बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है, उम्मीद है कि लोग इस जानिब मुतवज्जो होंगे और यकीनन एक खुशाइंद मुस्तकबिल जो है उर्दू में साइंसी अदब के हवाले से हमारे सामने होगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जरा ना महो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखीज़ है साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब सिराज अजीम साहब, जनाब तोहा नसीम साहब और जनाब हबीब सैफी साहब, आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आईना, पेशकश मुबीन अहमद खां की थी, अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म थी दो आंखें बारह हाथ। नगमा निगाहते पंडित भरत व्यास, मौसीकार वसंत देसाई। सुनना चाहते थे जयराज पलोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। मुल्लापुर दांखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन। अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा। वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर वाड़े और शुभम साक्षी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजीव राजेश और राशि राजेश। आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और भानुप्रिया। और यावतमाल शाहूनगर, यावतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर और बेबी प्रियांशी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजिक डिकेस्ट्रो और विलीस डिकेस्ट्रो। कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन शर्मा। और मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, माधु बालूजा और सागर बालूजा। और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नौशाद की मौसीकी से यह नगमा। फिल्म है साज और आवाज़। सुनने की ख्वाहिशमंद है भाटापारा छत्तीसगढ़ से ही हरमिंदर चावला, सोहन जोशी और शिव कुमार शर्मा। छोटी बलिया कटिया मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, शमीम अहमद फूलवाले और उनके अहले खाना। और यह जनाब

और स्वामी जी, जब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म है सावन की घटा, मौसीकार हैं ओपी नैयर, सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नलेश्वर नगर नरवील महाराज से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्ची और आशीष मोहरकरे, उत्तम नगर दिल्ली से बुधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु खोरवाल, कोलकाता से सुब्रत राय चौधरी, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, राशि गोस्वामी, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे और यशराज शिंदे, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी

बापुर महाराज से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। और ये हैं जनाब जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कुटेचा और उनके अहले खाना। पंद्रकावला से नील उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे। नूर महल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरहत जहानाज। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अकमल। गांव लोहडड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी और भुवनेश्वरी देवी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराज से नासिर शेख, नादिर नासिर, साजिद शाहिद। और कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दिले, सविता दिले और अनिकत दिले। बिलाम गेट कासगंज से असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम और सद्दाम सोनी। ताज मंदिर लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद असलिन पवार। और यह जनाब डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। अमीर खुसरो रोड गंडुंडवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और डीएच बच्चन। और जनाब ये अगला मेल किसका है? यह तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। और यह जनाब गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी कामले। सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधर रामटेके और शराबिया रामटेके।

वर्मा, गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी और डॉक्टर प्रियंका थांदी। घाट गिनेगा और यावतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। बिलराम गेट काजगंज से एम असलम सैफी और जैबुन्निसा बेगम। भट्टापारा छत्तीसगढ़ से एमकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा साहू। और ये जनाब बिशनपुर गिरडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। चांदखेड़ा अहमदाबाद से आनंदराज सागर, तरुलता सागर। और यह जनाब गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी। भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। अस्तुपुर जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। और ये हैं जनाब चमनपुरा उदयपुर से सबिया खान, फरीदा बानो और रईसा खातून। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख वजीर और सुहेल शेख। और सामने लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आसरा फिल्म का ये नगमा। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता। पुराना तालाब डुंगनाव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मनाद अंसारी और सुल्तान अंसारी। वसई ईस्ट मुंबई से मोहम्मद शराफत रंगरेज, आसिफ रंगरेज और सादिक रंगरेज। और यही जनाब फरखाबाद मोहल्ला साहिबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सूरज चौरासिया और सरोज चौरासिया। धमादम ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल और आरुषि। और ये अगला मेल है जनाब जरूर रोड से बाबा साहेब वाड़ोदे, आदिचर पे और चंद बाबा वाड़ोदे का। और मुझे लगे मेल डबल डबल लोग भेजे ही जाते हैं, कितनी भी रिक्वेस्ट कीजिए। सिंधी बुजुर्ग महाराज से संजय चौधरी, मैत्री चौधरी और गार्गी चौधरी। और हिंगोली महाराज से शाजी बोलखे, हनुमान बोलखे और उत्तम जामधाड़े। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। और विदर्भ आकोट से के संजीव डाबेराव, सुनीता डाबेराव और डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव। दातागंज बदायूं से शरीफ अहमद सैफी और बेगम रेशमा सैफी। अलीगढ़ से सलीम अख्तर और रेशमा बानो। बीकानेर राजस्थान से कैलाश चंद सोनी, गोविंदक और उत्तम कुमार सोनी। और जनाब एक मील और शामिल करके सुनवाते हैं आपको नगमा। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा और निखिल वर्मा।

0: काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडार होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं,
1: जी
0: और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी,
1: जी
0: उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोड मैप बनाया था, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है, वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन
1: जी
0: एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो हैं वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं,
1: जी
0: और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है पूरा दुनिया, और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है, और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की, तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफ़ी बल दिया है। और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से, और खास करके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में अगर हम कहें, तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
0: भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं दशकों से, उसका सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है कोर, वो आर्थिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं। इसीलिए जो है व्यापार का, निवेश का, तकनीक का एक बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है। और 2007 से जो है हम लोग यूरोपीय संघ के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे एग्रीमेंट के लिए, और उसी तरीके से 20 साल के करीब हमने एफ्टा कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन किया। और सबसे पहला जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो एफ्टा कंट्रीज के साथ किया था 2024 में, और उसके बाद यूके के साथ किया, और अभी जो है नेगोशिएशन कंप्लीट हमने यूरोपीय संघ के साथ भी कर लिए हैं। तो ये खासतौर से जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हमने समझौता सबसे पहले किया था, वो एक तरीके से टेम्पलेट बन गया हमारे बाकी दोनों समझौतों के लिए भी।
1: जी
0: तो उसमें एक तो ये है कि हमारा जो वस्तुएं हैं वहां पे उनको काफी मार्केट मिल जाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है उसके तहत। और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खासतौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं, और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खासतौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है,
1: जी
0: बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो और भी संभावनाएं उनको लगती हैं कि भारत की जो मार्केट है खासतौर से जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी वो काफी निवेश कर सकते हैं।
1: जी
0: तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट, और
1: जी
0: वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए, तो

0: उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं।
1: जी
0: तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं, उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां पे।
1: जी जी जी प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है, काफी लंबा। लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पर मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
0: इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था। और अभी जो है, इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो ये है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारी दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे। तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है, और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है, तो उसका फायदा भारत और स्वीडन दोनों को होगा।
1: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
2: भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की पांच देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
0: यूरोपीय देश आप जानते हैं कि एक पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का। उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से, पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे ये नॉर्डिक का अपना समूह है, और के तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कंक्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो तीन देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं, तो यूरोप को अच्छी तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी।
1: जी
0: भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
1: प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतने

0: तो पूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

तारीख 71 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी रेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में आज सुनिए उस्ताद विलायत खान से सितार पर बजाया राग बिहागड़ा।

0: वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के दो मुल्कों के दौरे पर कल सहपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वज़ीर दफ़ा अपने हम मनसब जनरल फान व्यान ग्यान के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका के आला सतह के एक सनअती वफद ने नई दिल्ली में कल साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत के न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनअती शराकतदारी के लिए उभरते हुए मौके पर गौर खोज किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनअत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफेन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत अमरीका ताउन के साथ वाबस्ता एहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका फिलवक्त साइंस टेक्नोलॉजी साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानिब गामजन शराकतदारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस से स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में मुनक़िदा 19वीं आलमी सेहत असम्बली से अलग मुलाकात की। जनाब नड्डा ने आलमी सेहत इक्विटी की पेशरफ्त के तई भारत के अज़्म को दोहराया और कुछ अहम स्कीमों को उजागर किया, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रिवायती अदबियात, मसनूई जहानत से चलने वाली आवामी सेहत की इख्तराआत और टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए की जाने वाली पायदार कोशिशें। डॉ टेड्रोस ने सेहत के शोबे में भारत की असलाहत और आलमी सेहत शराकतदारी में उसकी क्यादत की तहसीन की और मुश्तरका तरजीहात को ताल्लुक से आलमी सेहत तंजीम के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करने का अज़्म इजहार किया। आयुष की वजारत ने इस साल गर्मी के मौसम के लिए इंतहाई शदीद गर्मी और गर्म लहर के सिलसिले में अवामी सेहत से मुतालिक एक जामे एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जोर देकर कहा है कि जिसमें पानी की कमी ना होने दें, इंतहाई धूप के अवकात में धूप में बराह रास्त आने से गुरेज करें। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओसोलो में नॉर्वे के अपने हम मनसब जोनास घार स्टोर के साथ मुज़ाकरात किए। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाकर साफ तवानाई नीलगो मईशत पर तवज्जो करते हुए ग्रीन कलीदी शराकतदारी तक पहुंचाने से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किंग हैराल्ड द फिफ्थ ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। हुकूमत ने इस बरस $1 खरब बरामदात का निशाना रखा है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत में न्यूक्लियाई तवानाई और प्राइवेट सरमायाकारी के मौके पर अमरीका के एक सनअती वफद से मुजाकरात किए। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी 71 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शब का एक बजे चाहता ही हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शब बखैर। जय हिंद।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा

0: थी निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेल्ली से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जाँच के लिए 2 जाँच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory.

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म द ट्रेन से ये गीत। अगला गीत जो आप सुनेंगे उसमें आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हीर रांझा से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कैफ़ी आज़मी के बोल हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो भी
0: नहीं।
1: छोड़ो ना
0: आज की रात, तो दिल तोड़ो ना।

आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म कुर्बानी से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल इंदीवर के हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

परवीन सुल्ताना के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत, बोल मजरू के थे, संगीत से पिरोया था आर डी बर्मन ने। फिल्म कुदरत से आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे, अपनी दोस्त यानी कीर्ति के साथ।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शान फिल्म से अगला गीत। उषा उथुप की आवाज़ है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और आर डी बर्मन ने संगीत दिया था।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त और सुनते रहिए अन्य कार्यक्रम एआईआर लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: श्रोताओं, अब समय है समाचारों का।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ

0: द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। PIB ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। PIB ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार मध्य रात्रि की 2:10। अब कार्यक्रम गीत बहार लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। और हमेशा की तरह पूरी फहरिस्त तैयार है आपके दिल तक इन गीतों को पहुंचाने के लिए, हम तैयार हैं। तो चलिए निकल चलते हैं इस गीतों के सफर पर, और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: इन गीतों ने जो स्टूडियो का माहौल बनाया है इस रात के सफ़र में, वो बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आपको भी ये गाने पसंद आए होंगे। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक का कार्यक्रम गीत बहार आप सुन रहे थे मेरे यानी अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और अब ना चाहते हुए भी इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेज़ी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा,

0: और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदाती समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपचला अस्पताल में चल रहा है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, PM Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability and climate finance. PM Modi urged the business communities of both countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between Indian and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome.

दर्शकों इसी खूबसूरत सी गजल के साथ फिलहाल गीत और गजल का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए इजाजत जाने की, लेकिन जुड़े रहिए AI Live News 24/7 चैनल के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बज चुके हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का न्यूज ऑन एयर ऐप है और स्टूडियो घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं। अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म। आज के नादब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे टी वी मणिकंदन का रागम पूर्वी कल्याणी में गायन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीवी मणिकंदन का रागम पूर्वी कल्याणी में गायन। नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज मंगलवार है,

शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:30 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन के बारे में। पांच बजकर 30 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम, 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद्रिमा मजूमदार का राग भटियार में सरोद वादन। प्रातः 6:10 का वक्त रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर। श्री रामचरितमानस से पाठ का वक्त रहेगा प्रातः 6:45। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 60। कार्यक्रम संगीतिका का वक्त रहेगा प्रातः 7:10।

7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का। प्रातः 8:45 का वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। 9:15 पर विज्ञान पत्रिका। नौ बजकर 30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी बहक। 10:10 पर आपकी फरमाइश। 11:10 पर कार्यक्रम सब रस का आप आनंद ले सकते हैं और 11:30 पर सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम

तो श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ

हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत ला।

हरि के संत बताओ मार्ग, हम पीछे लाग चली, हम पीछे लाग चली।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਾ।

जेकर सूत मनिया सबता सूत कहो होए ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अनके जिया बाज ना कोई पहला पानी जियो है जे तरिया।

0: ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
1: मन का सूत लोभ है देवा सूत को अखी सूत वेखना परत्रय पर तन रूप कन्नी सूत कन पै लाए तबारी खाए नानक हंसा दमी बदै जा पर जाए महला पहला। सबो सूत भरम है दूजे लगे जा जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो रिसंभाए। नानक जिनी गुरमुख पूजया तिना सूत कनाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाई जिस विच वड्डियां वड्याई।

पाणी देवता बसंतर देवता लो पाया किरत ता हो आप पापी सोधन कटे तो

पौड़ी आपे ही करना कि ओ कल आपे ही तै धारी है, देखे किता है अपना धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनो भी सारी है, आपन हथी अपना आपे।